92.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये तो हाँ सारे दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला तने मैं शशि हाजिर होइयो कार्यक्रम लेकर माती दी महक सशुतों कर दिन अपने कार्यक्रम दी शुरुआत इस प्यारे दे गीते करने तो तुहां सारे इन्हें सुनते रहे अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला।

दर्शकों तुम्हें सारे ही सुने प्यारा दिया गीत कांशो तो फिर ते अपने कार्यक्रम च अगे बढ़ना है कने जेड़ा कार्यक्रम दा सफर है सै फिर ते अगे बढ़ाना है फिर ते सुनदे निक प्यारा दिया गीत तो तुम्हें सारे भी सुना कने सुनते रहे अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला।

सारे अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला आशोता तुम्हारे सारे इस वक्त कार्यक्रम सुना देन अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि करने तुम्हारे सारे सुना देन अपना माटी दी महक कार्यक्रम तशो तो फिर यहाँ तुम्हें ले चल देन एक गीत संगीत दी तरफ तुम्हारा भी सुना कने नहीं सुन दे रहे अपना रेडियो गुंजन धर्म।

काशो तो तुह सारे सुने ये प्यारा दिया गीत काशो तो फिर ते आपने कार्यक्रम च अगे बढ़ना है कने जेड़ा कार्यक्रम दा सफर है सै फिर ते आहां अगे बढ़ाना है फिर ते सुनदे निक प्यारा दिया गीत तो तुह सारे भी सुना कने ने सुनदे रे अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला।

91.2 मेगाहर्ट्स पर यह तुहां सारे दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला श्रोता तुहां सारे इस टाइम जिहड़ा कार्यक्रम सुना देने से सुना देने माटी दी महक अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि कन्ने ता कार्यक्रम च फिर यहाँ अगे बढ़ने जिहड़ा कि तुहां दा ध्यान है से फिर एक गीत संगीत दी तरफ ले चल देने।

मेगाहर्ट्ज़ पर ये तुहां सारे दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला दर्शकों तो तुहां सारे कार्यक्रम सुना दे थे अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि कन्ने। कार्यक्रम दा जेड़ा सफर है सैथी संपन्न होंदा है तो तुहां सारे अपने रेडियो दोस्त शशि जी दी अनुमति कन्ने सुनदे रहे अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला।

आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं। आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
1: हर घर सूर्य घर।
2: मुझे लगता है इस दुनिया में सबसे बड़ा दान ना पैसे का है, ना कपड़े का है, ना किसी चीज सामान का है। दुनिया में सबसे बड़ा दान है किसी दुखी को आप अपनी एक बात देकर के उसको खुश कर दो। आप उसके चेहरे पर प्रसन्नता लाओ और आप ऐसा कुछ कर दो जो उसके जीवन के दुख खत्म हो जाए, वो आपको देख करके कुछ समय के लिए भूल जाए कि वो कितना दुखी।

साइबर फाइनेंशियल फ्रॉड में फंस जाना तो कॉल 1930 पर लगाना। ऑनलाइन होने वाले धोखाधड़ी और साइबर फ्रॉड से पीड़ित होने पर गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिकृत वेबसाइट

0: www.radiomirchi.in पर अपनी शिकायत दर्ज कराएं।
1: देख पवन आ गया।
2: पवन वहाँ क्यों बैठे हैं?
3: पता नहीं तुझे उसे टीबी है।
1: और भाई लास्ट बेंच का मजा अकेले अकेले।
4: पता है ना मुझे टीबी है।
1: चल चल तुझे पता है ना इलाज का असर शुरू होने के बाद टीबी के इन्फेक्शन का डर नहीं रहता। टिफिन में क्या है? टीबी की दवाई के साथ खाना भी अच्छे से लेना है, समझा?
5: अपनों का जोड़ है टीबी का तोड़, तो फिर भेदभाव क्यों? टीबी के इलाज में अपनों का साथ दें।
6: सुनो, तुम्हारे पास 5,000 रुपए पड़े हैं?
7: 5,000? मेरे पास 500 रुपए नहीं है। तुम 5,000 पूछ रहे हो?
6: Oh, no. देख लो कहीं थोड़े बहुत पड़े हो।
7: तुमने दिए कभी जो थोड़े बहुत कहीं पड़े होंगे?
6: किचन के किसी डब्बे वब्बे में छुपाए हो या किसी कपड़े के नीचे?
7: तुम्हें सच में लगता है मैं तुमसे पैसे छुपाती हूँ? अरे नहीं है यार मेरे पास पैसे।
6: कसम खाओ।
7: कसम से मेरे पास 1 रुपया नहीं है।
6: फिर ये ड्रेसिंग टेबल के कपड़े के नीचे 5,000 किसने रखा? मेरा ही होगा लगता, रख के भूल जाऊंगा ना। अब तुमने तो कसम खाई है, तुम्हारे तो है नहीं। मेरे ही होंगे इस घर में और रहते ही कौन है।
8: भारी मिस्टेक हो गया सर।
7: नहीं मतलब तुम्हारे ही होंगे।
6: गजब टूटी बाजा।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर यह है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और श्रोताओ, मैं हूँ आपकी रेडियो दो शशि और हाजिर हो गई हूँ कार्यक्रम लेकर गीत सुहाने नए पुराने। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस प्यारे से गीत के साथ। आप सभी यूं ही सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

तो श्रोताओ, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत, गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का। तो अपने कार्यक्रम में फिर से हम आगे बढ़ते हैं और आपको ले चलते हैं फिर से एक प्यारे से गीत के सफर में।

91.2 FM पर यह है आप सभी का अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी इस वक्त कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। तो बिल्कुल अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं एक और गीत।

पर है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो इसी के साथ अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे।

तो श्रोताओं, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत। फिर से कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आपको फिर से ले चलते हैं एक और गीत की तरफ। तो आप सभी यूं ही सुनते रहिए अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला।

ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत। फिर से आपको ले चलते हैं एक और गीत की तरफ।

तो श्रोतो, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत, गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का। तो अपने कार्यक्रम में फिर से हम आगे बढ़ते हैं और आपको ले चलते हैं फिर से एक प्यारे से गीत के सफर में।

91.2 FM पर यह है आप सभी का अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी इस वक्त कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। तो बिल्कुल अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं एक और गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो इसी के साथ अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे।

तो श्रोताओं, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत। फिर से कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आपको फिर से ले चलते हैं एक और गीत की तरफ। तो आप सभी यूं ही सुनते रहिए अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला।

ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत। फिर से आपको ले चलते हैं एक और गीत की तरफ।

तो श्रोताओ, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत, गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का। तो अपने कार्यक्रम में फिर से हम आगे बढ़ते हैं और आपको ले चलते हैं फिर से एक प्यारे से गीत के सफर में।

91.2 FM पर यह है आप सभी का अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी इस वक्त कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। तो बिल्कुल अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं एक और गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो इसी के साथ अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे।

तो श्रोताओं, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत। फिर से कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आपको फिर से ले चलते हैं एक और गीत की तरफ। तो आप सभी यूं ही सुनते रहिए अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला।

ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत। फिर से आपको ले चलते हैं एक और गीत की तरफ।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और श्रोताओं, आप सभी इस वक्त कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ, गीत सुहाने नए पुराने। तो फिर से अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

91.2 FM पर यह है आप सभी का अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी इस वक्त कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। तो बिल्कुल अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं एक और गीत।

तो श्रोताओं, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत। फिर से कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आपको फिर से ले चलते हैं एक और गीत की तरफ। तो आप सभी यूं ही सुनते रहिए अपना वीडियो गुंजन धर्मशाला।

91.2 FM पर आप सभी कार्यक्रम सुन रहे थे गीत सुहाने नए पुराने अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। तो श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सभी यूं ही सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।

आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं। आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
1: हर घर सूर्य घर।
2: मुझे लगता है इस दुनिया में सबसे बड़ा दान ना पैसे का है, ना कपड़े का है, ना किसी चीज सामान का है। दुनिया में सबसे बड़ा दान है किसी दुखी को आप अपनी एक बात देकर के उसको खुश कर दो। आप उसके चेहरे पर प्रसन्नता लाओ और आप ऐसा कुछ कर दो जो उसके जीवन के दुख खत्म हो जाए और वो आपको देख करके कुछ समय के लिए भूल जाए कि वो कितना दुखी।

0: साइबर फाइनेंशियल फ्रॉड में फंस जाना तो कॉल 1930 पर लगाना। ऑनलाइन होने वाले धोखाधड़ी और साइबर फ्रॉड से पीड़ित होने पर गृह मंत्रालय भारत सरकार की अधिकृत वेबसाइट www.cybercrime.gov.in पर अपनी शिकायत दर्ज कराएं।
1: देख पवन आ गया।
2: पवन वहाँ क्यों बैठा है?
1: तुझे उसे टीबी है।
2: और भाई लास्ट बेंच का मजा अकेले।
3: पता है ना मुझे टीबी है।
2: चल तुझे पता है ना इलाज का असर शुरू होने के बाद टीबी के इन्फेक्शन का डर नहीं रहता। टिफिन में क्या है? टीबी के दवाई के साथ खाना भी अच्छे से लेना है, समझा?
4: अपनों का जोड़ है टीबी का तोड़, तो फिर भेदभाव क्यों? टीबी के इलाज में अपनों का साथ दें।
5: सुनो, तुम्हारे पास 5,000 रुपए पड़े हैं?
6: 5,000? मेरे पास 500 रुपए नहीं है, तुम 5,000 पूछ रहे हो?
5: देख लो कहीं थोड़े बहुत पड़े हो।
6: तुमने दिए कभी जो थोड़े बहुत कहीं पड़े होंगे?
5: किचन के किसी डब्बे वब्बे में छुपाए हो या किसी कपड़े के नीचे?
6: तुम्हें सच में लगता मैं तुमसे पैसे छुपाती हूँ? अरे नहीं है यार मेरे पास पैसे।
5: कसम खाओ।
6: कसम से मेरे पास 1 रुपया नहीं है।
5: तो फिर ये ड्रेसिंग टेबल के कपड़े के नीचे 5,000 किसने रखा? मेरा ही रहेगा लगता, रख के भूल जाऊंगा ना। अब तुमने तो कसम खाई है, तुम्हारे तो है नहीं। मेरे ही होंगे इस घर में और रहते ही कौन है?
7: भारी मिस्टेक हो गया सर।
6: नहीं मतलब तुम्हारे ही होंगे।
8: गजब टोपी वाला।

नमस्कार दोस्तों, 91.2 मेगा हर्ट्स पर ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। आप सभी जुड़ चुके हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ। हाजिर हो गई हूँ दोस्तों कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला लेकर। तो स्वागत है आप सभी का इस बहुत ही प्यारे से कार्यक्रम में, एक नए दिन की शुरुआत के साथ, एक नए पल की शुरुआत के साथ। तो जरूर इसे खास बनाइए, प्यारा बनाइए, खूबसूरत बनाइए, क्योंकि ये जो वक्त बीत गया वो दोबारा वापस मुड़कर नहीं आएगा। जी दोस्तों, आज 28 जुलाई 2026 का दिन। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं, हर दिन का अपना एक इतिहास रहता है, अपनी एक खासियत रहती है। तो उसी तरह से आज का दिन भी बहुत खास है, बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे लिए, क्योंकि जहाँ प्रकृति की बात आ जाती है तो हिमाचल में प्रकृति का नज़ारा कितना खूबसूरत है। जी दोस्तों, विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस जो है आज के दिन आप सभी मना रहे हैं। तो ज़रूर आज के इस कार्यक्रम को खास बनाएंगे बातचीत के साथ और मनोरंजन के साथ। तो आइए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की इस प्यारे से गीत के साथ। बने रहिए अपने रेडियो दोस्त रुचिका के साथ 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर।

दोस्तों विक्रम सिंह की आवाज में आप सभी ने एंजॉय किया कार्यक्रम का ये खूबसूरत सा गीत। कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला, इस समय आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ। से दोस्तों तो अब रुक करते हैं कार्यक्रम का मौसम की ओर। तो आंखों देखा हाल दोस्तों इस समय आप सभी को धर्मशाला का बताएं तो बहुत ही प्यारी प्यारी सी बरसात की ये बारिश आप सभी एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि सुबह सुबह हर कोई अपने घरों से निकले हैं जॉब के लिए, स्कूल के, खैर स्कूल में तो छुट्टियां चल रही हैं, लेकिन हाँ अपनी रूटीन को शुरू करने के लिए तो बारिश भी एंजॉय कर रहे हैं साथ ही साथ में। इसी के साथ दोस्तों तापमान की हम बात करें तो लगभग 18 ही डिग्री सेल्सियस के आसपास इस समय का तापमान आप सभी महसूस कर सकते हैं। और मौसम विभाग के अनुसार दोस्तों प्रदेश में आज मानसून एक बार फिर से रफ्तार पकड़ने जा रहा है। मौसम विज्ञान विभाग शिमला ने 29 जुलाई से पहले 1 अगस्त तक प्रदेश के कई हिस्सों में भारी से बहुत भारी वर्षा का पूर्वानुमान जारी किया है जी। दोस्तों इसके बाद 30 और 31 जुलाई को जो है वर्षा का दौर और तेज होने की आशंका है, और इसी तरह से हमें नदी नालों से थोड़ा दूर रहने की भी जरूरत है, क्योंकि सावधानी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो आइए दोस्तों इसी अपडेट के साथ बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और एंजॉय करते हैं कार्यक्रम का एक और प्यारा सा खूबसूरत सा गीत आप सभी के लिए, आप सभी के अपने अपने रेडियो सेट पर।

दोस्तों, छोटी सी बात मूवी का ये प्यारा सा गीत मुकेश की आवाज़ में आप सभी ने एंजॉय किया। कार्यक्रम आप सभी एंजॉय कर रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला। तो जैसे कि हमने बात की दोस्तों कि आज थोड़ा सा बात करेंगे प्रकृति पे भी, फिलहाल आइए दोस्तों एंजॉय करते हैं कार्यक्रम का एक और प्यारा सा खूबसूरत सा गीत। उसके बाद फिर से वापस आएंगे अपनी इस प्यारी सी बातचीत की ओर।

0: सुनो बजकर 20 मिनट हो चुके हैं और अब समय है कुछ खास जानकारियों का। ये मनोरंजन और बातचीत का सिलसिला इसी तरह से जारी रहेगा। अभी बहुत सारी खास बातें आप सभी तक साझा करेंगे, लेकिन आइए दोस्तों सुनते हैं प्रादेशिक समाचार। उसके बाद फिर से वापस आते हैं अपने इस प्यारे से सफर के साथ।
1: ने कहा, मोदी सरकार द्वारा संसद में पेश लोक परीक्षा संशोधन विधेयक परीक्षाओं में धांधली करने वालों पर कसेगा शिकंजा। मंडी जिला में शिवा परियोजना के तहत अमरूद के बाग स्थापित कर बागवानी विस्तार और किसानों की आय बढ़ाने के प्रयास जारी। और प्रदेश भर में मानसून की वर्षा का क्रम जारी, आज 5 जिलों में ऑरेंज अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश में आपदा राहत पैकेज में बढ़ोतरी की घोषणा की है। कल धर्मशाला में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि पैकेज के तहत राज्य सरकार अब पूरी तरह से क्षतिग्रस्त मकान के निर्माण के लिए 7 लाख रुपए की बजाय 7.5 लाख रुपए देगी। इसके अलावा घर के बर्तन, फर्नीचर और बच्चों की किताबें खरीदने के लिए 1 लाख रुपए अतिरिक्त सहायता प्रदान की जाएगी। इस प्रकार प्रभावित परिवारों को कुल 8.5 लाख रुपए तक की सहायता प्राप्त होगी।
2: मैंने मकान बनाने के लिए 7.5 लाख रुपया, घर के बर्तन पलंग बच्चों की किताबें खरीदने के लिए 1 लाख रुपया एक्स्ट्रा 8.5 लाख रुपया दिया। जब से हमारी सरकार आई है 2023-24 में 23,000 घर या तो पूर्णतया नष्ट हो गए थे या आंशिक रूप से नष्ट हुए थे। तब से मैंने 7 लाख रुपया रखा था, तो 2 साल में महंगाई भी बढ़ी है, तो इसलिए 50,000 रुपया और बढ़ाया। हमारी सरकार सभी आपदा प्रभावित परिवारों के लिए खड़ी है।
1: अपने कांगड़ा दौरे के दौरान कल मुख्यमंत्री ने नगरोटा बगवां में कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए सरकार चिकित्सा महाविद्यालयों में स्नातकोत्तर पीजी सीटों की संख्या बढ़ा रही है। प्रदेश में 330 नई पीजी सीटें बढ़ाने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस निर्णय से टांडा मेडिकल कॉलेज में ही 100 पीजी सीटों की बढ़ोतरी होगी। उन्होंने बताया कि कांगड़ा चिकित्सा महाविद्यालय टांडा सहित अन्य संस्थानों में आधुनिक मशीनें स्थापित की जा रही है, ताकि गंभीर बीमारियों के उपचार के लिए लोगों को प्रदेश से बाहर या निजी अस्पतालों का रुख न करना पड़े। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा है कि संसद में लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन बिल लाकर केंद्र सरकार ने स्पष्ट संदेश दिया है कि सार्वजनिक परीक्षाओं में धांधली करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि इस संशोधन में पेपर लीक जैसे अपराधों के लिए 10 वर्ष तक की सजा, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना, 2 महीने के भीतर जांच पूरी करने और 3 महीने के अंदर ट्रायल समाप्त करने का प्रावधान किया गया है, ताकि दोषियों को जल्द सजा मिल सके। जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया है कि हिमाचल में पेपर लीक मामलों में गंभीर आरोप सामने आने और जांच की संतुष्टि होने के बावजूद कांग्रेस सरकार ने दोषी अधिकारियों को पदोन्नति देकर महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त किया है। आज विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जा रहा है। ये दिन हेपेटाइटिस और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों को बढ़ावा देने, व्यक्तियों और आम जनता को कार्रवाई और भागीदारी के लिए प्रोत्साहित करने का अवसर है। इस वर्ष का विषय है हेपेटाइटिस, आइए इसे खत्म करें, जो 2030 तक हेपेटाइटिस उन्मूलन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए वित्तीय, सामाजिक और स्वास्थ्य संबंधी बाधाओं को दूर करने पर केंद्रित है। प्रदेश में मंडी मध्यस्थता योजना के तहत सी ग्रेड सेब की खरीद 12 रुपए प्रति किलो की दर से 1 अगस्त से 31 अक्टूबर तक की जाएगी। इस योजना के तहत सीडलिंग, ग्राफ्टेड और कच्चे अचारी किस्म के आम की खरीद 12 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से 31 अगस्त तक की जा रही है। एक सरकारी प्रवक्ता के अनुसार प्रोसेसिंग ग्रेड किन्नू, माल्टा और संतरा की खरीद 12 रुपए प्रति किलोग्राम, जबकि गलगल की खरीद 10 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से 21 नवंबर से शुरू होगी। सेब खरीद के लिए इस वर्ष प्रदेश भर में 42 कलेक्शन सेंटर स्थापित किए गए हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। मंडी जिले में बागवानी को बढ़ावा देने और किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में एचपी शिवा परियोजना महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। परियोजना के तहत सदर विकासखंड के बाड़ी क्लस्टर में बड़े स्तर पर अमरूद के पौधारोपण अभियान की शुरुआत की गई है। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे मंडी जिला संवाददाता।
3: हिमाचल प्रदेश को फल राज्य बनाने की दिशा में बागवानी विभाग ने एचपी शिवा परियोजना के तहत मंडी जिला के सदर विकास खंड के बाड़ी क्लस्टर में बड़े स्तर पर अमरूद के पौधारोपण अभियान की शुरुआत की है। परियोजना के तहत इस सीजन में 7,777 अमरूद के पौधे लगाए जाएंगे। किसानों को अमरूद की उत्तम किस्मों वीएनआर वही और जॉर्वी रेड के पौधे उपलब्ध करवाए गए हैं। पौधारोपण के साथ आयोजित प्रशिक्षण शिविर में किसानों को वैज्ञानिक तरीके से बाग लगाने का व्यवहारिक प्रशिक्षण भी दिया गया। बागवानी विशेषज्ञों ने खेत में ही गड्ढों की तैयारी, खाद के सही अनुपात, पौधारोपण की विधि और पौधों की देखभाल की आधुनिक का प्रदर्शन किया ताकि किसानों को बेहतर उत्पादन और अधिक आय सुनिश्चित की जा सके। बागवानी निदेशक डॉक्टर संजय गुप्ता ने बताया कि बाड़ी क्लस्टर का चयन करीब 2 महीने पहले किया गया था और विभाग की तत्परता से सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। अब बड़े स्तर पर पौधारोपण शुरू किया गया है। उन्होंने विश्वास जताया कि यह परियोजना आने वाले वर्षों में क्षेत्र के किसानों की आर्थिकी को मजबूत करने के साथ साथ मंडी जिला में फल उत्पादन की नई पहचान बनेगी। आकाशवाणी समाचारों के लिए मंडी से मैं मुनीश सूद।
1: प्रदेश पेंशनर संयुक्त संघर्ष समिति ने सरकार से छठे वेतन आयोग की लंबित देनदारियों और महंगाई भत्ते की किश्तों को इसी माह जारी करने की मांग की है। समिति के अतिरिक्त महासचिव भूपराम शर्मा ने कहा कि यदि सरकार ने ऐसा नहीं किया तो 8 अगस्त को शाहपुर में 18 पेंशनर संगठनों का राज्य स्तरीय सम्मेलन होगा जिसमें बड़े आंदोलन की रणनीति तय की जाएगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के साथ हुई बैठकों में 31 जुलाई तक छठे वेतन आयोग की लंबित देनदारियों के भुगतान का आश्वासन दिया गया था लेकिन अभी तक कोई अधिसूचना जारी नहीं हुई है, इसलिए संगठन ने आगामी रणनीति तय करने का निर्णय लिया है। हिमाचल प्रदेश में मॉनसून ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली है। राजधानी शिमला सहित प्रदेश के कई हिस्सों में बीती रात से लगातार बारिश हो रही है और मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों का संवेदनशील माना है। आज 5 जिलों चंबा, कांगड़ा, मंडी, शिमला और सिरमौर जिलों के लिए भारी से बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है जबकि ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, सोलन और कुल्लू में भारी बारिश का येलो अलर्ट है। सिरमौर जिला के पांटा साहिब उपमंडल में भारी बारिश की आशंका के चलते आज सभी शिक्षण संस्थान बंद रखने के आदेश दिए गए हैं। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के वैज्ञानिक संदीप शर्मा के अनुसार आज से 1 अगस्त तक प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में व्यापक वर्षा होने की संभावना है।
4: आज 27 जुलाई से लेकर 1 अगस्त प्रदेश के कई क्षेत्रों में मॉनसून सक्रिय रहेगा और इसी दौरान लगभग पूरे प्रदेश में ही बारिश का दौर देखने को मिलेगा। ये जो रेनफॉल एक्टिविटी देखी कल 28 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक इसमें इंटेंसिटी वाइज काफी सक्रिय रहेगा और इसके चलते हमारे कुछ एक डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे हैवी रेनफॉल के साथ वेरी हैवी रेनफॉल भी हो सकती है। 28 जुलाई को डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर और सिरमौर में ऑरेंज कैटेगरी का हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल का अलर्ट जारी किया है और 29 जुलाई को डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में ऑरेंज कैटेगरी का अलर्ट जारी किया गया है और वेदर एक्टिविटी इसमें देखिए 30 और 31 जुलाई को काफी सक्रिय रहेगा।
1: अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर। आज सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता दी है। अमर उजाला के शब्द है, दुर्गम क्षेत्रों में 55 साल से अधिक उम्र के कर्मचारी नहीं होंगे ट्रांसफर, तबादला नीति में संशोधन। दैनिक भास्कर ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के हवाले से लिखा है, पेपर लीक व भर्ती घोटाला भाजपा शासन की देन, कांग्रेस सरकार ने दोषियों को जेल भेजा। सड़क पर चलते चलते रिचार्ज होंगे इलेक्ट्रिक वाहन, शीर्षक से दिव्य हिमाचल ने लिखा है, राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज सोनभद्र ने छात्रों ने बनाया हाइब्रिड वायरलेस चार्जिंग स्टेशन। प्रदेश हाईकोर्ट के फैसले से जुड़ी खबर को पंजाब केसरी ने शीर्षक दिया है, प्रमोशन के लिए एक बार विकल्प चुनने के बाद कर्मचारी उससे पीछे नहीं हट सकते। शिमला के बंधित प्रतिबंधित मार्गों पर अब वाहन परमिट फीस 75 रुपए, दैनिक जागरण की एक खबर है। हिमाचल दस्तक के अनुसार प्रदेश के लाखों लोगों को इस साल मिलेगी करीब 1,200 करोड़ की बिजली सब्सिडी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य सरकार की आपदा राहत पैकेज में बढ़ोतरी की घोषणा, अब पूरी तरह क्षतिग्रस्त मकान के निर्माण को मिलेंगे 7.5 लाख रुपए। प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए बढ़ाई जाएगी पीजी डॉक्टरों की सीटें, 330। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा, मोदी सरकार द्वारा संसद में पेश लोक परीक्षा संशोधन विधेयक परीक्षाओं में धांधली करने वालों पर कसेगा शिकंजा। मंडी जिला में शिवा परियोजना के तहत अमरूद के बाग स्थापित कर बागवानी विस्तार और किसानों की आय बढ़ाने के प्रयास जारी। और प्रदेश भर में मानसून की वर्षा का क्रम जारी, आज 5 जिलों में ऑरेंज अलर्ट। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं सुबह 11 बजे। नमस्कार।

समाचारों के बाद एक बार फिर से आप सभी जुड़ चुके हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ। आप सभी ने ट्यून किया है 91.2 मेगाहर्ट्ज पर अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला। और दोस्तों, बहुत लंबे अरसे से, लंबे समय से जो है, जो पेपर लीक की बात चल रही है, युवाओं के भविष्य की बात चल रही है, तो जहां हम प्रकृति की बात करने वाले हैं, वहीं हम बात करते हैं दोस्तों मेहनत, विश्वास और युवा शक्ति की, शिक्षा के भविष्य की तलाश की। दोस्तों, ये जो बातचीत है सिर्फ परीक्षा, पेपर लीक या छात्र आंदोलनों तक सीमित नहीं है। ये बातचीत उस भरोसे की है जिसके सहारे लाखों विद्यार्थी अपना भविष्य गढ़ते हैं। तो ये बहुत ही खास और गंभीर बातचीत है, लेकिन साथ ही हम दोस्तों और भी खास बातचीत कर रहे हैं आज के दिन, क्योंकि आज के दिन आप सभी मना रहे हैं विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस। प्रकृति की पुकार, विकास भी, संरक्षण भी। एक ऐसा दिन जो हमें याद दिलाता है कि प्रकृति केवल हमारी जरूरत नहीं बल्कि हमारा अस्तित्व है। हिमाचल की बर्फ से ढकी चोटियां, धर्मशाला के देवदार की वादियां, भागसुनाग का झरना, कांगड़ा की हरियाली, इन सब की खूबसूरती तभी तक है जब तक हम इन्हें बचा कर रख सकें। तो आज हम बात करेंगे दोस्तों प्रकृति संरक्षण की, जलवायु परिवर्तन की, हिमाचल के बदलते पर्यावरण की, और एक ऐसी बातचीत, एक ऐसा विषय जिसके बारे में शायद बहुत कम लोग जानते हैं, बहुत लोग जानते भी हैं। ऐसा कौन सा विषय है, जरूर जानेंगे, जरूर बात करेंगे। लेकिन दोस्तों आइए एंजॉय करते हैं पहले कार्यक्रम का ये खूबसूरत सा गीत आप सभी के लिए, आप सभी के अपने अपने रेडियो सेट पर 91.2 मेगाहर्ट्ज़ से।

SP बाला सुब्रमण्यम और केस चित्र के आवाजों के साथ आप सभी ने एंजॉय किया कार्यक्रम का ये बहुत ही प्यारा सा खूबसूरत सा गीत। दोस्तों, किसी भी देश की सबसे बड़ी ताकत उसकी युवा शक्ति होती है, लेकिन जब यही युवा व्यवस्था पर सवाल उठाने लगे तब ये केवल असंतोष नहीं होता बल्कि समाज के लिए आत्ममंथन का अवसर भी होता है। हिमाचल का विद्यार्थी पहाड़ जितने बड़े सपने, हिमाचल प्रदेश के विद्यार्थी मैदानों की तुलना में अलग परिस्थितियों में पढ़ाई करते हैं। कई गांवों में आज भी बच्चों को स्कूल पहुंचने के लिए कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है, रोजाना बसों में लंबी यात्रा करनी पड़ती है, ऊंचे पहाड़, बर्फबारी, बारिश, भूस्खलन, इन सब के बीच भी उनके सपने कभी छोटे नहीं होते। दोस्तों, धर्मशाला, कांगड़ा, चंबा, मंडी, कुल्लू, शिमला, सिरमौर, किन्नौर या फिर लाहौल स्पीति, हर जिले से निकलने वाले बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक, सैनिक, प्रशासनिक अधिकारी और शिक्षक बनने का सपना देखते हैं। लेकिन इन सपनों की सबसे बड़ी पूंजी क्या है? व्यवस्था और विश्वास। लेकिन आज उसी व्यवस्था पे सवाल उठ रहे हैं, उसी व्यवस्था को बनाने के लिए, एक तरह से व्यवस्थित करने के लिए युवा आवाज उठा रहे हैं। क्योंकि इतनी चुनौतियों का सामना करके जब हम आगे बढ़ते हैं तो बहुत सी बातें हमें ध्यान में रखनी होती है। तो जरूर दोस्तों, इस पे और भी हम बातचीत करेंगे, जानेंगे, लेकिन आइए उससे पहले एंजॉय करेंगे कार्यक्रम का ये खूबसूरत सा गीत।

दोस्तों, इस प्यारे से गीत के बाद एक बार फिर से आप सभी जुड़ चुके हैं अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला में अपनी रेडियो दोस्त रचिका के साथ। तो आइए दोस्तों, इसी के साथ बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और अब आप सभी को लेकर चलते हैं जानकारियों की ओर। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय ने विभिन्न विभागों में शिक्षकीय पदों पर चयन प्रक्रिया के तहत व्यक्तिगत साक्षात्कार के लिए अभ्यर्थियों की सूची जारी कर दी है। विश्वविद्यालय द्वारा जारी प्रथम चरण, फेज वन और द्वितीय चरण की अधिसूचनाओं में सहायक आचार्य, सह आचार्य तथा आचार्य पदों के लिए अभ्यर्थियों को आमंत्रित किया गया है। विश्वविद्यालय ने स्पष्ट किया है कि सभी अभ्यर्थियों की पात्रता अस्थायी है तथा अंतिम निर्णय मूल दस्तावेजों के सत्यापन के बाद ही लिया जाएगा। विश्वविद्यालय के अनुसार सभी साक्षात्कार 10, 11, 12 और 13 अगस्त को प्रातः 8:30 बजे से कुलपति सचिवालय हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय धर्मशाला में आयोजित किए जाएंगे। जी दोस्तों, तो ये बहुत ही खास जानकारी आप सभी के लिए और आप सभी तक पहुंचाई गई रेडियो गुंजन धर्मशाला के माध्यम से। तो आइए इसी के साथ बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का एक और प्यारा सा खूबसूरत सा गीत।

दोस्तों व्यवस्था और विश्वास की हम बात कर रहे हैं आज के इस बहुत ही प्यारे से कार्यक्रम में। आज हिमाचल का युवा क्या सोच रहा है? आज हिमाचल का युवा केवल डिग्री नहीं चाहता, हिमाचल का क्या दोस्तों पूरे देश का युवा जो है वो सिर्फ डिग्री तक सीमित नहीं है, वो चाहते हैं पारदर्शी भर्ती, समय पर परीक्षाएं, निष्पक्ष मूल्यांकन, रोजगार के अवसर और अपनी मेहनत का सम्मान। जब किसी परीक्षा में देरी होती है, जब भर्ती प्रक्रिया लंबी खींचती है या जब परीक्षा का निष्पक्षता पर सवाल उठते हैं तो सबसे अधिक चिंता उसी युवा को होती है जिसने वर्षों तक तैयारी की है। राष्ट्रीय घटनाएं और ये हिमाचल का संदेश। हाल के समय में देश भर में प्रतियोगी परीक्षाओं की पारदर्शिता, पेपर लीक और छात्रों की आवाज को लेकर ये बहुत ही बड़ी चर्चा जो है हमारे सामने है और हुई भी है। इस चर्चा ने केवल दिल्ली या बड़े शहरों के छात्रों को नहीं बल्कि हिमाचल जैसे राज्य के विद्यार्थियों को भी सोचने पर मजबूर किया, क्योंकि आज छात्र भी राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं में प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। वो दिल्ली, चंडीगढ़, कोटा, देहरादून और दूसरे शहरों में कोचिंग के लिए जाते हैं, घर से दूर रहकर पढ़ाई करते हैं, माता पिता अपनी बचत खर्च करते हैं। ऐसे में हर परीक्षा उसके लिए केवल और केवल परीक्षा नहीं होती, वो पूरे परिवार की उम्मीदें होती हैं। तो दोस्तों उस उम्मीद को तोड़ा जाना चाहिए या फिर उसका सम्मान करना चाहिए? बच्चे तो अपनी तरफ से उन उम्मीदों को बनाए रखने की पूरी पूरी कोशिश करते हैं, जी जान से मेहनत करते हैं, लेकिन जब ऐसी बातें सामने आती हैं तो कहीं ना कहीं बच्चों के सपने तो टूटते ही हैं, लेकिन साथ ही माता पिता की उम्मीदें भी टूटती हुई नजर आती हैं। जो उम्मीदें उनके वर्षों की मेहनत, बच्चों के साथ साथ माता पिता भी संघर्ष करते हैं, मेहनत करते हैं, तब जाके वो उन्हें अच्छे अच्छे कोचिंग सेंटर्स में कोचिंग दिलाते हैं, पढ़ाई अच्छे स्कूल से पढ़ाई कराते हैं। उन्होंने न जाने कितनी कुर्बानियां दी होंगी, तब जाके बच्चों को इस हद तक वो अच्छी शिक्षा दिला पाते हैं, लेकिन आगे जाके ऐसी बातें जब सामने आती हैं तो वो टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं। तो अब समय है दोस्तों उनके साथ खड़े होने का, उनकी आवाज़ को एक जज्बा देने का, जुनून देने का। फिलहाल आइए दोस्तों इसी के साथ एंजॉय करते हैं कार्यक्रम का एक और प्यारा सा गीत, उसके बाद फिर से वापस आते हैं इस बहुत ही खास बातचीत के साथ।

दोस्तों इस प्यारे से गीत के साथ एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम में। आइए इसी के साथ एक छोटा सा अंतराल, उसके बाद फिर से जुड़ेंगे अपनी इस बहुत ही खास बातचीत के साथ।

दोस्तों इस समय आप सभी ने ट्यून किया है 91.2 MHz पर अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला। दोस्तों विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस की आज हम बात कर रहे हैं, युवाओं की भी बात कर रहे हैं, लेकिन प्रकृति भी उतनी ही जरूरी है हम सभी के लिए। तो प्रकृति संरक्षण की, जलवायु परिवर्तन की और हिमाचल के बदलते पर्यावरण की अगर हम बात करें तो एक और ऐसा विषय है जिसके बारे में आप सभी जानते भी हैं लेकिन शायद कम जानते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जी दोस्तों, AI आज हमारे पर्यावरण पर AI जो है वो असर डाल रहा है। क्या वाकई में ये सही बात है, सच में ऐसा है या सिर्फ कहने सुनने की बात है? जी दोस्तों, अजीब सी बात लग रही है कि AI पर्यावरण पे किस तरह से असर डाल सकता है। AI तो हमारी सुविधाओं को और ज़्यादा आसान, मतलब मुश्किलों को आसान बनाने में मदद कर रहा है, फटाफट से हमें जो भी चाहिए वो फटाफट से हमें बना के दे रहा है, लेकिन तकनीक और प्रकृति के बीच संतुलन आखिर क्यों ज़रूरी है? दोस्तों अगर भारत में किसी प्रदेश को प्रकृति ने सबसे खूबसूरत उपहार दिया है तो उनमें हिमाचल प्रदेश सबसे आगे है। यहाँ के जंगल केवल पेड़ों का समूह नहीं है, ये हमारे लिए ऑक्सीजन का स्रोत हैं, जल स्रोतों की रक्षा करते हैं, बादलों को रोकते हैं, मिट्टी का कटाव रोकते हैं, हजारों जीव जंतुओं का घर हैं। धर्मशाला, पालमपुर, बीड, चंबा, भरमौर, लाहौल स्पीति, हर क्षेत्र की अपनी अलग जैव विविधता है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में हमने क्या देखा? अनियमित बारिश, बादल फटना, भूस्खलन, जंगलों में आग, ग्लेशियरों का तेजी से पिघलना, ये केवल एक हमारे लिए समाचार नहीं है, ये प्रकृति का चेतावनी संदेश है। दोस्तों प्रकृति कभी जल्दबाजी नहीं करती, फिर भी सब कुछ समय पर होता है। तो ये बहुत गंभीर सी बात है और बहुत ही ज़रूरी बात है, तो ज़रूर इस पे हम और भी बातचीत करेंगे कि आखिर AI प्रकृति को किस तरह से नुकसान पहुंचा सकता है या किस तरह से प्रभावित कर सकता है। लेकिन फिलहाल आइए इसी के साथ एंजॉय करते हैं कार्यक्रम का ये खूबसूरत सा गीत।

दोस्तों इसी प्यारे से गीत के साथ बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और अब फिर से रुक करते हैं बातचीत से जानकारियों की ओर। दोस्तों स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला ने जुलाई में आयोजित सप्लीमेंट्री परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए प्रदेश में 3 स्पॉट इवेल्युएशन सेंटर बनाए हैं। स्पॉट इवेल्युएशन सेंटर्स पर कक्षा और विषय के अनुसार योग्य शिक्षकों की नियुक्ति करने के शिक्षा उपनिदेशकों को निर्देश दिए गए हैं। जुलाई की 10वीं और 12वीं कक्षा की सप्लीमेंट्री परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन हेतु 3 स्पॉट इवेल्युएशन सेंटर जो है इनमें बिलासपुर में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला घुमारवी, पीएम श्री शहीद कैप्टन मृदुल शर्मा राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला हमीरपुर और डीएवी सीनियर सेकेंडरी स्कूल ऊना में छात्रों की सप्लीमेंट्री परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन किया जाएगा जो कि 1 अगस्त से प्रस्तावित है। ऐसे में 3 जिलों के शिक्षा उपनिदेशकों को स्पॉट इवेल्युएशन सेंटर्स के लिए शिक्षकों की नियुक्ति जल्द से जल्द करने के निर्देश दिए गए हैं। जी दोस्तों, तो ये बहुत ही खास जानकारी आप सभी तक पहुंचाई गई है रेडियो गुंजन धर्मशाला के माध्यम से। तो आइए इसी के साथ बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और एंजॉय करते हैं कार्यक्रम का एक और प्यारा सा खूबसूरत सा गीत।

दोस्तों, इस समय आप सभी जुड़े हुए हैं अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। गुड मॉर्निंग धर्मशाला कार्यक्रम आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ। तो आइए दोस्तों, इसी के साथ बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे। और हम बात कर रहे थे दोस्तों विश्वास और व्यवस्था की। तो जहाँ हम इतनी मेहनत करते हैं, मेहनत करने के बाद हमें ये सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं, तो कहीं ना कहीं जिंदगी में हार जो है वो हमें महसूस होती है। कहते हैं ना कि गिरकर संभलना कुछ लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। दोस्तों, कई छात्र जो हैं वो ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, कई दूसरे राज्यों में जाकर तैयारी कर रहे हैं। कुछ परिवार अपनी आय का बड़ा हिस्सा बच्चों की शिक्षा पर खर्च कर रहे हैं, यानी शिक्षा आज केवल किताबों तक सीमित नहीं रही, ये पूरे परिवार का साझा सपना बन चुकी है। हिमाचल की एक और चुनौती दोस्तों पलायन, एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्या कारण है कि बड़ी संख्या में हमारे युवा रोजगार और बेहतर अवसरों की तलाश में प्रदेश से बाहर जाते हैं? ये केवल हिमाचल की नहीं पूरे देश की चुनौती है। अगर स्थानीय स्तर पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार के अवसर बढ़ें, तो युवा अपने घर परिवार के करीब रहकर भी अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। पेपर लीक क्यों सबसे बड़ा अन्याय है? केवल प्रश्न पत्र का बाहर आना नहीं है पेपर लीक, ये उस छात्र के आत्मविश्वास को तोड़ देता है जिसने महीनों नहीं वर्षों मेहनत की। कल्पना कीजिए, चंबा के किसी दूर गांव का छात्र या भरमौर की किसी बेटी ने बर्फबारी के बीच पढ़ाई की, कमजोर इंटरनेट में ऑनलाइन क्लास ली, सीमित संसाधनों के बावजूद मेहनत की, और परीक्षा से पहले यदि उसे लगे कि व्यवस्था निष्पक्ष नहीं है, तो उसकी निराशा कितनी गहरी होगी। हिमाचल की पहचान क्या है? हिमाचल केवल प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध नहीं है, ये ईमानदारी, सादगी और अनुशासन की भूमि भी है। यही कारण है कि यहाँ के विद्यार्थी देश भर में अपनी मेहनत के लिए पहचाने जाते हैं। हमें इस पहचान को और मजबूत बनाना है। युवा आंदोलन संदेश क्या है दोस्तों? इतिहास बताता है कि छात्रों ने हमेशा समाज को दिशा दी है, लेकिन हर आंदोलन हमें ये भी सिखाता है कि समाधान, संवाद, पारदर्शिता और संस्थाओं में विश्वास से निकलता है। यही विश्वास फिर से जागृत करना है, फिर से बनाना है, ताकि विद्यार्थी जो है अपने सपनों को पारदर्शिता और विश्वास व्यवस्था के साथ पूरा कर

0: आखरा में ऐसे दिखा सोनिए
1: सोनिए सोनिए
0: इतना भी ना इतना सोनिए
1: सोनिए सोनिए

दोस्तों बहुत ही प्यारा सा ये एनर्जी भरा गीत अदनान सुखविंदर सिंह और फाल्गुनी की आवाजों के साथ आप सभी ने एंजॉय किया। कार्यक्रम आप सभी एंजॉय कर रहे हैं इस समय दोस्तों गुड मॉर्निंग धर्मशाला अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ इस बहुत ही प्यारे से सफर में इस समय आप सभी जुड़े हुए हैं। दोस्तों क्या आपने कभी महसूस किया है कि धर्मशाला का मौसम पहले जैसा क्यों नहीं रहा? क्या गर्मियां बढ़ रही हैं? क्या बारिश का स्वरूप बदल गया है? तो थोड़ा सा इस पे सोचकर देखिए। दोस्तों आज की सबसे बड़ी चुनौती जल संरक्षण। पानी केवल पीने के लिए नहीं, हर पेड़, हर खेत, हर नदी, हर इंसान, हर जीव, सभी की जिंदगी पानी से जुड़ी है। हिमाचल की पहचान ही उसके झरनों और नदियों से है, लेकिन आज प्राकृतिक स्रोत सूख रहे हैं। गांव में कई पुरानी बावड़ियां अब पहले जैसी नहीं रही। बरसात कम समय में ज्यादा हो रही है, भूजल रिचार्ज नहीं हो पा रहा। क्या करें? वर्षा जल संचयन, पेड़ लगाएं, पानी व्यर्थ ना बहाएं, प्लास्टिक का प्रयोग कम करें, स्थानीय जल स्रोतों की सफाई करें, तो ये सारी चीजें हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है अगर हम अपनी प्रकृति का संरक्षण करना चाहते हैं, उसे बचाना चाहते हैं, अगली आने वाली पीढ़ियों तक सुरक्षित पहुंचाना चाहते हैं, तो ये छोटी छोटी सी पहल हमें जरूर करनी होगी।

दोस्तों, इस छोटे से अंतराल के बाद एक बार फिर से आप सभी जुड़ चुके हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ और बहुत ही खास बातचीत के साथ। दोस्तों, पेपर लीक का नाम तो हम बहुत सुनते हैं, बहुत सारी बातें, और कुछ लोग ऐसे कह भी देते हैं कि कोई बात नहीं, हो गया तो दोबारा हो जाएगा। जो लोग पहले मेहनत कर सकते हैं और जिन्होंने करनी होती है वो दोबारा भी कर सकते हैं, लेकिन कहना आसान है। जो इंसान इस चीज़ को फेस करते हैं, खास करके जो गरीब परिवार के बच्चे, दोस्तों माँ बाप ने बहुत मेहनत से उन्हें यहाँ तक पहुँचाया होता है, न जाने किसी से उधार लेके, न जाने कितनी दिन रात मेहनत करके। तो ये बात आप उनसे पूछिए कि कितना संघर्ष रहता है, जिस शब्द को बोलने में हमें एक सेकंड नहीं लगता कि कोई बात नहीं, एक बार नहीं तो दूसरी बार हो जाएगा। लेकिन ये उन्हीं से कहते हैं ना कि दर्द वही महसूस कर सकता है जो उस दर्द से गुजरा हो। दोस्तों, पहाड़ों की संतानें हैं, पहाड़ हमें सिखाते हैं कि ऊंचाइयां एक दिन में नहीं मिलती, हर चढ़ाई जो है वो कठिन होती है, लेकिन जो धैर्य नहीं छोड़ता वही शिखर तक पहुंचता है। अगर कभी व्यवस्था में कमियां दिखाई दे तो जागरूक नागरिक बनिए, सकारात्मक संवाद कीजिए, लेकिन अपनी मेहनत, अपने चरित्र और अपने मूल्यों के कभी भी समझौता मत कीजिए। एक मजबूत शिक्षा व्यवस्था केवल सरकार नहीं बनाती, उसे विद्यार्थी, शिक्षक, अभिभावक, समाज और संस्थाएं सब मिलकर बनाते हैं। हम सबकी ये जिम्मेदारी है कि आने वाली पीढ़ी को ऐसा वातावरण दें जहां सफलता का रास्ता मेहनत से होकर जाए, जहां ईमानदारी सबसे बड़ी योग्यता हो, तभी बच्चों को जिंदगी में आगे बढ़ना आसान होगा और वो हर एक मुश्किल का सामना डटकर कर पाएंगे।

दोस्तों इस प्यारे से गीत के बाद आइए फिर से रुक करते हैं अपनी बातचीत की और प्रकृति की हम बात कर रहे थे दोस्तों, तो आप यही

0: इनमें हजारों शक्तिशाली सर्वर लगे रहते हैं, ये लगातार चलते रहते हैं और चलते समय बहुत गर्म हो जाते हैं। उन्हें ठंडा रखने के लिए बिजली भी चाहिए और कई जगह बड़ी मात्रा में पानी भी चाहिए। यही कारण है कि जितना एआई बढ़ेगा उतनी ऊर्जा की मांग बढ़ेगी, उतनी बिजली बनेगी और कई बिजली घरों में पानी की जरूरत भी पड़ेगी। यानी एआई सीधे पानी नहीं पीता, लेकिन उसके पीछे काम करने वाली पूरी व्यवस्था जल और ऊर्जा दोनों का उपयोग करती है। अब हिमाचल से इसका क्या संबंध है? तो दोस्तों, हिमाचल जल स्रोतों का प्रदेश है। अगर भविष्य में बड़े डेटा सेंटर स्थापित हों तो हमें ये भी सुनिश्चित करना होगा कि वे वर्षा जल का उपयोग करें, पुनर्चक्रित पानी अपनाएं, सौर ऊर्जा का इस्तेमाल करें, स्थानीय जल स्रोतों पर दबाव ना डालें। तकनीक गलत नहीं है, लेकिन तकनीक जिम्मेदार होनी चाहिए। एआई रुकने वाला नहीं, डिजिटल दुनिया आगे बढ़ेगी, लेकिन विकास तभी सफल होगा जब ऊर्जा बचाई जाए, पानी बचाया जाए, इलेक्ट्रॉनिक कचरा कम किया जाए, ग्रीन डाटा सेंटर बनाए जाएं, नवीकरणीय ऊर्जा को अपनाया जाए। जी दोस्तों, ये छोटी छोटी सी बातें, और भी बहुत खास बातें हैं, जरूर जानेंगे, जरूर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आइए एंजॉय करते हैं कार्यक्रम का एक और खूबसूरत सा गीत।
1: एआई पावर्ड पर्सनल म्यूजिक।

दोस्तों बहुत ही प्यारा सा ये गीत आप सभी ने एंजॉय किया और कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला इस समय आप सभी एंजॉय कर रहे हैं जी दोस्तों। और प्रकृति संरक्षण की हम बात कर रहे हैं कार्यक्रम में, तो ये तो हमने जान लिया कि किस किस तरह से प्रकृति को जो है वो नुकसान पहुंच रहा है और वहाँ हमने रिलेट किया AI को पर्यावरण से, लेकिन हम क्या कर सकते हैं। मेन बात तो यही है दोस्तों कि हमारी क्या जिम्मेदारी है। यदि हर परिवार साल में सिर्फ 2 पेड़ लगाए, हर गांव अपने जल स्रोत बचाए, हर स्कूल एक प्रकृति क्लब बनाए, हर बच्चा एक पौधे की जिम्मेदारी ले, तो आने वाला हिमाचल और भी ज्यादा सुंदर होगा। छोटी छोटी आदतें, कपड़े का थैला यूज करना, प्लास्टिक का कम प्रयोग करना, बिजली बचानी, मोबाइल और लैपटॉप जरूरत पर ही बदलें, ई कचरा सही जगह दें, पानी बचाएं, स्थानीय पौधे लगाएं। एक पौधा तो जरूर लगाइए या कम से कम एक पौधे को पानी जरूर दीजिए। दोस्तों विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस केवल एक तारीख नहीं है, ये एक संकल्प है। हमें ये याद रखना होगा, प्रकृति के बिना तकनीक का कोई अर्थ नहीं। AI हमें तेज बना सकता है, लेकिन पेड़ ही हमें सांस देंगे। डेटा सेंटर हमें जानकारी देंगे, लेकिन नदियां ही हमें जीवन देंगी। मोबाइल हमें दुनिया से जोड़ सकता है, लेकिन प्रकृति हमें जीवन से जोड़ती है। तो आइए आज हम सब मिलकर ये संकल्प लें कि एक पेड़ लगाएंगे, पानी बचाएंगे, प्रकृति का सम्मान करेंगे, तकनीक का जिम्मेदारी से उपयोग करेंगे और आने वाली पीढ़ियों के लिए हिमाचल की हरियाली को सुरक्षित बनाए रखेंगे।

प्रकृति की बात हम कर रहे हैं और साथ ही हम बात कर रहे थे विश्वास और व्यवस्था की। तो दोस्तों, जहां हर विद्यार्थी ये विश्वास लेकर परीक्षा कक्ष में जाए कि उसकी मेहनत का सम्मान होगा, बस इसी जुनून को हमें बनाए रखना है। हिमाचल के पहाड़ों से निकलने वाले हर सपने को उड़ान मिले, देश के हर कोने से निकलने वाले विद्यार्थी के सपनों को उड़ान मिले, ये उम्मीद करते हैं। हर प्रतिभा को उचित अवसर मिले और हर युवा ये कह सके कि मेरी मेहनत ही मेरी सबसे बड़ी पहचान है। जी दोस्तों, तो इसी शुभकामनाओं के साथ जो है अब समय हो चला है आप सभी से अलविदा लेने का। 9 बजे से लेकर 11 बजे तक का ये बहुत ही प्यारा सा सफर आप सभी ने एंजॉय किया अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ, बहुत ही खास और गंभीर सी बातचीत के साथ। तो जाते जाते एंजॉय करते हैं दोस्तों कार्यक्रम का ये प्यारा सा खूबसूरत सा गीत आप सभी के लिए, आप सभी के अपने रेडियो सेट पर।

दोस्तों इसी प्यारे से गीत के साथ दीजिए अनुमति अपनी रेडियो दोस्त रुचिका को कार्यक्रम संपन्न करने की। फिर होगी मुलाकात आप सभी के साथ एक नई बातचीत नई जानकारियों के साथ। तब तक आप सभी इसी तरह से अपना ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और साथ ही गुनगुनाते रहिए अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला गूंज अपने पन की।

मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।

आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
1: हर घर सूर्य घर।
2: मुझे लगता है इस दुनिया में सबसे बड़ा दान ना पैसे का है, ना कपड़े का है, ना किसी चीज सामान का है। दुनिया में सबसे बड़ा दान है किसी दुखी को आप अपनी एक बात देकर के उसको खुश कर दो। आप उसके चेहरे पर प्रसन्नता लाओ और आप ऐसा कुछ कर दो जो उसके जीवन के दुख खत्म हो जाए। वो आपको देख करके कुछ समय के लिए भूल जाए कि वो कितना दुख

0: साइबर फाइनेंशियल फ्रॉड में फंस जाना तो कॉल 1930 पर लगाना। ऑनलाइन होने वाले धोखाधड़ी और साइबर फ्रॉड से पीड़ित होने पर गृह मंत्रालय भारत सरकार की अधिकृत वेबसाइट www.cybercrime.gov.in पर अपनी शिकायत दर्ज कराएं।
1: पवन आ गया।
2: पवन वहाँ क्यों बैठा है?
1: पता नहीं तुझे उसे टीबी है।
2: और भाई लास्ट बेंच का मजा अकेले अकेले।
3: पता है ना मुझे टीबी है।
2: चल चल तुझे पता है ना इलाज का असर शुरू होने के बाद टीबी के इन्फेक्शन का डर नहीं रहता। टिफिन में क्या है? टीबी की दवाई के साथ खाना भी अच्छे से लेना है, समझा?
4: अपनों का जोड़ है टीबी का तोड़, तो फिर भेदभाव क्यों? टीबी के इलाज में अपनों का साथ दें।
5: सुनो, तुम्हारे पास 5,000 रुपए पड़े हैं?
6: 5,000? मेरे पास 500 रुपए नहीं है, तुम 5,000 पूछ रहे हो?
5: Oh, no. देख लो कहीं थोड़े बहुत पड़े हो।
6: तुमने दिए कभी जो थोड़े बहुत कहीं पड़े होंगे?
5: किचन के किसी डब्बे वब्बे में छुपाए हो या किसी कपड़े के नीचे?
6: तुम्हें सच में लगता है मैं तुमसे पैसे छुपाती हूँ? अरे नहीं है यार मेरे पास पैसे।
5: कसम खाओ।
6: कसम से मेरे पास 1 रुपया नहीं है।
5: तो फिर ये ड्रेसिंग टेबल के कपड़े के नीचे 5,000 किसने रखा? मेरा ही होगा लगता है, रख के भूल जाऊंगा ना। और तुमने तो कसम खाई है, तुम्हारे तो है नहीं। मेरे ही होंगे इस घर में। और रहते ही
7: भारी मिस्टेक हो गया सर।
6: नहीं मतलब तुम्हारे ही होंगे।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और हाजिर हो गई हूँ कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने लेकर। तो श्रोताओं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम का सबसे पहला प्यारा सा गीत। आप यूं ही बने रहिए 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम सुन रहे हैं आप गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

गीत सुहाने नए पुराने इस समय श्रोता सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी, और लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत।

आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर कार्यक्रम सुन रहे हैं। गीत सुहाने नए पुराने, लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

आप बने हुए हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

गीत सुहाने नए पुराने आप सुन रहे हैं 91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी। आइए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

श्रोताओं, इस समय आप हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

91.2 MHz पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम सुन रहे हैं आप गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।

आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
1: हर घर सूर्य घर।
2: मुझे लगता है इस दुनिया में सबसे बड़ा दान ना पैसे का है, ना कपड़े का है, ना किसी चीज सामान का है। दुनिया में सबसे बड़ा दान है किसी दुखी को आप अपनी एक बात दे करके उसको खुश कर दो। आप उसके चेहरे पर प्रसन्नता लाओ और आप ऐसा कुछ कर दो जो उसके जीवन के दुख खत्म हो जाए। वो आपको देख करके कुछ समय के लिए भूल जाए कि वो कितना दुखी।

0: फिर भी साइबर फाइनेंशियल फ्रॉड में फंस जाना तो कॉल 1930 पर लगाना। ऑनलाइन होने वाले धोखाधड़ी और साइबर फ्रॉड से पीड़ित होने पर गृह मंत्रालय भारत सरकार की अधिकृत वेबसाइट www.cybercrime.gov.in पर अपनी शिकायत दर्ज कराएं।
1: पवन आ गया।
2: पवन वहाँ क्यों बैठा है?
1: तुझे उसे टीबी है।
2: और भाई लास्ट बेंच को मजा अकेले अकेले।
3: पता है ना मुझे टीबी है।
2: चल चल तुझे पता है ना इलाज का असर शुरू होने के बाद टीबी के इन्फेक्शन का डर नहीं रहता। टिफिन में क्या है? टीबी के दवाई के साथ खाना भी अच्छे से लेना है, समझा?
4: अपनों का जोड़ है टीबी का तोड़, तो फिर भेदभाव क्यों? टीबी के इलाज में अपनों का साथ दें।
5: सुनो, तुम्हारे पास 5,000 रुपए पड़े हैं?
6: 5,000? मेरे पास 500 रुपए नहीं है, तुम 5,000 पूछ रहे हो?
5: Oh, no. देख लो कहीं थोड़े बहुत पड़े हो।
6: तुमने दिए कभी जो थोड़े बहुत कहीं पड़े होंगे?
5: किचन के किसी डब्बे वब्बे में छुपाए हो या किसी कपड़े के नीचे?
6: तुम्हें सच में लगता है मैं तुमसे पैसे छुपाती हूँ? अरे नहीं है यार मेरे पास पैसे।
5: कसम खाओ।
6: कसम से मेरे पास 1 रुपया नहीं है।
5: तो फिर ये ड्रेसिंग टेबल के कपड़े के नीचे 5,000 किसने रखा? मेरा ही होगा लगता, रख के भूल जाऊंगा ना। अब तुमने तो कसम खाई है, तुम्हारे तो है नहीं। मेरे ही होंगे इस घर में और रहते ही कौन है।
7: भारी मिस्टेक हो गया सर।
6: नहीं मतलब तुम्हारे ही होंगे।

0: नमस्कार दोस्तों, रेडियो गुंजन धर्मशाला में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है दोस्तों कि बहुत अच्छे हैं, अपना ध्यान बहुत अच्छे से रख रहे होंगे। तो एक बार फिर से कार्यक्रम लेकर मेरे हौसलों की उड़ान हाजिर हो गई हूँ दोस्तों, और मेरे साथ कार्यक्रम में मौजूद है
1: रूमा
0: जी। तो रूमा जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में हमारे प्यारे प्यारे से दोस्तों के साथ।
1: बिल्कुल रुचिका, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी और हमारे दोस्तों का भी जो हमें इतने इत्मीनान से सुनते हैं और हमारी कही बातों के ऊपर काफी ज्यादा विचार भी करते हैं और काफी सारा सहयोग हमें दे रहे हैं इस कार्यक्रम को और भी अधिक आकर्षक और मन भावन बनाने में।
0: जी बिल्कुल रूमा जी, बहुत सही बात कही है आपने, क्योंकि हमारे दोस्तों का साथ जब तक हमारे साथ इसी तरह से जुड़ा हुआ है ना, तो मन करता है कि बस हम आते तो एक हफ्ते के बाद है, लेकिन मन करता है कि जब भी उनकी याद आए तो बस आ जाएं उनके साथ प्रोग्राम करने के लिए। पर क्या करें,
1: बिल्कुल
0: समय की पाबंदी।
1: और ये पाबंदियां देखिए ना, एक तरह से हमें अनुशासित भी करती
0: है। बिल्कुल,
1: जब हम किसी पाबंदी में रह के कोई काम करते हैं तो हमें हमारी लिमिट्स पता होती है, हमें पता होता है हमने क्या करना है और क्या नहीं करना है। और देखो रुचिका, आपने देखा अभी हम सबके अंदर एक बहुत ही गहरा जज्बा भरा हुआ है, देश का बच्चा बच्चा जो है उसमें भी देश प्रेम जागा हुआ है। जब भी हमारे देश के ऊपर बाहरी कोई सुरक्षा की बात आती है, बाहरी तरफ से किसी प्रकार का कोई भी हमला होता है या किसी भी प्रकार की कोई चुनौती का हमें सामना करना पड़ता है, तो देश का छोटा छोटा बच्चा भी पूरे देश प्रेम के जज्बे से भर जाता है और चाहता है कि हम भी अपने देश की सुरक्षा के लिए कुछ ना कुछ करें। लेकिन देखिए, ये हम सबके लिए पॉसिबल नहीं है।
0: बिल्कुल सही कहा।
1: देखो ना तो हम सेना में हैं, ना हम सशस्त्र बल में हैं, ना ही हम पुलिस में हैं। तो क्या ऐसा किया जाए कि हमें लगता है कि हम भी अपना छोटा सा योगदान अपने देश की सुरक्षा में दें।
0: बिल्कुल सही कहा रूमा जी आपने, क्योंकि हर एक नागरिक की कोई ना कोई रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहती है, फिर चाहे वो देश के प्रति हो या खुद के प्रति हो या समाज के प्रति हो या फिर किसी पर्सन के प्रति हो।
1: बिल्कुल
0: है ना, हम आए दिन जो है बहुत सारे लोगों के साथ मिलते हैं, नई नई बातचीतें सीखते हैं, बहुत कुछ अनुभव भी हमें सिखाते हैं।
1: बिल्कुल,
0: तो उस तरह से हम लोगों का क्या एक नजरिया रहता है कि अगर कुछ गलत हो गया या अगर हमें कुछ आसपास अपने देखने को मिल रही है कुछ गलत चीजें
1: जी,
0: तो हम क्या करते हैं, अक्सर आपने भी सुना होगा कि ये उनका काम है, ये उनकी कमियां हैं, वो संभाले, हमारा ये काम नहीं है।
1: बिल्कुल सही कहा रुचिका हमने, और हम यही बात सोच के कि ये जिम्मेदारी हमारी नहीं है, हमारा काम नहीं है, हम उस चीज को आगे सरका देते हैं और कहीं ना कहीं हम अपने देश की सुरक्षा में, हमारे देश के प्रति जो हमारी जिम्मेदारी है उसमें हम चूक कर जाते हैं। और देखिए, जब देश प्रेम का जज्बा जागता है ना तो हम बहुत बढ़ चढ़ के बात करते हैं, हमारे हर एक व्यक्ति के मन में होता है कि अब हम दुश्मन को नाकों चने चबवा दें, उसकी हड्डी पसली एक कर दें। लेकिन जैसे ही सारी चीजें खत्म हो जाती हैं, सब तरफ शांति हो जाती है, तो हम अपने जो आंतरिक देश में हमारे चीजें चल रही होती हैं उनको हम भूल जाते हैं। तो जरूरी नहीं है कि बॉर्डर पे जाकर ही हम अपने देश की सुरक्षा कर सकते हैं रुचिका। मुझे लगता है कि अपने आसपास छोटी छोटी चीजों को अगर हम ध्यान दें, छोटी छोटी अपनी जो मन के अंदर जो हमारे ईगोज हैं उनको अगर हम दरकिनार कर दें, तो हमारे देश में शांति का माहौल बना रहेगा, सुरक्षा बलों को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, और हम चाहें तो हम खुद भी, हम कानून की बात करते हैं कि पुलिस का काम है कानून व्यवस्था को बनाए रखना, लेकिन अगर हम अपनी आंतरिक शक्ति को बनाए रखें, शांति को बनाए रखें, तो मुझे लगता है कि काफी हद तक हम अपने आसपास शांति बना रख सकते हैं। इन कानूनों का, छोटी छोटी बातों का पालन करके हम अपने देश के विकास में सहयोग दे सकते हैं और इसकी सुरक्षा को पुख्ता बना सकते हैं।
0: बिल्कुल सही कहा रुमा जी आपने, क्योंकि ये जो ईगो है ना, आपने कहा कि ईगो को हम साइड में रखकर थोड़ा सा समाज के बारे में, देश के बारे में सोचें, तो हो सकता है कि जो हमारी सुरक्षा के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, दिन रात जाग रहे हैं, उनकी थोड़ी सी हेल्प हो जाए।
1: बिल्कुल।
0: लेकिन हम क्या करते हैं, आपस में ही लड़ना जब शुरू कर देते हैं तो फिर उससे मुसीबतें और बढ़ जाती हैं।
1: वैसे भी अक्सर आपने सुना होगा रुचिका, जब हम कहते हैं कि हमारे घर में आपसी कला होती है, परिवार की हम बात अगर करें तो हमारे पड़ोसी उस कला का फायदा उठाते हैं, हमारे परिवार के सदस्यों को भड़काते हैं, एक दूसरे के खिलाफ भड़काएंगे, परिवार को तोड़ने की बात करते हैं। यही चीज बाहर जाके होती है। जब हम अपने घर परिवार में सुख शांति का माहौल बना के रखते हैं तो पूरा मोहल्ले में किसी को भी हमारे घर से लेना देना नहीं होगा।
0: बिल्कुल,
1: हमारी जो घर की शांति है वो बनी रहती है। इसी तरह छोटी छोटी बातों को अगर हम गौर करें तो हम पूरे देश में शांति बना के रख सकते हैं। जैसा कि आपने देखा, आजकल का जो युवा वर्ग है वो काफी ज्यादा आक्रामकता उसमें आ गई है, सहनशीलता की बहुत कमी है, छोटी छोटी बातों के ऊपर गुस्सा हो जाते हैं, अपने परिवार में भी सही ढंग से नहीं रहते हैं, माता पिता को अक्सर डराते हैं, और इस तरह के कई मामले हमारे सामने आते हैं। जब आजकल का युवा जो है वो माता पिता को अपनी भौतिक लालसाओं के चलते उनको परेशान कर रहे हैं।
0: बिल्कुल सही कहा रूमा जी आपने, क्योंकि अक्सर हम छोटे छोटे से जो हमारे कदम मतलब होते हैं जिंदगी के लिए, देश के लिए, उससे हमें काफी हद तक जो है हेल्प होती है, हमें भी और बाकी लोगों को।
1: बिल्कुल,
0: क्योंकि बोलते हैं ना कि एक के साथ एक जब हाथ मिलाकर आगे बढ़ते हैं तो एक चेन बन जाती है, तो वही चेन हमें बनानी है, लेकिन हम आपस में ही उलझे रहते हैं।
1: बिल्कुल, और हमें आपस में उलझना नहीं है, और मुझे लगता है अपने दोस्तों को भी नहीं उलझाना है, ऐसे ना वो परेशान हो जाएं और कहीं और का रुख कर लें, तो क्यों ना पहले थोड़ा सा मनोरंजन की ओर ध्यान दिया जाए।
0: बिल्कुल, क्योंकि गीत संगीत हमारे लिए एक थोड़ा सा ब्रेक भी हो जाएगा और उससे हमारे दोस्तों के लिए एंटरटेनमेंट हो जाएगा।
1: बिल्कुल, और गीत संगीत हमेशा से ही बहुत ही हमारा मनोबल बढ़ाने वाला रहा, एक तरह से टॉनिक का काम करता है, तो क्यों ना अब जब थोड़ी सी सुस्ती छा रही है तो ये टॉनिक लेके हम थोड़ा सा अपने जोश को और बढ़ा लें।
0: जी बिल्कुल, तो आइए दोस्तों सुनते हैं कार्यक्रम का ये खूबसूरत सा गीत। तो रूमा जी क्यों ना आज आपकी पसंद का कोई गीत सुन लिया जाए।
1: तो बात कर रहे हैं रुचिका हम अपनी सुरक्षा की, देश की सुरक्षा की, तो एक नया दौर फिल्म का गाना है साथी हाथ बढ़ाना।
0: जी
1: तो आइए सुन लेते हैं वही गीत।
0: बिल्कुल, तो रूमा जी की फरमाइश में आप सभी दोस्तों के लिए ये प्यारा सा गीत।

0: रुचिका जी, आपने बहुत ही प्यारा सा गीत सुना दिया है और मन अब सच में जोश से भर गया है। हम भी उम्मीद कर रहे हैं हमारे दोस्त भी एक दूसरे के साथ हाथ से हाथ मिलाकर अपने देश की तरक्की में, इसकी सुरक्षा में सहयोग करें। और चलिए अब हम भी सहयोग करते हैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में।
1: बिल्कुल, हमें भी कार्यक्रम में आगे बढ़ना है। और कहते हैं ना रूमा जी कि जब औरों पे हम जो है कमियों की तरफ ध्यान देते हैं और खास करके हम उस समय अपने आप के बारे में भूल जाते हैं, तो वही बात है कि हम औरों की कमियों के बजाय
0: अगर हम
1: उनकी जो खुद पे भी और उनकी जो अच्छाइयां हैं, जिनसे कि हमारी भी हेल्प हो सके, समाज की हेल्प हो सके और जैसे कि हम बात कर रहे हैं देश की सुरक्षा की, तो एक से एक मिलकर जब हम आगे बढ़ेंगे
0: बिल्कुल,
1: तो जरूर वो सुरक्षा जो है एक तरह से हमारे लिए फायदेमंद रहेगी।
0: बिल्कुल, और देखिए बड़ी ही खुशी की बात हमें महसूस होती है जब हमने सुना कि आज अर्थव्यवस्था की दृष्टि से, सुरक्षा की दृष्टि से जो हमारा देश है विश्व में अपनी तरक्की की और आगे बढ़ रहा है और उसने अभी जापान को भी पीछे छोड़ दिया है जो बहुत ही एक उन्नत राष्ट्र था, तो बहुत अच्छा महसूस होता है जब हम उन्नति करते हैं और ये उन्नति हम सबके छोटे छोटे सहयोग से ही संभव है।
1: जी बिल्कुल, तो अब बात करते हैं रूमा जी कि ऐसे कौन कौन से हमारे वो छोटे छोटे से कदम हैं जिनको आगे बढ़ाकर हम अपने देश की सुरक्षा में अपना योगदान दे सकते हैं।
0: बिल्कुल रुचिका, ये बात तो बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि हम सब लोगों के मन में जब देश की सुरक्षा की बात आती है तो हमारे सामने आर्मी या फिर एयरफोर्स या बाकी की जो भी हमारी सुरक्षा इकाइयां हैं वो ध्यान में आती हैं। लेकिन हम अपने छोटे छोटे सहयोग से भी अपने देश को सुरक्षित रख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, आपने देखा होगा कि आजकल आगजनी की घटनाएं होती हैं, कहीं ना कहीं हम जात पात की, संप्रदाय की बात करते हैं, धर्म की बात करते हैं और ये सारी जो आंतरिक कला है इसका जो नुकसान है वो हमारे देश को कहीं ना कहीं भुगतना पड़ता है और बाहरी जो हमारे शत्रु हैं वो इन छोटी छोटी चीजों का, आपसी द्वेष का जो लाभ उठाते हैं और हमारी सुरक्षा में भेद कर देते हैं वो, तो हमें इन छोटी छोटी चीजों को एक तरफ रख कर जाति पाति से ऊपर उठकर साथ ही साथ धर्म को एक तरफ रख के, एक मानवता के धर्म को अपनाते हुए अपने देश के सुरक्षा में हमें सहयोग देना चाहिए।
1: बिल्कुल सही कहा रूमा जी आपने, क्योंकि हम जो है अपनी जब रिस्पॉन्सिबिलिटीज को नहीं समझते, जैसे कि आपने अभी बात की कि हमें थोड़ा सा धर्म को साइड में रखकर, जाति पाति के भेदभाव को साइड में रखकर जो है अगर हम देश के बारे में सोचेंगे, समाज के बारे में सोचेंगे तो कुछ हद तक जो है हम अपना योगदान दे सकेंगे। लेकिन हम उसी छोटी सोच के चलते जो है घूम फिर कर उन्हीं बातों पे आ जाते हैं, उस भेदभाव का नजरिया जो है उसे हम छोड़ नहीं पाते हैं कहीं ना कहीं।
0: और ये ही नजरिया जो हम जिन चीजों को छोड़ नहीं पाते हैं यही हमारी सुरक्षा में भेद कर जाती हैं, यही चीजें हमें मुसीबत में डाल देती हैं।
1: बिल्कुल,
0: तो देखो रुचिका, जब भी हम किसी गांव की तरक्की की बात करते हैं तो गांव में प्रधान के जिम्मे जब भी सारी चीजें आती हैं तो वो उस गांव को व्यवस्थित करने की कोशिश करता है। हम उम्मीद करते हैं कि प्रधान ही गांव के विकास में मदद करेगा, वही करेगा, लेकिन हम लोगों की भी एक जिम्मेदारी है हमारे गांव में छोटी छोटी चीजों को, जैसे हम आपने देखा होगा हम भी रोज घर में साफ सफाई करती हैं, आप भी करती हैं, कहीं ना कहीं हम जब देखते हैं पड़ोसी कहीं चला गया तो हम अपने घर का कूड़ा उसके पड़ोसी के आगे फेंक देंगे। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, अपने घर का कचरा निकालेंगे, नालियों में भर देंगे और देखो उससे क्या होता है, ये अभी बारिशें शुरू हो जाएंगी थोड़े टाइम में या कभी भी अचानक से बारिश आ जाती है तो वो नालियां उस कचरे की वजह से लबालब हो जाती हैं, फिर हम परेशान होते हैं, किसको कोसते हैं, हम गांव के प्रधान को कोसते हैं या फिर हम प्रशासन को कोसते हैं कि इन्होंने सही व्यवस्था नहीं रखी है, नालियों का निकास सही नहीं है, लेकिन गलती तो हमारी है। वो जो थोड़ी देर के लिए हमें समस्या सामने आती है उसका रीजन हम खुद हैं।

0: अपने घर की तो सफाई कर ली, लेकिन अपने घर की गंदगी है जो कूड़ेदान में डालने की बजाय या जहाँ पर भी कूड़े के निस्तारण का प्रबंध किया गया है वहाँ फेंकने की बजाय हमने उसको अपने घर के बाहर या पड़ोसी के गेट के सामने, क्योंकि पड़ोसी रोज चिल करता है हमारे सामने, उससे बदला लेने के लिए अपने घर का कूड़ा उसके आगे फेंक दिया। तो ये जो चीजें हैं ये छोटी छोटी चीजें बहुत बड़ी हो जाती हैं। यही चीजें कल को जब भारी बरसात आएगी तो यही गंदा पानी हमारे घरों में घुसेगा और हम फिर भारी बरसात में छाता लेके उसको पानी को निकासी में लगे होते हैं। तो क्यों ना हम इस छोटे छोटे काम को शुरू से ही करें, कूड़े का प्रबंधन अच्छे से करें, अपने घर की गंदगी का प्रबंधन अच्छे से करेंगे तो शायद ये चीज हमारे सामने नहीं आएगी और उस समय हमें परेशान नहीं होना पड़ेगा।
1: बहुत ही सही बात कही है रोमा जी आपने, इस बात में मुझे हंसी भी आ रही है एक तरह से, और मैं बोलूं तो, क्योंकि हम लोग सच में ऐसा करते हैं।
0: मुझे पता है आपको हंसी क्यों आ रही है, क्योंकि आप भी कई बार शायद ऐसी परिस्थिति से जुड़े होंगे कि लड़ाई करती है पड़ोसी ने कूड़े का पैकेट आपके घर
1: क्या कहते हैं कि अब पता है कि लोगों को तकलीफ होती है, मतलब कि पेड़ पौधे होते हैं बहुत ज्यादा होते हैं, सूखा घास होता है वो यहाँ वहाँ हवा से चला होता है, तो लोगों को बोले कि नहीं इनको काट लीजिए, पर नहीं, वो पूरा सुबह से लेके शाम तक वो लगे हैं झाड़ू लगाने। और जैसे कि आपने कहा ना कि हम क्या करते हैं, अपने घर से कूड़ा निकालते हैं और दूसरों के घर में फेंक देते हैं, तो ये बात असल में ऐसे करते हैं कि हम क्या सोचते हैं, हमारे घर की सफाई हो गई है, हमारी नालियां साफ है। बरसात के मौसम की अगर हम बात करें, क्योंकि हर घर में जो है बरसात से पहले लोग सफाई करते हैं ताकि पानी जमा ना हो, सीलन ना आए, क्योंकि बरसात में सीलन की जो है वो दिक्कत रहती है, तो वो क्या करेंगे अपनी सफाई कर लेंगे और आगे का रहने देंगे कि नहीं इनका है, ये देखें जैसे भी है हमारी अपनी सफाई हो गई है।
0: बिल्कुल, अपने घर की सफाई हम कर लेते हैं जब हम कूड़ा वही कचरा नालियों में या कहीं फेंक देते हैं, तो अब बरसात के मौसम में सबसे बड़ी समस्या हो जाएगी मच्छर की।
1: बिल्कुल,
0: कई जगह डेंगू चिकनगुनिया कई तरह की बीमारियां जो है बरसात में फैल जाती है, बदहजमी हो जाती है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो पीने का पानी है वो भी उन्हीं नालियों के माध्यम से पाइप आती है और वहां पे वो कहीं अटक जाता है तो हमारा पीने का पानी भी दूषित हो जाता है, जिससे मलेरिया हैजा जैसी कई तरह की बीमारियां हो जाती हैं। तो हम यहाँ आके अपनी जो स्वास्थ्य की सुरक्षा है उसको बाधित कर रहे हैं, तो क्यों ना हम इन छोटे छोटे कदमों को सही तरीके से उठाएं कि हमारा पड़ोसी को परेशान करने की वजह से हम उसको परेशान कर रहे हैं, लेकिन बदला क्या हो रहा है, हम खुद परेशान हो जा रहे हैं।
1: बिल्कुल,
0: तो इन चीजों का हमें ध्यान रखेंगे तो हम भी अपने राष्ट्र की सुरक्षा में एक महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं।
1: कहते हैं ना कि गड्ढा तो हम दूसरों के लिए खोदते हैं, पर अनजाने में हम खुद ही उस गड्ढे में गिर जाते हैं।
0: बिल्कुल, और अगर आपने अपने अभी गड्ढा खोदने की बात करी है तो मेरा अपने दोस्तों से ये भी अनुरोध है कि अपने घर में छोटी सी जगह अगर आपके पास उपलब्ध है तो वहाँ पे ही आप एक गड्ढा खोदें और उसमें ही कूड़े का निस्तारण करें। कई जो किसान हैं वो इस तरह से कूड़े का निस्तारण करते हैं और घर का जो कचरा है, किचन का कचरा या कई जैसे आपने कहा पेड़ पौधों के पत्ते गिरते हैं, तो उससे बहुत अच्छी खाद तैयार होती है।
1: बिल्कुल,
0: और ये हमारे खेतों की खुशहाली के लिए काम आती है, तो क्यों ना इस तरह के छोटे छोटे एफर्ट्स हम सब मिलकर करें।
1: बिल्कुल, और ऐसे तो हम क्या करते हैं ना कि सभी को अब तो फैसिलिटीज घर बैठे मिल रही है। कूड़े कचरे की हम बात करें तो घर घर पे कूड़ा कचरा उठाने की जो है एक तरह से सुविधा लोगों को दी जा रही है, लेकिन लोगों को वहाँ भी दिक्कत है कि वहाँ पे पैसे लिए जा रहे हैं।
0: बिल्कुल,
1: मतलब सुविधा भी चाहिए है, लेकिन
0: वही उसी का हल है ना रुचिका, अगर आप पैसे नहीं देना चाहते हैं तो अपने ही घर में एक छोटा सा गड्ढा खोद लीजिए और उसमें आप जो भी कचरा है घर का उसको उसी में उसका प्रबंधन कीजिए।
1: और कुछ तौर पे हम क्या करते हैं कि घरों का जो सामान है, जो भी मतलब कि फटे पुराने कपड़े हैं या प्लास्टिक के लिफाफे हैं, जो भी हमारे मतलब यूज हो चुके होते हैं, तो हम क्या करते हैं उठाते हैं और कहीं पे जैसे कोई डस्टबिन बने हुए हैं तो वहाँ पे फेंक देते, वो भर भी गए होते तो हम आसपास पे वो फेंक रहे होते हैं।
0: बिल्कुल, और जब बरसात में जब नदी नाले उफान पे होते हैं वो तो हमने देखा है कि कई जगह वो पुराने कपड़े प्लास्टिक के लिफाफे
1: जाते हैं
0: जो पानी के बहाव को रोकते हैं। और आप देखिए कि यही आजकल के समय में इतना हमारा पर्यावरण को नुकसान हो रहा है, कहीं कहीं पे पहाड़ियां गिर रही हैं, लैंडस्लाइड हो रहे हैं, और इसका रीजन भी काफी हद तक ये है, एक तरफ हम लोग डेवलपमेंट ही चाहते हैं लेकिन हम विकास तो कर रहे हैं, साथ ही साथ हम जो हमारे अंतर मन में जो चीजें चल रही होती हैं उनको हम नहीं छोड़ रहे हैं, हम अपने मन में जो छोटे छोटे द्वेष लेके बैठे हैं उनको हम छोड़ते नहीं है, और जब इन चीजों को नहीं छोड़ेंगे तो फिर बरसात का पानी जो है वो उफान पे आएगा और हमारे घरों में ही आएगा। तो दोस्तों आप लोगों से ये अनुरोध है कि अपने घर के कूड़े का प्रबंधन सही से करें और अपने बच्चों को भी ये बातें सिखाएं, क्योंकि बाल मन जो होता है उस पे जो प्रभाव होता है वो लंबी उम्र तक रहता है। जब हम छोटे बच्चों को ही उनको सही जगह से टॉफी का या छिलका, किसी फल फ्रूट का छिलका सही जगह फेंकने की हम सीख देते हैं, तो बच्चे इस चीज को लंबे समय तक ग्रहण करते हैं और औरों को भी ये चीजें सिखाते हैं। और मैंने अक्सर कई बच्चों को ऐसे देखा है कि मैं कभी बस में ट्रैवल कर रही थी तो एक माँ ने अपने बच्चे को कुरकुरे का पैकेट दिया, उस बच्चे ने खाया तो माँ उसको बाहर फेंकने लगी थी, लेकिन उस बच्चे ने स्कूल के उसके टीचर ने उसको बताया था कि ऐसे सड़क पे नहीं फेंकना है, तो उस बच्चे ने, छोटा सा बच्चा था 3 या 4 साल का, तो उसने अपनी माँ का हाथ रोका, मम्मा ऐसे नहीं फेंकना है, इससे सड़क में गंदगी हो जाएगी। तो देखिए एक छोटा बच्चा हमें सिखा सकता है, तो ये सीख हमें ले लेनी चाहिए और हम सबको अब मुझे लगता है कि एक और ब्रेक भी लेनी चाहिए।
1: बिल्कुल, और जैसे कि आपने अभी बच्चे की बात की ना कि छोटे से बच्चे से हमें सीख ले लेनी चाहिए, तो आपने शुरुआत में बात की थी कि कहीं ना कहीं हमारी ईगो हर्ट हो जाती है, तो यहाँ पर भी हमारी ईगो हर्ट हो जाती है क्योंकि एक छोटे से बच्चे से हम कैसे सीख सकते हैं, हमने तो जिंदगी गुजार दी।
0: बिल्कुल, लेकिन देखिए शिक्षक कोई भी हो सकता है, किसी भी उम्र का जो व्यक्ति है वो हमें सही शिक्षा दे सकता है, और जहाँ से हमें सही शिक्षा सही ज्ञान मिले वो हमें ग्रहण कर लेना चाहिए।
1: बिल्कुल, और फिलहाल हमें एक प्यारा सा म्यूजिकल ब्रेक ले लेना चाहिए।
0: बिल्कुल,
1: तो आइए दोस्तों एंजॉय करते हैं कार्यक्रम में ये खूबसूरत सा गीत।

0: 291.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं
1: मेरे हौसलों की उड़ान
0: अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका और
1: रूमा के साथ
0: जी। तो आइए मिलकर इस सफर को बढ़ाते हैं आगे और अपनी बातचीत को भी थोड़ा सा आगे की ओर लेकर चलते हैं और आप सभी को जानकारी की ओर, क्योंकि आज बहुत ही खास बातचीत हम कर रहे हैं कि हमारा ऐसा कौन कौन से छोटे छोटे से कदम है जिससे कि हम अपने देश की सुरक्षा के लिए अपना योगदान दे सके। योगदान की बात आती है तो सिर्फ ये बातों में ही रह जाती है बातें, लेकिन जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो हमारा दायित्व है उसको निभाने की बात करें तो हम पीछे हट जाते हैं, अक्सर हम नजरअंदाज करते हैं।
1: ऐसे लगता है मुझे, मेरा ये मानना है रुचिका कि हम छोटा छोटा सहयोग करके एक दूसरे का, सभी को हम सहायता कर सकते हैं, उनकी सुरक्षा को पुख्ता कर सकते हैं। और आजकल के जो, अगर मैं यंग जनरेशन की बात करूं तो हमारा जो आजकल का यूथ है उसमें बहुत ज्यादा जोश भरा हुआ है, कुछ भी अपने राष्ट्र के लिए कर गुजरने के लिए तैयार है। तो सबसे पहले तो मेरे अपने यूथ से, युवा भाइयों से, दोस्तों से ये अनुरोध है कि गाड़ी थोड़ी लिमिट में चलाएं, जगह जगह स्पीड लिमिट होती है और जब हम सड़क पे चलते हैं तो हम भूल जाते हैं कि सड़क पे कोई और भी चल रहा है, वहाँ पे पैदल चलने वाले भी हैं, वहाँ पे और गाड़ियाँ भी हैं। गलत जगह से ओवरटेक ना करें, जब भी गाड़ी चलाएं हेलमेट पहन के चलाएं, अगर चौपहिया वाहन चला रहे हैं तो सीट बेल्ट पहन के चलाएं, और नशे की हालत में तो गाड़ी बिल्कुल भी ना चलाएं, क्योंकि नशे की आदत मौत की दावत, ये तो हमने सब जगह स्लोगन सुने हैं। तो इस तरह की अगर आप दावत नहीं देंगे तो मुझे लगता है कि जो पुलिस वालों की एक जो काम होता है, और जब भी आपने देखा कि कहीं रोड एक्सीडेंट किसी भी वजह से हो जाता है तो हमारा स्वास्थ्य विभाग और पुलिस विभाग जो है वो बहुत ही ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है, और हमने हमारी आंखों के सामने कई युवकों को नशे की हालत में गाड़ी चलाते हुए देखा है, और अपनी जान को तो उन्होंने जोखिम में डाला ही है, साथ ही साथ राहगीरों की जान को भी जोखिम में डालते हैं। तो यूथ अगर इस चीज की ओर ध्यान दें, नशे की आदतों से अगर आप अपने आप को दूर रखेंगे तो ये भी बहुत बड़ा सहयोग है आपका राष्ट्र के निर्माण में।
0: बिल्कुल, और आपने बात कही है उसी से मैं बात एक कहना चाहूंगी कि आपने जैसे कहा ना कि सड़क सुरक्षा की हम बात कर रहे थे, जैसे कि गाड़ियां चलाते हैं तो बिना लिमिट के, बिना कुछ देखे सुने हम खुद को तो जोखिम पहुंचाते ही हैं, साथ में हम परिवार को भी परेशानी में डालते हैं और लोगों को जो कि सड़क में बेचारे आराम से जा रहे होते हैं उनको भी हम परेशानी में डालते हैं।
1: बिल्कुल, और रुचिका एक चीज और भी है इसमें, जैसे आजकल के यंग्स ने अपनी गाड़ियों में एक अलग तरह का साउंड सिस्टम लगाया होता है, जब वो चलते हैं तो बाइक्स पे बहुत ज्यादा पटाखे जैसी आवाज आती है, काफी शोर करता है, तो इससे ध्वनि प्रदूषण होता है, और हमारे जो कई सड़क के किनारे जिनके घर हैं, कई बुजुर्ग लोग रहते हैं, कोई बीमार है, उनके स्वास्थ्य पे भी असर पड़ता है। और आपने वैसे भी सुना है कि एक लिमिट तक ही अगर हम आवाज सुने तो हमारी श्रवण शक्ति जो है वो सही रहती है, लेकिन उससे ऊपर अगर हम कुछ भी सुनेंगे तो हमारे सुनने की क्षमता पे भी फर्क पड़ता है। तो इसलिए ये हमारा ही नहीं, उन नौजवानों के लिए भी नुकसानदायक है जब हम तेज आवाज के साथ, लाउड म्यूजिक के साथ, या कहीं भी एकदम से बहुत तेजी से कहीं से गुजरते हैं, तो अपने आप को भी हम जोखिम में डालते हैं, और साथ ही साथ हम पर्यावरण प्रदूषण भी कर रहे हैं, क्योंकि आजकल के समय में ये जो ध्वनि प्रदूषण है ये अपने आप में बहुत ही बड़ी चुनौती हो गया है हमारे लिए, क्योंकि जब तक ध्वनि प्रदूषण को हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तो बहुत सारे लोगों को आज सुनने की समस्या का कारण एक ये भी है।
0: बिल्कुल, और हम जब भी, मैंने पहले ही कहा था कि हम दूसरों की कमियां गिनाने में बहुत आगे होते हैं, तो अब सड़क सुरक्षा की हम बात करें तो जब भी एक्सीडेंट की बात सुनते हैं, कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो हम कह देते हैं कि ये प्रशासन की तरफ से रोड ठीक नहीं है, या यहाँ पे ये कमी रह गई है, वहाँ पे ये कमी रह गई। लेकिन मजाल है कभी किसी को ये बोलते हुए सुना हो कि हाँ मेरी गलती थी, मैंने नशा करके अगर मैं ड्राइव कर रहा था उस वजह से मेरे को, या मैं ईयरफोन्स कान में लगाए हुए थे, मैं गाने सुन रहा था उस वजह से ऐसा हो गया, या फिर मैंने हेलमेट नहीं पहना था, या मेरा ध्यान नहीं था, मैंने जो इंस्ट्रक्शंस रोड पे लगी थी वो मैंने नहीं फॉलो की, ये कभी किसी ने नहीं बोला होगा।
1: बिल्कुल, लेकिन रुचिका जो बातें ऐसी करते हैं युवा हमारे जी, उनके लिए तो एक सबसे बड़ी बात ये है कि जब भी हमारा वाहन का लाइसेंस बनता है या जब भी हम किसी वाहन का प्रशिक्षण लेते हैं तो उसी दौरान जो वाहन प्रशिक्षण प्रदाता होते हैं, वो उनको रोड सेफ्टी के रूल बताते हैं। और आपको भी पता है कि जब भी लाइसेंस लिया जाता है तो सबसे पहले उसका ड्राइविंग टेस्ट होता है। ड्राइविंग टेस्ट से पहले भी एक टेस्ट होता है जिसमें युवाओं से या हमसे, जैसे मैं भी गई हूँ, तो ये पूछा जाता है कि आपको रोड के नियम पता है, रोड सेफ्टी के रूल्स पता है या नहीं है। तो ये सारी चीजें युवाओं को पहले से पता होती है, लेकिन वो जानबूझकर
0: भी। रुमा जी, और अक्सर आपने देखा होगा कि बहुत से युवा 18 साल से पहले ही व्हीकल्स जो है पेरेंट्स उनके हाथों में थमा देते हैं,
1: और ये तो हमारी पेरेंट्स की ही गलती है।
0: तो कहीं ना कहीं उसका भी खामियाजा हमें भुगतना पड़ता है।
1: बिल्कुल, क्योंकि ये जो युवा अवस्था होती है, यहाँ पे एक जोश भरा होता है हमारे अंदर। हम सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी पा लेना चाहते हैं, कर लेना चाहते हैं। हमें लगता है कि जो हम कर सकते हैं वो कोई और नहीं कर सकता। इसी सोच की वजह से युवक जो है वो ना तो सड़क पे आके स्पीड को कंट्रोल करते हैं, ना ही वो ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करते हैं। यहाँ पे जिम्मेदारी हम पेरेंट्स की है कि हम अपने बच्चों को ये सारी चीजें बताएं, उनको इसके नफा नुकसान जो भी है वो हम समझाएं, ताकि आने वाले समय में किसी भी युवक की, और आपने देखा होगा आए दिन इस तरह की दुर्घटनाएं हो रही हैं जहाँ पे 18 साल के 19 साल के युवा जो हैं वो सड़क दुर्घटनाओं का शिकार होकर असमय मृत्यु को गले से लगा ले रहे हैं। तो ये चीज जो है वो हम बड़ों को ही समझनी पड़ेगी। और गाँव के जो मुखिया है, हमने एक बार शायद पहले भी किसी कार्यक्रम में अपने दोस्तों से बात की थी कि अगर आपके आस पड़ोस में कोई बच्चा इस तरह से गाड़ी चला रहा है तो प्लीज उसको समझाएं। वो नहीं समझता है तो उसके पेरेंट्स को समझाएं। अगर पेरेंट्स भी उसकी बात नहीं समझते हैं तो आप पुलिस की सहायता ले सकते हैं, क्योंकि आजकल ओवर स्पीड पे भी चलान होता है विदाउट लाइसेंस। और देखिए, आपने देखा होगा कि आजकल हम लोग क्या करते हैं, कहीं पुलिस वाला चलान काटने के खड़ा है तो हम रुक जाते हैं, क्योंकि हमने हेलमेट नहीं पहना है तो हमारे बाल खराब हो जाते हैं। अगर हमारे पास लाइसेंस नहीं है तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारे पेरेंट्स के पास तो काफी पैसा है, वो कुछ भी कर लेंगे और हम बच जाएंगे। लेकिन

0: करके बात करके सुलझानी होंगी, इनके समाधान भी हम लोगों को ढूंढने होंगे। और एक चीज और रुचिका मैं बोलूंगी, मैंने पहले भी कहा कि रिपोर्टिंग होना जरूरी है। बहुत सारे ऐसे केस हमारे जो परिवारों में हमारी संस्कृति का हवाला देके या परिवार की इज्जत का हवाला देकर उनको दबा दिया जाता है, तो बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जहां लड़कियां परिवार में ही रहकर यौन अपराधों का शिकार हो रही हैं और अपराध इसलिए वो रिपोर्ट नहीं हो पाता है क्योंकि उनके परिवार की साख जो है वो लोगों के सामने आएगी तो परिवार की इज्जत जो है वो चली जाएगी। लेकिन हम ये नहीं सोचते हैं कि जिसके साथ भी नाइंसाफी हो रही है उसके जीवन पर क्या असर हो रहा है और आने वाले समय में वो बच्ची या जो भी लड़का जिसके साथ भी ये गलत हो रहा है वो उसके मन में अपने आप ही हिंसा के गुण उत्पन्न होंगे, वो दूसरों के साथ कभी भी अच्छा व्यवहार नहीं कर पाएगा। तो इन सब चीजों को हमें खुद ही ध्यान रखना होगा और इन चीजों से बचने के लिए हमें हर संभव कोशिश करनी चाहिए और अपने बच्चों को सही और गलत की जानकारी हमें जरूर देनी चाहिए और छोटी उम्र से ही हमें सोचना होगा कि ये चीज हमारे बच्चों के साथ इस तरह का कोई दुर्घटना ना हो जाए।
1: बिल्कुल, और इन सब चीजों के लिए जैसे कि आपने कहा कि अपराध जब हमारे सामने हो रहा होता है तो हम आंखें बंद कर लेते हैं क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि कौन इन पचड़ों में पड़े, क्योंकि अगर हम फंस गए तो फिर हमें भी इनके साथ जो है कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ेंगे, तो उन सब बातों से हम डर जाते हैं। तो इस सब के लिए जरूरी है हमारे अंदर मानवता होना।
0: बिल्कुल,
1: जो मानवता अगर हमारे अंदर नहीं है तभी तो ये जैसे आपने अभी कहा कि बच्चियां घर पे ही सेफ नहीं है क्योंकि इंसानियत हमें नहीं बची है। आज का इंसान जो है एक तरह से हैवान बन चुका है, उसी के चलते ये असुरक्षा जो है हमें घर पर ही देखने को मिल रही है। तो दोस्तों से यही रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि अपने अंदर की इंसानियत को जगाइए और उसे बाहर निकाल कर लेकर आइए क्योंकि राष्ट्र की रक्षा के लिए आपको वही काम आएगी।
0: बिल्कुल, जरूर ही नहीं है कि हम सभी बंदूक उठाकर ही अपनी सरहदों की रक्षा करें, हम अपने घर में रहकर अपने रीति रिवाज संस्कृति और अपने सुदृढ़ विचारों के साथ अपने परिवार को अपने बच्चों को सुरक्षित रख सकते हैं। इन चीजों से अगर हम अपने आप को महफूज रखेंगे तो हम अपने आप ही अपने देश की सुरक्षा में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं।
1: जी बिल्कुल, तो अब समय हो गया है अपने दोस्तों से विदा लेने का। तो दोस्तों बहुत ही खास बातचीत कि अपने देश की सुरक्षा में अपना योगदान कैसे दें, तो हमने आप सभी से बहुत ही एक कहते हैं कि गंभीरता वाली बातचीत की है कि कैसे कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं, कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए, क्योंकि जब हम आपस में लड़ते रहेंगे तो वो अकेलापन सा, हर कोई अकेलेपन में रहना आजकल पसंद कर रहा है, तो उससे तो हम एकजुट होने से रहे, आपस में ही हम लड़ते रहेंगे तो देश के लिए कब लड़ेंगे। तो इसलिए हमें आपस लड़ना बंद करना होगा, आपस में एकजुटता को बनाना है, उस प्यार को बनाना है और वो तब बनेगी जब आप अपनी जो है एक तरह से वो ईमानदारी, वो सहनशीलता, वो अपनापन अपने अंदर से जगाएंगे, अपनी इंसानियत को अंदर से जगाएंगे। तो वो उम्मीद है हमारी आप सभी से कि आप जरूर इस बात पे ध्यान देंगे दोस्तों, क्योंकि ये छोटे छोटे से प्रयास हैं हमारे, छोटे छोटे से कदम हैं जो कि आगे की ओर बढ़ रहे हैं और आपको एक सही दिशा देने की ओर जो है हमारे एक तरह से अग्रसर हैं। तो इसी उम्मीद के साथ रूमा जी मुझे लगता है कि अब अपने दोस्तों से अलविदा हमें कह देना चाहिए।
0: बिल्कुल, अलविदा कहेंगे भी और फिर से एक बार अपने दोस्तों से हम अनुरोध करेंगे कि अपने छोटे छोटे प्रयास कीजिए जो हमारे अपनी सुरक्षा के साथ साथ अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। नशे से दूर रखिए बच्चों को, अगर कोई अपराध होता है तो उसकी रिपोर्टिंग कीजिए, साथ ही साथ अपने बच्चों को अगर वाहन चलाने को देना है तो उसके लिए भी पहले सुनिश्चित करें कि आपके बच्चे इसके लिए सक्षम हो गए हैं या नहीं, और साथ ही साथ सरकारी तंत्र में जो भी हमें संपत्तियां मिली हैं वो सब संपत्तियां हमारी हैं, हमारे ही द्वारा अदा किए गए कर से उनका निर्माण हुआ है, तो उनकी तोड़फोड़ इन चीजों से दूर रहें।
1: जी, तो जाते जाते हम अपना नंबर बता देते हैं अपने दोस्तों को, जिससे कि अगर उनके मन में कोई सवाल या फिर कोई सुझाव अगर वो देना चाहते हैं तो वो हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं।
0: जी हाँ दोस्तों, हमारा नंबर है 9418431223। आप कभी भी कोई भी विचार आप हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो इस नंबर पर बेझिझक आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप SMS कीजिए, WhatsApp कीजिए या फिर आप हमें डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं।
1: जी दोस्तों, तो आप दीजिए अनुमति अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका और
0: रूमा को
1: कार्यक्रम संपन्न करने की। फिर होगी आप सभी के साथ मुलाकात एक नई बातचीत नई जानकारी के साथ। तब तक आप सभी इसी तरह से एंजॉय करते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला, गूंज अपनेपन की।

संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी JAAC द्वारा आयोजित मार्च के दौरान 20 लोगों के मारे जाने और कई अन्य के घायल होने की खबर है। खबरों के अनुसार कई घायलों की हालत गंभीर है और मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है। JAAC ने संयुक्त राष्ट्र, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों और लोकतांत्रिक सरकारों से हस्तक्षेप करने की अपील की है और आरोप लगाया है कि पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाई और अत्यधिक बल का प्रयोग किया। भारत की पैरा खिलाड़ी शर्मिला धनखड़ ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में महिलाओं के शॉटपुट F57 स्पर्धा में 9.81 मीटर के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के साथ स्वर्ण पदक जीता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने स्वर्ण पदक जीतने पर शर्मिला धनखड़ को बधाई दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर

आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
1: हर घर सूर्य घर।
2: मुझे लगता है इस दुनिया में सबसे बड़ा दान ना पैसे का है, ना कपड़े का है, ना किसी चीज सामान का है। दुनिया में सबसे बड़ा दान है किसी दुखी को आप अपनी एक बात देकर के उसको खुश कर दो। आप उसके चेहरे पर प्रसन्नता लाओ और आप ऐसा कुछ कर दो जो उसके जीवन के दुख खत्म हो जाए और वो आपको देख करके कुछ समय के लिए भूल जाए कि वो कितना दुखी।

0: साइबर फाइनेंशियल फ्रॉड में फंस जाना तो कॉल 1930 पर लगाना। ऑनलाइन होने वाले धोखाधड़ी और साइबर फ्रॉड से पीड़ित होने पर गृह मंत्रालय भारत सरकार की अधिकृत वेबसाइट www.cybercrime.gov.in पर अपनी शिकायत दर्ज कराएं।
1: पवन आ गया।
2: पवन वहाँ क्यों
1: बैठा है? तुझे उसे टीबी है।
2: और भाई लास्ट बेंच का मजा अकेले अकेले।
3: पता है ना मुझे टीबी है।
2: चल चल तुझे पता है ना इलाज का असर शुरू होने के बाद टीबी के इन्फेक्शन का डर नहीं रहता। टिफिन में क्या है? टीबी के दवाई के साथ खाना भी अच्छे से लेना है, समझा?
4: अपनों का जोड़ है टीबी का तोड़, तो फिर भेदभाव क्यों? टीबी के इलाज में अपनों का साथ दें।
5: सुनो, तुम्हारे पास 5,000 रुपए पड़े हैं?
6: 5,000? मेरे पास 500 रुपए नहीं है, तुम 5,000 पूछ रहे हो?
5: Oh, no. देख लो कहीं थोड़े बहुत पड़े हो।
6: तुमने दिए कभी जो थोड़े बहुत कहीं पड़े होंगे?
5: किचन के किसी डब्बे वब्बे में छुपाए हो या किसी कपड़े के नीचे?
6: तुम्हें सच में लगता मैं तुमसे पैसे छुपाती हूँ? अरे नहीं है यार मेरे पास पैसे।
5: कसम खाओ।
6: कसम से मेरे पास 1 रुपया नहीं है।
5: तो फिर ये ड्रेसिंग टेबल के कपड़े के नीचे 5,000 किसने रखा? मेरा ही रहेगा लगता, रख के भूल जाऊंगा ना। अब तुमने तो कसम खाई है, तुम्हारे तो है नहीं। मेरे ही होंगे इस घर में और रहते ही कौन है।
7: भारी मिस्टेक हो गया सर।
6: नहीं मतलब तुम्हारे ही होंगे।
8: गजब टूबी बाजा।

नमस्ते दोस्तों, 91.2 मेगाहर्ट्ज रेडियो कुंजन धर्मशाला दे नाल तुसी जुड़े हुए हो ते मैं तुहाडी रेडियो दोस्त ज्योति पठानिया। हुण समां हो गया पंजाबी गीतां दा ते आओ सुनदे हां पंजाबी गीत।

श्रोतियो रेडियो गुंजन धर्मशाला तो तुसी एंजॉय कर रहे हो पंजाबी गीत। मैं तुहाडे नाल तुहाडी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। आओ सुनदे हां प्रोग्राम दा एक होर सोहणा जिहा पंजाबी गीत।

श्रोतियों रेडियो कुंजन धर्मशाला के नाल तुसी बने हुए हो ते सुन रहे हो प्रोग्राम पंजाबी गीत। मैं हां तुहाडी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया ते आओ अगला गीत तुहाडी पेश नजर।

सोहने सोहने पंजाबी गीत तुसी सुन रहे हो रेडियो गुंजन धर्मशाला तो ते मैं तुहाडी रेडियो दोस्त ज्योति पठानिया 91.2 MHz ते तुसी एदां ही बने रहो साडे नाल ते प्रोग्राम इंजॉय करदे रहो पंजाबी गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो कुंजन धर्मशाला तू सारे श्रोते इंजॉय कर रहे ने प्रोग्राम पंजाबी गीत अपनी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया दे नाल तहे खोर पंजाबी गीत सुन जिया तुहानू भेज रहे हां तुहाडे रेडियो सेट्स ते।

यह रेडियो कुंजन धर्मशाला 91.2 MHz इस वक्त तुसी एंजॉय कर रहे हो प्रोग्राम पंजाबी गीत। मैं हां तुहाडी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया ते आओ हुण सुनदे हां प्रोग्राम दा होर पंजाबी गीत।

मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर

आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
1: हर घर सूर्य घर।
2: मुझे लगता है इस दुनिया में सबसे बड़ा दान ना पैसे का है, ना कपड़े का है, ना किसी चीज सामान का है। दुनिया में सबसे बड़ा दान है किसी दुखी को आप अपनी एक बात दे करके उसको खुश कर दो। आप उसके चेहरे पर प्रसन्नता लाओ और आप ऐसा कुछ कर दो जो उसके जीवन के दुख खत्म हो जाए। वो आपको देख करके कुछ समय के लिए भूल जाए कि वो कितना दुखी है।

0: भी साइबर फाइनेंशियल फ्रॉड में फंस जाना तो कॉल 1930 पर लगाना। ऑनलाइन होने वाले धोखाधड़ी और साइबर फ्रॉड से पीड़ित होने पर गृह मंत्रालय भारत सरकार की अधिकृत वेबसाइट www.cybercrime.gov.in पर अपनी शिकायत दर्ज कराएं।
1: पवन आ गया।
2: पवन वहाँ क्यों
1: बैठा
2: है?
1: पता नहीं, उसे टीबी है।
2: और भाई लास्ट बेंच का मजा अकेले अकेले।
3: पता है ना मुझे टीबी है।
2: चल चल, तुझे पता है ना इलाज का असर शुरू होने के बाद टीबी के इन्फेक्शन का डर नहीं रहता। टिफिन में क्या है? टीबी के दवाई के साथ खाना भी अच्छे से लेना है, समझा?
4: अपनों का जोड़ है टीबी का तोड़, तो फिर भेदभाव क्यों? टीबी के इलाज में अपनों का साथ दें।
5: सुनो, तुम्हारे पास 5,000 रुपए पड़े हैं?
6: 5,000? मेरे पास 500 रुपए नहीं है, तुम 5,000 पूछ रहे हो?
5: Oh, no. देख लो, कहीं थोड़े बहुत पड़े हो।
6: तुमने दिए कभी जो थोड़े बहुत कहीं पड़े होंगे?
5: किचन के किसी डब्बे वब्बे में छुपाए हो या किसी कपड़े के नीचे?
6: तुम्हें सच में लगता है मैं तुमसे पैसे छुपाती हूँ? अरे नहीं है यार मेरे पास पैसे।
5: कसम खाओ।
6: कसम से मेरे पास 1 रुपया नहीं है।
5: तो फिर ये ड्रेसिंग टेबल के कपड़े के नीचे 5,000 किसने रखा? मेरा ही रहेगा लगता है, रख के भूल जाऊंगा ना। और तुमने तो कसम खाई है, तुम्हारे तो है नहीं। मेरे ही होंगे इस घर में। और रहते ही
7: भारी मिस्टेक हो गया सर।
6: नहीं मतलब तुम्हारे ही होंगे।

ਕਾਨਵੀ ਦਸ਼ਮਲਵ 2 ਮੈਗਾਹਰਟਸ ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਤੁਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਰੇਡੀਓ ਗੁੰਜਨ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਕਨੇ ਮੈਂ ਸ਼ਸ਼ੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਈ ਉਹ ਕਾਰਿਕ੍ਰਮ ਲਈ ਕਰੀ ਮਾਟੀ ਦੀ ਮਹਿਕ ਤਸ਼ੁਤ ਮਾਟੀ ਦੀ ਮਹਿਕ ਕਾਰਿਕ੍ਰਮ ਦੇ ਸਫ਼ਰ 'ਚ ਸ਼ਸ਼ੀ ਦਾ ਪਿਆਰ ਭਰਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਪਿਆਰ ਭਰਾ ਨਮਸਤੇ ਹੈ ਇਸੀ ਨਮਸਤੇ ਕਰਨੇ ਹਾਂ ਕਾਰਿਕ੍ਰਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ शुरुआत है से अपनी गलबात करने करी थी हो कने दोपहर दा जिड़ा समय है से तुहां तक रहिंदा है 2 ते 3 बजे तक तुहां सारे भी इस कार्यक्रम दे सफ़र जहां कने जुड़ी सकदे कने यहां कने गलबात छिड़े से जरूर करी सकदे। अजकना जिड़ा दिन है 28 जुलाई 2026 दी यहां गल करिए तां आहां वास्ते बेहतर खास है हर दिन खास होंदा कने जरूर तुहां इस दिन जो भी इंजॉय करा दे होने न कने अपने जेड़ा काम कार हैं सभी करा दे होने न ते शो तुहां काम कार करना भी यहाँ वास्ते जरूरी है कने अपनी सेहत दा जेड़ा ख्याल है सभी रखना यहाँ वास्ते जरूरी है कने यहाँ भी तुहां दा जेड़ा ख्याल है से समय समय अनुसार रखते रहते न कने तुहां सारे भी इस कार्यक्रम दे सफ़र जहाँ करने जुड़ी सकते कने यहाँ करने गलबात छिड़े से जरूर करी सकते। तो शो तुम गलबात करने वास्ते जिहड़ा हुंदा नंबर है पहले तो तुहां तक नंबर जिहड़े से पहुँचाई देना क्योंकि नंबर तुहां तक पुजेगा ताई तो तुहां इस नंबर पर कॉल करी सकते या टैक्सट मैसेज करी सकते या वट्सएप मैसेज करी सकते। तो शो तुम नंबर है 701-811-7091 ते नंबर तुहां तक पहुँचाई तो है कने तुहां सारी इस नंबर पर जिहड़ा मैं पहले भी दस्या बार बार जिहड़े से रिपीट नहीं करना है तुहां सारे ही जितने भी श्रोता हैं समझदार हैं तो इसी समझदारी कने रेडियो गुंजन धर्मशाला कने जुड़िया कने यहाँ जरूर अपने कार्यक्रम का जिहड़ा आगाज है से करदे न एक प्यारे दे गीत कने क्योंकि गीत संगीत जिहड़े सियाहां दी जिंदगी च बड़ी अहम भूमिका अदा करदा है। चलदे न सुनदे न इस गीत जो

तुहा सारे दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला तुह सारे ही सुनिया ये प्यारा दिया गीत प्यारी दी फरमाइश कन्या जहा जेड़ा कार्यक्रम च गलबात करनी है या अजकना जेड़ा दिन अजकने जेड़ा दिने दी खासियत है या अजकना जेड़ा दिन है सिकयो हां वास्ते खास है। अजकना जेड़ा दिन है से अहां 28 जुलाई 2026 की गल करिए अज हाँ जेड़ा खास दिन बना दिन से बना दिन विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस तो जरूर कार्यक्रम जी दे उपर ही चर्चा करनी है कने तो हाँ सारे भी अपने अपने जेड़ा विचार हैं से जरूर साझा करी सकते कने इस कार्यक्रम दे सफर कने जुड़ी सकते कने इसी कने मौसम की जानकारी अगर तुह तक पहुँचाइए तो मौसम जेड़ा से अपना जेड़ा बदलाव है से जरूर रखा दे कने मौसम के अनुसार तो हाँ भी अपने खान पान का जेड़ा ख्याल है से जरूर रखा दे उन्हें ना क्योंकि जिन्ने ही मौसम बदलता है तो हाँ अपना जेड़ा ख्याल है से रखना शुरू हो जाते हैं कने धर्मशाला दे तापमान की गल करिए जेड़ा तापमान जेड़ा से 20 डिग्री सेल्सियस है कने जरूर जेड़ा हल्की फुल्की बारिश है सभी जरूर लगी हुआ है कने तुहां सारे भी इस कार्यक्रम दे सफर शाह कने जुड़ी सकते कने हाँ कने गलबात जेड़ा से जरूर करी सकते तो शो तुम इसी गलबात कने हाँ अपने कार्यक्रम दे सफर जो अगे बढ़ाते न कने तुहां जो ले करी चलते न अगली फरमाइश की ओर तुह सारे इंजॉय करा इस प्यारी दी फरमाइशा जो कने नहीं सुनते रहे अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला गूंज अपने बंदी।

प्रश्रुतों, इसी कन्ने तो सारे सुनिया ये प्यारा दया गीत, प्यारी दी फरमाइश। ये फरमाइश अह तक पहुँची हुए व्हाट्सएप के माध्यम ने, तिना का ना वे चरणदास जी कने से रहने वाले न खनियारा ते, तिना तक अहाँ ये गीत फरमाइश पहुँचाई। कने तो सारे भी इस कार्यक्रम के सफर कने जुड़ी सकते। श्रोताओं, गलबात करिए 28 जुलाई की, कैलेंडर का से खास पन्ना बोली सकते या अज हाँ जिहड़ा खास दिवस बना देन से बना देन विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस। यदि ना जो याद दिलांदा है कि खुली हवा जिहड़ा नदियां बह दियां से कने इसी कने हरी भरी धरती आहंदी जागीर नहीं है, आहंदी जिहड़े से जिम्मेदारी है कि यहाँ किस प्रकार अपनी प्रकृति दी रक्षा कर देन या प्रकृति दा संरक्षण कर देन। प्रकृति जिहड़ा है हर इंसान दी जरूरत पूरा करने वास्ते लगातार अहां जो हर चीज़ दिंदी है, पर अहां किस प्रकार अपनी प्रकृति दी रक्षा कर देन से अहां पर निर्भर कर दे। प्रकृति अहां जो ताज़ी हवा पेड़ पौधे न से अहां जो हवा भी दे देन, नदियां जिहड़ा न से अहां जो साफ पानी या कल कल बहतियां जिहड़ा नदियां न नाले न कुल्ला न, अगर कुथी ना कुथी अहां तिना दी साफ सफाई रखते न तहां वास्ते ही बेहतर है। कने अगर अहां तिना जो नुकसान पहुँचाते न तहां खुद जो भी नुकसान जिहड़े से पहुँचाते न, तो ज़रूर अहां जो हमेशा अपनी मिट्टी कने जुड़ी करी रहना है। ये कार्यक्रम माटी दी मेह कार्यक्रम है। कने तुहां सारे ही इस कार्यक्रम ते यही समझते न कि ये कार्यक्रम अहां जो हमेशा ये सिखाते है कि अहां कितनी की अपनी जड़ा कने जुड़े न, अपनी मिट्टी कने जुड़े न, अपनी प्रकृति कने जुड़े न। हर दिन कई बार अहां बचपन दियां यादां भी सांझा करना लगी पौंदे, कई बार अहां पुरानियां यादां न तिना जो भी तुहां तक पहुँचाते न। प्रकृति अहां वास्ते कितनी ज़्यादा जरूरी है सभी तुहां तक पहुँचाते न। इसी कन्ने तुहां दियां जिहड़ा फरमाइशां न तिना दी भी याद अहां जो जरूर रहिंदी है, क्योंकि अहां दे जिहड़ा श्रोता न सिसमें इसमें पर कॉल भी करते न, टेक्स्ट मैसेज भी करते न, अपनियां फरमाइशां जिहड़ा न से रखते न। बाकी जिहड़ा श्रोता है न सभी जरूर कॉल भी करा देन, मैसेज भी करा देन। अहां दी भी कोशिश यही रहिंदी है कि तिना दियां जिहड़ा फरमाइशां न से जरूर तिना तक पहुँचानियां न। चलते न अगली फरमाइश तुहां तक पहुँचांदे न।

0: दर्शकों तो सारे ही सुनिया ये प्यारा तेरा भजन नरोल माई ये मैं रोल गई हाँ तेरा दरबार भूल गई हाँ। तो ज़रूर श्रद्धा भाव रखना भी यहाँ वास्ते ज़रूरी है। इस गीत की फरमाइश यहाँ तक पहुँची हुए व्हाट्सएप के माध्यम ने तिना दा नाव है राधा जी। तो ज़रूर राधा कश्यप जी तक अहाँ ये गीत पहुँचाया कन्या अगले जरा श्रोता न तिना कन्या भी कर देना गल बात। हेलो
1: हेलो,
0: हेलो नमस्ते जी।
1: नमस्ते।
0: जी स्वागत है जी तुहांदा रेडियो गुंजन धर्मशाला च। ठीक ठाक है ना
1: हाँ
0: जी। तुहां कुत्थों ते बोला दी कने तुहांदा नाँ की है जी।
1: जी, मैं गूगल से बोली कि मेरा नाम नेहा
0: जी कुत्थों ते बोला दी
1: गूगल।
0: जी। अच्छा गगड़े ते बोला दे नेहा
1: जी
0: जी। ता नेहा जी क्या हाल चाल है गगड़े आलियां दे? क्या काम कार छेड़िया तो? हाँ
1: बस तो कुछ नहीं
0: जी कोई काम कार नहीं छेड़िया जी। तो हाँ
1: ना
0: कर दे क्या पढ़ाई कर दे कि क्या कर दे?
1: मैं कुछ
0: जी अच्छा कुछ नहीं करते
1: नहीं करती।
0: जी। ता नेहा जी आज तो हाँ कुंडिया गीत जेड़ा इसे सुनना पसंद करके
1: मैं जड़ी तेरी बहुत तेरे खाना
0: जी। कुंडिया
1: जड़ी तेरी बहुत सारी काना
0: तुम्हारी आवाज क्लियर नहीं होती जी।
1: जड़ी तेरी बहुत सारी काना
0: जी अच्छा जड़ी तेरी बोचरी काना जी।
1: जी।
0: जरूर ये गीत फरमाइश तुह तक पहुँचा दें जी। जुड़ने वास्ते बड़ा बड़ा धन्यवाद जी तुहंदा जी। अगले जरा श्रोता न तिना कन्ने भी कर देना गल बात। हेलो हेलो
2: हेलो
0: हेलो नमस्ते जी।
2: नमस्कार महाराज जी।
0: जी स्वागत है जी तुहंदा बड़ा बड़ा रेडियो गुंजन धर्मशाला च। ठीक ठाक है ना
2: जी महाराज जी बिल्कुल ठीक ठाक जी।
0: जी? तो क्या काम कार छेड़े तो? हाँ क्या करा दे
2: कम कार कोई नहीं छे महाराज बैठे हो घर हैं।
0: जी? तो हाँ क्या प्रकृति संरक्षण दे ऊपर श्रोता वास्ते संदेश देना चाहेंगे आज जिड़ा हाँ खास दिन बना देना जी?
2: हाँ जी बोलते
0: जी
2: नहीं प्रगति कन्नै छेड़ना नहीं चाहिए जी
0: जी
2: है
0: जी
2: इसने बड़े नुकसान होंगे।
0: जी जी
2: दिखा हूँ जो खड्डा के किनारे ने जेड़े
0: जी
2: मतलब जगह हैं खाली पियाँ उस वास्ते अगर रुख बूटे लगाए
0: जी
2: जान
0: जी
2: तो मतलब सज दिन खड्डा बड़ी चौड़िया नहीं बननिया है अपना रास्ता लेनिया।
0: अपना ही रास्ता। हाँ जी
2: हाँ जी अपना ही रास्ता लेनी है कहीं अहाँ प्रगति कन्नै छोड़िए तो अहम अपना नुकसान होना जी।
0: जी जी
2: हाँ जी
0: जी चलो पेड़ जिड़े से धरती दी पकड़ होंदे ना जी।
2: हाँ जी धरती
0: जी
2: पकड़
0: कई बार चलो नुकसान भी कर दे अगर तुह जो लगता है कि से पेड़ अहाँ जो कुछ ना कुछ नुकसान करा था तां तुस तुहां तिसी ओ बढ़ी सकदे या कटी सकदे ना जी।
2: जी
0: कने
2: महाराज
0: जी छोटी छोटी गल्लां दा से तां ख्याल अहां दा रखना काम है पर कुछ ना कुछ पेड़ अहाँ जो ताजी हवा भी दे देना फल भी दे देना जी।
2: जी
0: जी फिर भी अहाँ कुदरत दा अगर नुकसान कर दे ना तां से अहाँ कुथी ना कुथी अपना भी नुकसान करते हैं ना जी।
2: हाँ जी हाँ जी
0: जी हुणे दा मौसम है तो कुदरत दी एक बड़ी प्यारी जिहड़ा सब्जी है तो हाँ नवा लगाया होना है पता नहीं नी लगाया होना है टटमोर जिहड़ा बोलते ना जंगली
2: हाँ जी हाँ
0: मशरूम।
2: जी
0: जी तो सभी कुदरत
2: पहले देखा ही पहले टटमोर आंदे
0: जी
2: घर से पठियार बने चे
0: जी जी
2: तहां आ खांदे रहंदे
0: जी
2: टटमोर लाई करी गुछियां दे लाई के मिल दी रहनी पर हुण नहीं
0: जी
2: आ डाढे आई रहे तो नहीं जांदे।
0: जी दिखा प्रकृति दी क्या क्या देन है ना जी यहाँ वास्ते।
2: हाँ जी वहां वास्ते सब कुछ दिंदी जी प्रगति।
0: जी पर आहां कितना की कदर कर दे इतनी दी पर सोच विचार करना तो बनता है ना जी।
2: बिल्कुल जी
0: जी जी तो आज सुहा कुंदिया गीत सुनना पसंद करेगी जी।
2: आज जी गीत सुनना जुग जियो धारा दे गुजरो गुजरो
0: जी जुग जुग जियो धारा दियो
2: जी
0: गुजरो। जी जरूर ये गीत ये फरमाइश तुह तक पहुँचा दें जी। जुड़ने वास्ते बड़ा बड़ा धन्यवाद जी तुहंदा।
2: धन्यवाद महाराज जी।
0: जी तशो तो वहाँ भी अपने कार्यक्रम दे सफर जो अगे बढ़ा देना कने अगली जेड़ा फरमाइश है से तुह तक पहुँचा देना।

0: दर्शकों तो सारे ही सुनिया ये गीत ए फरमाइश। इसी फरमाइश कन्या हाँ फिरी ते वापिस तुह तक पुजी उन कन्या दे जिड़ा श्रोता ने से फिरी ते कॉल पर कॉल करा देन। अगली जिड़ा कॉल है से जरूर तुह तक पहुँचा देन गलबात। हेलो
1: हेलो
0: हेलो नमस्ते जी।
1: नमस्कार जी।
0: जी स्वागत है जी तुह दा रेडियो गुंजन धर्मशाला च। ठीक ठाक है न जी? तो हाँ कुछ उत्ते बोला दे कन्ने तो हाँ दा ना क्या है जी?
1: मैं शांते बोल रही, मेरा नाम शानू है
0: जी। कुछ उत्ते बोला दे?
1: रसांते
0: जी। अच्छा रसांते बोला दे।
1: हाँ जी हाँ जी
0: जी। तरस रसां दा मौसम किते है जी?
1: मौसम तो खराब ही है
0: जी। बरखा भी हुई कि नहीं हुई?
1: बरखा हो दी है मैम जी।
0: जी अच्छा हो दी है जी। ता सानू जी तो हाँ क्या अपनी प्रकृति वास्ते संदेश जड़े से देना चाहेंगे कि प्रकृति दा संरक्षण आहा किस प्रकार करी सकते तो हाँ क्या लगता? हेलो
1: जी
0: जी। ता तो हाँ क्या लगता कि पर्यावरण या प्रकृति जड़े से आहा वास्ते कितनी ज़्यादा ज़रूरी है ना जी? पेड़ पौधे यहाँ वास्ते जरूरी है, नदी नाले तिना दा रख रखाव रखना यहाँ वास्ते जरूरी है। तो हमें क्या लगता कई बार होंगे ना कि इंसान तो हमेशा अपना ही फायदा दिखता है ना जी, कने प्रकृति जो हमेशा नुकसान पहुँचाता है। तो हमें क्या लगता जी? तो सानू जी आज तो हाँ कुंडिया गीत जड़े से सुनना पसंद करके जी कुंडिया गीत सुनने जी तो हाँ श्रोताओं कॉल जड़े से डिसकनेक्टेड हुई हो तो जरूर हाँ तुम्हें तो पता है समय जड़े से अपनी रफ्तार लेकर ही चलते हैं, कने समय के अनुसार चलना भी यहाँ वास्ते जरूरी है। तो इसी प्रकार अहाँ भी समय के अनुसार चलना है, कने अगली जड़ा गलबात अहाँ करा देन सभी जरूर तुह तक पहुँचानी है, कने गलबात अहाँ करा देन से तुह सारे ही सुना देन विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस के बारे च, जिड़ा पानी है से अहाँ वास्ते कितना ज़्यादा ज़रूरी है, प्रकृति जिड़ा से अहाँ जो हर चीज़ मुफ्त दिंदी है, चाहे जंगल हैं चाहे प्रकृति दा हर अदृश्य अहाँ वास्ते ज़रूरी है। अगले जिड़ा श्रोता ने तिना करने करते न गल बात। हेलो
2: मैडम जी नमस्ते।
0: नमस्ते जी स्वागत
2: हो
0: है
2: ठीक
0: जी।
2: ठाक मैडम जी?
0: जी बिल्कुल ठीक ठाक इन जी।
2: आज तो हम बना दे दिवस है ना प्रकृति संरक्षण दिवस पर मना दे।
0: जी जी जी
2: बड़ा अच्छा टॉपिक लिया मैडम जी।
0: जी तो हाँ क्या आपने विचार श्रोता तक पहुंचा?
2: मैडम जी ना देखा लोग कितना करा दे, देखा रुखा बड़ी जगह देखो कुछ कर दिया दे ना
0: जी,
2: ये तो होना चाहिए गंद मत सट्टा कोई लिफाफे सट्टा दे मैडम जी, प्रकृति ना छेड़छाड़ करा देना तो क्या देखा क्या विनाश हो देना मैडम जी।
0: जी जी
2: देखा मैडम जी प्रकृति ने छेड़वाड़ करा देखा 35-40 बंदे तो मरी क्या ना जम्मू माता
0: जी जी
2: अर्धकुंवारी मंदिर।

0: ਪਈ ਆ ਕੋਹਰੀ ਤੀ ਨਾ ਲੋਕਾਂ
1: ਜੀ
0: ਦੇਖ ਲੈ ਨੁਕਸਾਨ ਨੀ ਆਉਂਦੇ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਦੂਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਰਾ ਦੇ
1: खुशी
0: ना पेड़ लगा दो चार पेड़ अच्छा लगता मैडम जी पतमोरिया कोई टटमोर कोई चीजा नैचुरल चीजा ना मैडम जी दो पेड़ लगा चार लगा तो गिफ्ट करा कुछ पेड़ ले तो तरफा ते अपने विचार प्रकट करना चाहिए मैडम जी कुछ सुन लिया कुछ करा है ना मैडम जी
1: जरूर जी
0: ठीक है मैडम जी धन्यवाद
1: जी तुहांदा भी धन्यवाद जी तशो तो चलते ना अगली फरमाइश की ओर सुनते नी सब प्यारी दी फरमाइश है जो

दर्शोत्तम तो सारे ही सुनिया है कि ते फरमाइश करतार जी दी फरमाइश अहाँ तिना तक पहुँचाई कने तो हाँ सारिया भी इंजॉय की थी कार्यक्रम च जिहड़ा उस समय है से बिल्कुल थोड़ा दे है ता इसी समय दा ध्यान रखी करी अहाँ फिरी ते अगे बढ़ते न कने अगली जिहड़ा फरमाइश है से नेहा जी तक पहुँचाते न से रहने वाले न गगल ते।

पिछों तो दो सारे कार्यक्रम सुना थे माटी दी महक पिछों तो एक बात आ प्रकृति दे ना कि प्रकृति ते अहां सिर्फ लेना ही नहीं है उस जो लौटाना भी है उसकी जड़ा रक्षा है से हमेशा करनी है जड़ा पेड़ पौधे न से अहां लगाने न पेड़ लगाएंगे तो जीवन अहां अपना जड़ा है से बचाएंगे तो इसी कन्ने पेड़ भी लगा अगर तो जो लगता है कि अहां कुछ ही प्रकृति की रक्षा कर सकते न या अपने जड़ा नदी नाले न तिना की रक्षा कर सकते न या तिना की साफ सफाई अहां रखी सकते न तो जरूर रखा इसी कन्ने तो सारे ही अपनी रेडियो दो शशि जुदेया अनुमति कने नहीं हंसते रहा कने हमेशा खुश रहा।

मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर

0: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
1: हर घर सूर्य घर।
2: मुझे लगता है इस दुनिया में सबसे बड़ा दान ना पैसे का है, ना कपड़े का है, ना किसी चीज सामान का है। दुनिया में सबसे बड़ा दान है किसी दुखी को आप अपनी एक बात देकर के उसको खुश कर दो। आप उसके चेहरे पर प्रसन्नता लाओ और आप ऐसा कुछ कर दो जो उसके जीवन के दुख खत्म हो जाए, वो आपको देख करके कुछ समय के लिए भूल जाए कि वो कितना दुखी है।

0: भी साइबर फाइनेंशियल फ्रॉड में फंस जाना तो कॉल 1930 पर लगाना। ऑनलाइन होने वाले धोखाधड़ी और साइबर फ्रॉड से पीड़ित होने पर गृह मंत्रालय भारत सरकार की अधिकृत वेबसाइट www.cybercrime.gov.in पर अपनी शिकायत दर्ज कराएं।
1: पवन आ गया।
2: पवन वहाँ क्यों बैठे हैं?
1: पता नहीं तुझे उसे टीबी है।
2: और भाई लास्ट बेंच का मजा अकेले अकेले।
3: पता है ना मुझे टीबी है।
2: चल चल तुझे पता है ना इलाज का असर शुरू होने के बाद टीबी के इन्फेक्शन का डर नहीं रहता। टिफिन में क्या है? टीबी की दवाई के साथ खाना भी अच्छे से लेना है, समझा?
4: अपनों का जोड़ है टीबी का तोड़, तो फिर भेदभाव क्यों? टीबी के इलाज में अपनों का साथ दें।
5: सुनो, तुम्हारे पास 5,000 रुपए पड़े हैं?
6: 5,000? मेरे पास 500 रुपए नहीं है। तुम 5,000 पूछ रहे हो?
5: Oh, no. देख लो कहीं थोड़े बहुत पड़े हो।
6: तुमने दिए कभी जो थोड़े बहुत कहीं पड़े होंगे?
5: किचन के किसी डब्बे वब्बे में छुपाए हो या किसी कपड़े के नीचे?
6: तुम्हें सच में लगता है मैं तुमसे पैसे छुपाती हूँ? अरे नहीं है यार मेरे पास पैसे।
5: कसम खाओ।
6: कसम से मेरे पास 1 रुपया नहीं है।
5: फिर ये ड्रेसिंग टेबल के कपड़े के नीचे 5,000 किसने रखा? मेरा ही रहेगा लगता, रख के भूल जाऊंगा ना। अब तुमने तो कसम खाई है, तुम्हारे तो है नहीं। मेरे ही होंगे इस घर में और रहते ही कौन है।
7: भारी मिस्टेक हो गया सर।
6: नहीं मतलब तुम्हारे ही होंगे।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और दोस्तों आपकी अपनी आरजी दोस्त रुचि का हाजिर हो गई है कार्यक्रम लेकर, गीत सुहाने नए पुराने, जहां हर धुन जगाए जज्बात। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये प्यारा सा गीत।

दोस्तों इस गीत के बाद एक बार फिर से वापिस आ गए हैं कार्यक्रम में। बिल्कुल दोस्तों, और कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने, और आज का ये कार्यक्रम आप सभी एंजॉय कर रहे हैं दोस्तों अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ। तो आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और आप सभी को सुनाते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों, नए हो या पुराने, हर गीत में छुपी है एक कहानी और वो कहानी छूकर जाती है हमारे दिलों को, हमारे दिलों के जज्बातों को, हमारी रूह को। तो आइए दोस्तों, बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों, रेडियो गुंजन धर्मशाला से आप सभी सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने। और आज के इस सफर में आप सभी जुड़े हुए हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर।

दोस्तों, वो जमाना, वो आवाजें और आज के सुर सब एक साथ, गीत सुहाने नए पुराने। दोस्तों, कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ 91.2 मेगाहर्ट्ज़ से।

दोस्तों आप सभी ने ट्यून किया है 91.2 MHz पर अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला। और दोस्तों आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो आइए दोस्तों बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।

गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे।

0: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
1: हर घर सूर्य घर।
2: मुझे लगता है इस दुनिया में सबसे बड़ा दान ना पैसे का है, ना कपड़े का है, ना किसी चीज सामान का है। दुनिया में सबसे बड़ा दान है किसी दुखी को आप अपनी एक बात दे करके उसको खुश कर दो। आप उसके चेहरे पर प्रसन्नता लाओ और आप ऐसा कुछ कर दो जो उसके जीवन के दुख खत्म हो जाए, वो आपको देख करके कुछ समय के लिए भूल जाए कि वो कितना दुखी।

0: फिर भी साइबर फाइनेंशियल फ्रॉड में फंस जाना तो कॉल 1930 पर लगाना। ऑनलाइन होने वाले धोखाधड़ी और साइबर फ्रॉड से पीड़ित होने पर गृह मंत्रालय भारत सरकार की अधिकृत वेबसाइट www.cybercrime.gov.in पर अपनी शिकायत दर्ज कराएं।
1: पवन आ गया।
2: पवन वहाँ क्यों बैठे?
1: पता नहीं, उसे टीबी है।
2: और भाई, लास्ट बेंच का मजा अकेले अकेले।
3: पता है ना, मुझे टीबी है।
2: चल चल, तुझे पता है ना, इलाज का असर शुरू होने के बाद टीबी के इन्फेक्शन का डर नहीं रहता। टिफिन में क्या है? टीबी की दवाई के साथ खाना भी अच्छे से लेना है, समझा?
4: अपनों का जोड़ है टीबी का तोड़, तो फिर भेदभाव क्यों? टीबी के इलाज में अपनों का साथ दें।
5: सुनो, तुम्हारे पास 5,000 रुपए पड़े हैं?
6: 5,000? मेरे पास 500 रुपए नहीं है, तुम 5,000 पूछ रहे हो?
5: Oh, no. देख लो, कहीं थोड़े बहुत पड़े हो।
6: तुमने दिए कभी जो थोड़े बहुत कहीं पड़े होंगे?
5: किचन के किसी डब्बे वब्बे में छुपाए हो या किसी कपड़े के नीचे?
6: तुम्हें सच में लगता है मैं तुमसे पैसे छुपाती हूँ? अरे नहीं है यार मेरे पास पैसे।
5: कसम खाओ।
6: कसम से मेरे पास 1 रुपया नहीं है।
5: तो फिर ये ड्रेसिंग टेबल के कपड़े के नीचे 5,000 किसने रखा? मेरा ही रहेगा, लगता रख के भूल जाऊंगा ना। अब तुमने तो कसम खाई है, तुम्हारे तो है नहीं। मेरे ही होंगे, इस घर में और रहते ही कौन है?
7: भारी मिस्टेक हो गया सर।
6: नहीं, मतलब तुम्हारे ही होंगे।

नमस्कार श्रोताओं, FM बैंड 91.2 MHz पर वेडी गुंजन धर्मशाला तो ये सभी ट्यून कर रहा हूँ। सचिन कपूर तुम्हारे वीडियो सेट में बिल्कुल हाजिर हाँ। कार्यक्रम में इंदी अपने गप्पा लेकर बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन हाँ सभी होने वाले रहा सभी श्रोतागण रहा। कैसे श्रोता तो ये सब उम्मीद कर लो खरे बुने ने और बर खरा आनंद ले करते बुने ने बरसाले रहा किया सो आनंद बिल्कुल ले करते बुने श्रोतों की बरसाला तो आनंद तो लेना पैना। लेकिन हाँ चलिए जिस प्रकार इस समय बरखा इस प्रकार रिवर का बहुत आनंद भी किया सो चलो चली इंदा है ना किए ना किए। लेकिन अगर बरखा थोड़ा इससे बेरी बहुत कजो कि आसाम रहा हाल किया सो है सब बाखूबी जान दे इन्हा ना कि आसाम में किया सो किस प्रकार होगी बाढ़ चोरी और कितना ही घर के अनसो बेघर बुझ के कितना ही मनो के अनसो बेघर के अनसो बुझ गया इन्हा ना। इस प्रकार रे अगर दिक्कत तकलीफ आ गया सो चली दिन छोदों तक घर घन घर का फिर जो बरसात रहा मज़ा जो बरसात रहा आनंद आ सो कर का नगर का फिर डाउन बुचे गंदा हाशो तो है ना। और तू पता इस लाइव कार्यक्रम में इन जितने भी सियाणा सो कि जुड़ दिन सोए बल दिन कि हाँ भाई पहले तो इतों भी ज़्यादा किया सो बरखा बुंदी थी इतों भी ज़्यादा किया सो बरसात बुंदी थी लेकिन अब कुछ बरसात के अनसो खतरनाक किया सो बुचू कर दिन है ना। तो फिलहाल आऊँ सचिन कपूर तो सोगी बिल्कुल उपस्थित है कार्यक्रम हिंदी अपनी गप्पा लेकर और छोतो कार्यक्रम मंच बहुत सारी जानकारी ढेरों जानकारी के अनुसु तुस होगी शेयर करनी ने साझा करनी ने और सोगी सोगी आज क्लाइंटा जो लाइव है भी तुस होगी सो जरूर शेयर करना हाँ। फेसबुक रे माध्यम होगी तुस हो गया है जरूर जुड़ ले छोतो लेकिन आइया तत्वों पहले की सो मुझे लगता कि असू आगाज़ कि असू करना चाहता है ना। आगाज़ कार्यक्रम रहा जरूर बोलना चाहता लेकिन आगाज़ तो पहले मौसम री जानकारी किया वो भी बहुत अहम था अह गल करिए छोदों तो इस समय रे आऊँ गल करूँ तो लगभग लगभग के छोदों सो 19 डिग्री वे आसपास है 19 डिग्री सेल्सियस रे आसपास है। नमी री गल करिए 98% के सो नमी हाँ और बिल्कुल 98% की सो नमी इस समय और 19 डिग्री रे आसपास किया सो इस समय श्रोता हूँ बिल्कुल तापमान हाँ। तो चलिए आगाज कर लेंदे इन कार्यक्रम रहा और आगाज तो बात श्रोता हूँ फिर तुस होगी कि सो बहुत सारी जानकारी असू शेयर करनी है ना और इनका जो श्रोता असू होगी जुड़ दें सब तुस हो गया है जरूर कनेक्ट कराना 7018870918 पर कॉल कर गए नंबर आक मुके फिर तू हो गया हूँ जरूर शेयर करनो साझा करनो हाँ नंबर आऊँ आस्ते आस्ते कर लूँ ताकि जितने भी श्रोता के सो जरूर नंबर लिखे लेन और तो है व्हाट्सएप रे माध्यम थों भी और सोगे सोगे श्रोताओं फेस बुक रे माध्यम थों भी है जुड़ू कर दें ततड़ी भी तो है फरमाइश की सो दे सकते हैं 7018879 पर नंबर आक मौके फिर 7018879 पर। तो चलिए पहले आगाज कर लेंदे इन कार्यक्रम रहा इस प्यारे दे गीत सोगे बने रहे तो सब आरजे सचिन कपूर सोगे गूंज अपने बन रहे।

शत एफ एम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज पर वेरी गुंजन धर्मशाला तो है सभी ट्यून कर रहा हूँ सचिन कपूर नाचीज तुंदे वेडियो मंच बिल्कुल हाजिर हाँ हल्की हल्की बरखा लग रहे और शतो अपना गदयाड़ी कार्यक्रम लग रहा बहुत रेडी गुंजन ट्यून बहुत 91.2 एफ एम ट्यून बहुत अगर लेके सो बखरे बुछ गंदे हाँ शोतो है ना तो तुम सब श्रोता जरूर जुड़ी सकते हैं जी 7018879 पर कॉल करी करी इन बहुत सारे श्रोता के सो बिल्कुल कॉल करो कर दें सब भी वह है जरूर जोड़ लें श्रोतों कुछ एक खास जानकारी की किनारी की सो भी असू जरूर गाना हाँ और इसी बीच ही एक फरमाइश और आया माहिया की तरह टाइटल है श्रोतों और डॉक्टर सुशांत ठाकुर ये गीत के सो लिख रहा है श्रोतों और इनकी बड़ी प्यारी दोस्त रूपाली शर्मा एक्ट कर रहा है एस पहाड़ी बहुत प्यारे इनके दोस्त हैं वीडियो डायरेक्टर जिन्हें वीडियो शूट कर रहे हैं श्रोतों और अनमोल नाथ उन दिनों खास कर जाने गंदा हा और अनमोल शर्मा था एस पहाड़ी बिल्कुल और बबलू ग्रामवासी इस गीत जो कि है सो अपनी आवाज़ देते रहे बहरहाल तो कुछ खास जानकारी ने भी तुसो की जरूर उसको शेयर करनी है फरमाइश बिल्कुल ठीक है जता अर्थ हो इंदे बहुत ही आदरणीय हैं गणमान्य व्यक्ति हैं ऋषभ जी जिन्हों सन्नी नाथ हों जाने गंदा और तीन हो कि बिल्कुल इंदे बड़े भाई चिंटू भाई सो भी हैं त्यारी फरमाइश है चिंटू भाई भी बिल्कुल अपना अपना फ्यूचर की असोकर खन कर खरा

राजनीति में हेरो गर्दन इस बार सो इलेक्शन वास्ते जरूर खड़ी है भी थी है, लेकिन कुछ एक चीज़ा हेरे करी या कुछ चीज़ा एनालाइज करी करी शायद थी है अपनी अपने ग्रंथों की या सो ना थी है फिर अपना पद किया सो वापस ले लो और उप प्रधान वास्ते की सो ना खड़ी है थी। लेकिन होप सो सो फ्यूचर अगर हेरदन तो बिल्कुल तती अंदर तती माँ सभी मोटेगल के अपने मनु मगे सो पकड़ जरूर बनाना पैने जो कि त्यारे हाँ भी नो डाउट त्यारा अच्छा स्वभाव डाउन टू अर्थ और चुलबुला स्वभाव की सो सभ्यों की सो भाई गंदा हा तेरी फरमाइश में ये दो शख्स और यारी फरमाइश में गीता सो जरूर होना। बहरहाल खास जानकारी तू होगी शेयर कर लेंदे इन शो तो ई टैक्सी योजना में आयु सीमा के सो 5 साल और बढ़ाई देते हा जी बिल्कुल शोधों सरकार के सो राहत देते आवेदन री अंतिम तिथि भी अक महीना के सो बढ़ाई देते हा। हिमाचल प्रदेश सरकार के सो राजीव गांधी सो रोजगार स्टार्टअप योजना 2023 तहत संचालित ई टैक्सी योजना मा के सो युवा जो बड़ी राहत के श्रोताओं सो देते हा। पात्रता री अधिकतम आयु सीमा के सो बढ़ाई देते हा श्रोताओं। अब इस योजना रा लाभ लेने वास्ते किया सो अधिकतम आयु 45 वर्ष तो बढ़ाई करे 50 वर्ष किया सो करी देती है श्रोताओं। इस संशोधन तत्काल प्रभाव थो किया सो लागू भुचिगो हा। श्रम रोजगार एवं विदेशी नियोजना विभाग द्वारा जारी अधिसूचना रे अनुसार राज्यपाल है किया सो जनहित में योजना रे व्यापक दिशा निर्देश वे खंड 5 बीमा संशोधन जो मंजूरी किया श्रोताओं सो देती है। संशोधित प्रावधान रे तहत श्रोतों अभय योजना रे वास्ते की सो पात्र आयु 23 थो लेकर 50 त्रेई साल रा युवा और 50 वर्ष रा भी युवा तो ना बल नहीं सकता, लेकिन चलिए 23 थो 50 वर्ष की सो आयु सीमा करे थे, जबकि ये पहले क्या थी श्रोतों सीमा 23 थो 45 वर्ष निर्धारित थी। प्रदेश सरकार आयु सीमा मंच राहत देने सोगे सोगे श्रोताओं योजना रे वास्ते आवेदन करने वे इच्छुक युवा जो कि सो अतिरिक्त समय भी किया सो दीता अधिसूचना रे अनुसार विज्ञापन रे माध्यम थो आवेदन प्राप्त करने वे अंतिम तिथि जो भी किया सो तत्काल प्रभाव थो अक महीने वास्ते किया सो और बढ़ाई दीता है। प्रदेश सरकार है इस फैसले थो अधिक संख्या में पात्र किया सो युवा जो योजना रा लाभ मिला मुड़ा है ना, और ई टैक्सी ई वाहन रे माध्यम तो स्वरोजगार स्थापित कर सकने श्रोताओं। जी बिल्कुल देखा जानकारी तो सब होने कर देने इस समय आरजे सचिन कपूर सो के वेड़ी गुंजन धर्मशाला मंच 91.2 FM मंच बिल्कुल लाइव कार्यक्रम हाँ। लाइव जानकारी तो सो गया है जरूर शेयर करो कर देन चौथों आइया खास जानकारी और शेयर कर दें, लेकिन लेकिन चलते तो सभी हो इस गीतरी और जो कि फरमाइश है चिंटू और सनेरी।

0: श्रोतों वेड़ी गुंजन धर्मशाला तो है सभी ट्यून कर रहा और हाँ आरजे सचिन कपूर रतन दा अपना आरजे ता बहुत प्यारे दे फरमाइश के सोए सभी होने श्रोतों और फरमाइश रा दौरे हैं चलते रहना हाँ बाकी महीना सोने तना बंदे वे माही है पर चलिए अबे कुछ है बल्ली ना सकते इस गाने में है टिप्पणी ना कर सकते भाई साहब क्योंकि दौर दौर री गल बंदिया कस इसकी घबराहट टिप्पणियाँ है जरूर कर सकते हैं लेकिन इस गीत अंदर टिप्पणियाँ है ना कर सकते हैं। चलिए ठीक है जो सोगी बंदा सो बेहतरीन हा जो हा सो बेहतरीन हा श्रोतों सोगी जो भी आ जो भी इंदे यार दोस्त हैं जो भी इंदे अपने परिवार वाले हैं सो सब बेहतरीन हैं अच्छे हैं है ना। और श्रोतों लाइफ में कभी भी किया सो इंसान संतुष्ट ना बुझ सकता हा अमीर चाहता हूँ और अमीर बुझे गचूँ गरीब चाहता हूँ और ज़्यादा की हसो अमीर बुझे गचो यानी कि और ज़्यादा चीज़ा मंजिले चली ना। अच्छा सोचा है अपू माँ है अगर अपने आप जो एग्जांपल मन्नी करी चलने सोता हूँ तो है बिता ये सोचता ना कि आज मंजिले चलिए ये चीज़ आता तो दत्ता ये घर ही बुझे गच्छा है आज मंजिले अगर स्कूटी बाइक है तो दत्ता हो गड्डी बुझे गच्छा गड्डी आता और मोटा ट्रक बुझे गच्छा तो इंसान री जो नीड्स हैं ना सो कभी पूरी ना बंदी सोता और इंसान कभी संतुष्ट ना बंदा हाँ अपने आप जो संतुष्ट रखना की सो बड़े मोटी गल है सोता इंदे पहले जो सियाने थी सोता सोचा सो क्या बढ़िया जिंदगी जिंदे थी है और इन्होंने भी खरे बंदे थी हट्टे कट्टे बंदे थी और बढ़िया बंदे थी लेकिन सो जिंदगी बहुत बेहतरीन जिंदे थी है क्योंकि सो चिंता ना कर देती है और अह मणु के नशोतों सो है अभी भी जो जनरेशन है सो चिंता बहुत कर दे है सो चिंता और चिंता माँ मात रखी बिंदु रखी सो फर्क रहा है शोतों सो चिंता इतनी ना करनी जी लाइफ चल रही ना तीन चलना दे और लाइफ इज़ सो गुड लाइफ की सो अपने लाइफ जो भी था लाइफ रहने दे नशोतों लाइफ भी था अपने तरीके होगी लाइफ जो बता चलना दिया हर कुछ प्लान की सो जिंदगी में ना बुझ सकता श्रोता कुछ चीज़ें की सो अनप्लान बुझी गंदी हिन फिलहाल इन श्रोता सो की कनेक्टेड हिन उस दिन कौन बोलूँ देन और कड़ी थो बोलूँ देन नमस्ते जी
1: नमस्कार सकन जी
0: नमस्ते जी नमस्ते क्या हाल चाल ना
1: बस ठीक है जी
0: और कर रघुरेन जी
1: बस कर लगना अबे बिल्ले ना घरे
0: अच्छा चिकन बल्लूं देना और कड़ी थों बल्लूं देना
1: हाँ अरसिंग बल्लू बंदा दारनु थों जी
0: अच्छा लग रही दारनु बास है बरखा की ना लग रही जी
1: ये थोड़ी थोड़ी
0: अच्छा माड़ी माड़ी
1: हाँ जी हाँ जी
0: चलिए हरसिंह जी कौन दिना गीत हुनना पसंद कर ले पहले तो ये दस दिया
1: गीत सुनाए दिया कमल नारी ये रब्बा जन सुनाए दिया माता रब्बा जन
0: अच्छा ठीक है जी जरूर होने ले और राजी खुशी तो है
1: ठीक है जी ठीक है ना मालिक की दया
0: बिल्कुल बिल्कुल मालिक की दया तो फिर और के चिंता ना सेरा हाथ इंदा हाथ पर तो फिर मतलब इंदा मुंडा पर तो फिर और के चिंता सु
1: ना ना जी वो मालिक जो करने वाला सो ही है जैसे घाटा बाद जो भी करना तस्सी करना
0: हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल जिंदगी री डोर की सो सेरे हवाले अगर करीते है तो तस इंदा बेहतरीन ही करना बढ़िया ही करना जी
1: हाँ जी हाँ जी
0: है ना चलिए ठीक है हर सिंह जी कमल नहरी अरे भजन माता टल वाली जरूर होना ले तो सो
1: हाँ जी ये टल वाली
0: ठीक है जी नमस्ते
1: नमस्ते जी
0: शोतो एफ एम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर वेड़ी गुंजन धर्मशाला तो है ट्यून कर रहा और आऊँ तुंद अपना हरजे रेडियो दोस्त सचिन कपूर तुंदे वीडियो सेट में हाजिर हा बहरहाल अपना घदा कार्यक्रम तो है सब हुनु कर देना और अगले श्रोता आसू होगी कनेक्टेड हैं नमस्ते जी
2: नमस्कार महाराज जी
0: जी महाराज नमस्ते नमस्ते ठीक ठाक न
2: दया मेरा उस मालिक दी
0: और कर करे लगुरेन
2: बस ये कर रहा लगना महाराज जी यह प्रोग्राम हूँ गद्दे ने और रख नारा बरखा नहीं लगी ना कि डाल डाल जाए
0: अच्छा अरे
2: आए मौसम बड़ा खुश दिन आ वैसे मौसम लगने वाले आ थोड़ी देर बाद
0: खुशनुमा मौसम है
2: हाँ जी खुशी वाला मौसम जी इस बार का
0: क्या बात है क्या बात
2: चोनी बक्के हम चोनी बक्के हम बदले ना गद्दे बदले पर बरखा नहीं मौसम है दिया सोना बंदा के बड़ा सोना
0: क्या बात है।
2: हाँ जी
0: इस मौसम जो तुसु बदल लाखा करोड़ मनु कैसो तरसे गंदे ने इन्हें मौसम वास्ते। हाँ
2: हाँ जी हाँ जी, जो मालिक ने हुंदा लिखता पीने बुना जी।
0: जी जी जी जी बिल्कुल। और यह सब बड़े सौभाग्यशाली इनके है इस पावन धरती में के है, हिमाचल री दे भूमि में के है जन्म लियूरा, और धर्मशाला में जो है रेव कर देते हैं धरती रे बड़ा आभार है के है इड़ी जन्म
2: हाँ जी
0: लियूरा।
2: हाँ जी जी महाराज जी, बंदे ना अपने
0: जी
2: दिलांदरे शोक ना रखना कि मेरा जन्म फलानी जगह हुंदा है,
0: जी जी
2: पता
0: जी
2: नहीं ऐसी जगह जन्म पूछ तो सी परमात्मा का नाम ही नहीं हुंदा
0: बिल्कुल बिल्कुल ठीक बोलंदे ने।
2: है।
0: जी
2: इनकी जन्म भूमि हिमाचल प्रदेश, पूरी जन्म भूमि है, हरेक हरेक आदमी याद होना चाहिए कि शिव भूमि है।
0: शिव भूमि दने देव तेरा वास है ना जी जगह जगह।
2: हाँ जी दने देव तेरा बासा
0: जी बिल्कुल
2: है। अरे कई ऐसी जगह ना तभी
0: जी
2: मतलब ऐसी ऐसी जगह भाई गांव तभी देवी देवते होंगे तभी हिंडा भी ना मार दे।
0: ना मार दे। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल।
2: हाँ
0: ई इंदे दार
2: कल
0: रही गल चल रही थी इंदे मनु हुनाऊ तो करते थी इंदे सियाणे सूगी जुड़ रही थी कितने बरे
2: जी
0: है,
2: महाराज।
0: कोई
2: हाँ
0: स्तेडों जुड़ रही
2: जी
0: थी, कोई नराणे थों जुड़ रही थी है, कोई खन्यारे थों जुड़ रही थी, तो हुनाऊ करते थे कि अब सोई नहीं रोनका भी नरी और ना
2: ना
0: ऊपर
2: रही
0: इंदे
2: जी
0: नरवाणे थों जुड़ रही थी है, सो दसो करते थे कि दारा मंज आग की जगह खंदे थी, आग की जगह चुट्टी लंदे थी, ए रो रहा नचंदे थी, ये भी कुछ तर्क ना जी
2: हाँ जी हाँ जी बिल्कुल पक्की गल है जी।
0: है ना।
2: हाँ जी
0: जी
2: अत हरेक चीज खाने मुंडी दारा पट्टी
0: हाँ
2: है। अब
0: बिल्कुल हर एक चीज।
2: ऐसो जमाना चली है
0: हाँ जी
2: कौन कच्छू करता है, दूरा हो ये फलानी जगह आवे तो बस दूरा हेरू कर दे गाने दस खत्म है।
0: संदेश से खत्म ना। बिल्कुल बिल्कुल
2: आता है कुछ दूसरी गल है तो गाने वाले गाना भी कोई टाइम ऐसा लगना तो गाना मानू।
0: फिर गाना बिल्कुल
2: हाँ जी हाँ जी चली गाना जी
0: चले गाना कोई
2: कहे
0: गाना अपनी
2: क्यों
0: बनीदारो। हाँ
2: हाँ बंदे ना जड़ी खेती है हुई ना ना बाहू कर दे ए भी बाह पैनी
0: बाना बहनी ना सो जमाना फिरी मुड़ करी ना सो दौर फिरी मुड़ करी ना जनाब।
2: वेरा जनाब कि 3 रुपये किलो आटा बचियो गरीबा मानू कुछ लेना
0: किया लेना बिल्कुल
2: है। कस भी छोटा अरे मुझे 2 चोर बगड़ू तो आऊं दिन रात पानी मंजा टी लाला था सो पालनी है दस राशन करना।
0: बिल्कुल बिल्कुल
2: ये आजकल है जमाना महाराज जी।
0: जी बिल्कुल जनाब बिल्कुल
2: अच्छा जनाब मु आज गाना सुनना,
0: जी।
2: कुत्ती मेरी छिकनू दी काठी बाले वो बैरिया बाले
0: क्या बात है क्या बात है बहुत प्यारा गीत है।
2: जी।
0: चलिए जरूर होना ले तो सुई गीत है जनाब।
2: ठीक है महाराज
0: ठीक है
2: जी
0: जी नमस्ते हरदेव जी नमस्ते।
2: नमस्ते महाराज जी।
0: श्रोता एफ एम बैंड 91.2 MHz पर हाँ सचिन कपूर है और कार्यक्रम हिंदी अपनी गप्पा के अनुसार चल रही है। चलिए जल्द इन कार्यक्रम जो हागो बढ़ंदे हैं और लेकर चलते तू सभी जो इस गीतारी कनारी कमल नहरी रा गौरा गीत हा श्रोताओं और श्रोता री फरमाइश थी ता या हर सिंह जी री जो कि दाड़नू थो उन तैयारी फरमाइश में होंदे ने गीत बने रे आरजे सचिन कपूर सो गूंज।

शोध एफ एम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर हूँ। सचिन का पूरा कार्यक्रम इस समय बिल्कुल लाइव चल रहा है तुंदे सभी रे रेडियो सेट में। और कार्यक्रम मन श्रोता तो सब बन रहे हैं इस समय हिंदी अपनी गप्पस होगी। ये लाइव कार्यक्रम चल रहा है। इस लाइव कार्यक्रम में श्रोता है कोशिश करूँ कर दिन कि हिंदे सभी श्रोता री फरमाइश अगेन सो भी है पूरी करना और सोगी सोगी जो स्थानीय जानकारी हिन धर्मशाला भी जानकारी हिन धर्मशाला थो जुड़ रही जो जानकारी हिन श्रोतो सो तुसु तक रहे जरूर शेयर करना साझा करना। बहरहाल चलते हैं थोड़ी करी और हगो और सड़क पर भारी पानी श्रोतो धर्मशाला भी थोड़ी करी टेंशन के सो बढ़ाओ करता बिल्कुल जी क्या है ये रुगरदिन छतों की बरसाला लुग रहा है। बरसात रहा मौसम मानसून की असो पूरी तरीके होगी सक्रिय इस समय और पर्यटन राजधानी री पर्यटन नगरी धर्मशाला में की असो बरसात री तेज बारिश है कि श्रोतों सो धर्मशाला मैकलोडगंज कैंट रोड नेशनल हाईवे सड़क भी बदहाल स्थिति री पोल की असो खोल कर रखी तेज श्रोतों तेज बरखा रे बाद सड़क पर कई स्थान पर की असो पानी भरी छूरा हा श्रोतों जतों वाहन रे आवाजाही की असो प्रभावित हुई है और फिसलने रे कारण कुछ वाहन के न सो क्षतिग्रस्त भी हुए हैं श्रोतों। इतना ही ना श्रोतों अब सड़क री अति दयनीय स्थिति में लगातार हादसे जो कि असो खतरा हादसा की असो भुच्चू करता हा श्रोतों और खतरा बन रहा है इस समय श्रोतों। सड़क पर बड़े बड़े जो गड्ढे हैं पानी तो भरी गछूरे हैं जत्था वाहन चालक जो कि असो गड्ढे व अंदाजा की असो ना लगी प्यो करता हा जत्थों हादसे जो खतरा के असो लगातार भुच्चू करता हा श्रोतों। हादसे का खतरा किया सो लगातार बन रहा है श्रोतों है ना। बारिश के चलते सब तो अधिक परेशानी स्थानीय मनुजो और धर्मशाला इने वाले मैकलोडगंज गाने वाले जो पर्यटक हैं तिन्हों झेलना प्यो करते हैं श्रोतों है ना। स्कूल गाने वाले बच्चे जो भी किया सो झेलना प्यो करते हैं और पैदल चलने वाले मनु जो भी किया तिन्हों भी भारी दिक्कत का सामना किया सो करना प्यो करता है श्रोतों। पर्यटक भी के श्रोतों से यह सड़क थों काफ़ी ज़्यादा परेशान भुचू करते हैं और नाराजगी किया सो जताऊ करते हैं श्रोतों। विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल री मुख्य सड़क री हालत क्षेत्र री छवि जो किया सो प्रभावित करू करते हैं श्रोतों। ऐसे में नेशनल हाईवे में कांगड़ा व स्थानीय प्रशासन रे लापरवाही व बड़े सवाल उठू करते हैं जी बिल्कुल। धर्मशाला कांगड़ा व स्थानीय प्रशासन पर किया सो बड़े सवाल इस समय खड़े भुचू करते हैं। ये लापरवाही है श्रोतों अधूरे निर्माण कार्य और खराब जल निकासी व्यवस्था के कारण अब ये मार्ग मनु वास्ते किया सो आफत बनी गुछूरा। ये मार्ग न रही रहा रास्ता न रही रहा ये मनु वास्ते किया सो आफत बनी गुछूरी हा श्रोतों। कैंट रोड मैकलोडगंज और धर्मशाला जो जोड़ने वाला प्रमुख मार्ग में शिमला माफ करा शामिल हा और जड़ी प्रतिदिन स्थानीय वाहन रही है अलावा किया सो बड़ी संख्या में पर्यटन वाहन भी किया सो गुजरते हैं श्रोतों। बरसात रहे मौसम में सड़क भी ये हालत दुर्घटना बुच्चू कर दिन वाहन क्षतिग्रस्त बुच्चू कर दे हैं। रोजाना मैकलोडगंज भागसुनाग नड्डी धर्मशाला रहे लोकल्स पर्यटक तिनमें तक किया इस रोड में तक किया सो गच्छू कर दे हैं। वाकई मैं श्रोता हूँ जो बड़े बड़े गड्ढे और जो एक खराब रोड है कैंट रोड जो खराब रोड है श्रोता हूँ जैसे खड़े डंडे री गल करे तो है जाए मैकलोडगंज कैंट रोड री गल कर लिया ये वाकई में करखा नगर का धर्मशाला री छवि जो कि असो खराब करू कर देने स्थिति खराब है श्रोतों बिल्कुल स्थिति खराब है। और ये जो स्थानीय प्रशासन है तिन्हों की असो सख्तों सख्त एक्शन और जल्द तो जल्द किया सो कार्रवाई करना पैने हा श्रोतों। बहरहाल हूँ सचिन का पूरा कार्यक्रम में जानकारी रहा सिलसिला किया सो ये चले रहना बने रहे जुड़े रहा आर जे सचिन का पूछो की गूंज अपने फन रे और गूंज प्यारे प्यारे श्रोता रे। फिलहाल लेके चलते तू सभी जो इस गीत तारीख नारी

0: शत एफ एम बैंड इक्यानवे दशमलव दो मेगा हर्ट्स पर वेड़ी गुंजन धर्मशाला के सुतु ऐसा बी ट्यून कर रहा और हूँ सचिन कपूर तो सुबह की धुंदा अपना आर जे रेडियो जो कि आइए फिलहाल कार्यक्रम जो हागो बढ़ते हैं और कुछ एक पर्सनल एक्सपीरियंस तो सुबह जरूर शेयर करने वाला छो तो बिल्कुल हक बलदे ना मनु पत्थरों पुछदन कि तू गोल कि बुआ था पत्थर दसदा कि लुड़े लुड़े करे और क्या विश्वास ठीक है अक जगह जड़ी तुंदा रिश्ता हा तड़ी विश्वास दसना के सो जरूरी भी बुझ गंदा विश्वास भूना भी चिंदा जाए सो तुंदा रिश्ता दोस्ती रहा जाए अपने रिश्तेदार मन जा जड़ी भी आ चलो अक विश्वास बुंदा अक ट्रस्ट बुंदा इंपॉर्टेंट भी आ लेकिन कभी भी दुकानदारी में और अपने बिजनेस में या फिर अगर तू है एज अ कस्टमर हिन तड़ी किया सो मुझे ना लगता कि रिश्ता ज़रूरी बुंदा या तड़ी के सो विश्वास करना ज़रूरी बुंदा है अक विश्वास घाट ऐसा ही मुंझे होगी बुआ हर्षो तो बिल्कुल ए विश्वास घाट भी है चलो ठीक है जितने री भी चीज़ थी सो जा रहा दो जा रही या जितने री भी थी सो मायने नहीं रखता लेकिन मायने रखता कि इंसान जो कि सो अक सबक मोलेगंदा हा और सो बोल दे ना कि तू गोल की बुआ लुड़ी लुड़ी करे तो सो बच गंदा हर्षो तो इंसान है ना कभी भी कोई भी सामान लेंदे ने एक छोटी दही कहानी भी आ जो हूँ तुसो के शेयर करना लगो है श्रोताओं और ये एक एक्सपीरियंस भी तो है मना वैसे तो बहुत सारे श्रोता ऐसा ही करते हैं कि कभी भी यह कोई भी सामान लेंदे तो ठेरा अब बिल के सो ज़रूर लेंदे हैं लेकिन बहुत सारे ऐसे इंदे श्रोता भी बुने जो ही हैं जो शायद ये सोचते हैं कि बिल कर लेना और बिल लेना इतना शायद ज़रूरी भी नहीं है ना अक विश्वास री गल भी बंदे है कि चलो इंदे घरे बखे दुकान ना हिन आऊँ योल बाज़ार री गल करूँ करता है सोतों योल बाज़ार अक दुकान हाँ मोबाइल रे अक नहीं हो तो बहुत सारी दुकान है लेकिन जड़ी मुंजो होगी विश्वास घाट हुआ सो बोलूँ ना कि व्यापारी के सो सोचना कि सभी ज़्यादा चतुर चलाक के सो आऊँ या तस्वीर ने पता कि दुआ बंदा कि सो भी थोड़ा बुद्धिजीवी पूछी सकता है लेकिन चलिए तड़ी मैं कुछ सामान लियो चार्जर लियो और चार्जर वायर ले और तीन सौ चार्जर वायर किया सो तड़ी चली पी घरे च घर में रे उतना सो चार्जर वायर किया सो ना चले है ना और फिर अगले दिन को मैं तीनों पूछूँ कि क्या गल है तो तीनों दसो कि तुंदे चार्जर पूरा चार्जर पिन के बंदे सो पूरे पैने नोए पूरा पूरा मतलब पत्ता बंदा सो पैना ढाई हज़ार रखो चूँकि मुझे आईफोन आता सो थोड़ा महंगा पैंता तो बल्लू जी ये ढाई हज़ार रखिए सो पैना हाँ अच्छा आऊँ मैं तड़ी तीनों की बार्गेनिंग ना करी मतलब तीनों की बहस ना करी मैं सोचूँ शायद ये ठीक बल्लू कर दे इन है ना बुझ सकता कि मेरा चार्जिंग पत्ता की सो चली गई छूरा हुआ फिर आऊँ इंदे इंदे मेरे एक थोड़ी करी यो ले हूँ इन्हें इच करी एक मेरे दोस्त की दुकान आ तीन सो यूपी रे बंदे ने वैसे तीन लेके सो आऊँगो और तीन मुंजो विद गारंटी इतने कम रेट में अच्छी कंपनी वह किया सो चार्जर वायर भी देती और सोगी सोगी छः महीने की गारंटी भी देती और बोलो कि पंजे महीने पर ख़राब हो चल ली तो है चली है वापस अब अक सोचा तो है अक शॉपकीपर सो ने जो कि बिल्कुल मुकरे गच्छू कर देन कि भाई ये तुंदी चार्जर ये खराब आ पिन ही खराब इन देह वायर के दी तुरे सो खराब नहीं है और अग जड़ी हूँ दो दिन तो एनालाइज करू करता कि हाँ वाकई में मेरा चार्जर की सो ठीक है तीन पिन ही खराब दे तुरे हा अब मुझे ये ना समझ लगो करते कि इंसान मतलब कस की हो रही हो इतना बेवकूफ क्या बना सकता है है ना सो ये छोड़ दे जो स्टोरी है ये असू ये सबक देंदे हैं मुझे है मेरे भाई कई बूने बहनी कई बूनी ने जो है सोचते कि रहा इंदा बाजार है खनैरा बाजार है धर्मशाला बाजार है योल बाजार है इंदा है ना तो इंदा उंदा कुछ ना बुंदा जड़ी जड़ी चीज़ लैनी बेशक तो है बल्ब ले करते ना सो भी तड़ी तो है चेक करे करे गया सो हेरे लिया कि बल्ब चलू करता कि ना चलू करता तो तड़ी हेरने बाद है तो मैं तो तुरंत घरे आ घरे चेक करो आए ना तो अगले दिन सोमवार तो सोमवार जो योल किया सो बंद रहते हैं तथो अगले दिन ना तस्सी दिन आऊँगो तैयारी दुकान खुली थी तो छोटी जी स्टोरी असू सबक दी करी कहते सोतों कि ठीक है विश्वास एक जगह ठीक है लेकिन अंधविश्वास करना गया सो गलत था। और कभी भी कोई भी सामान तो है खासकर इलेक्ट्रॉनिक चीज़ कोई भी लेन देन था बिल के सो ज़रूर लिया और वारंटी किया सो मुल दे था सो भी ज़रूर लिया। यह नादानी करी थी कि ऐसो सोचो अपने एड़ी अरे योली री दुकान और यह मतलब ना लेंदे बिल और ना लेंदे वारंटी चली तो पैने लेकिन अफसोस सो ना चले। और अफसोस ये भी कि सो थोड़ा करीब जो बेवकूफ़ समझू कर दे थी है जो गया वहाँ आना कजू क्या है भी बैग उठ करके माड़ा कहते है ना कुछ और करना था कहते नहीं था हर कोई अपनी अपनी जगह गया सो चतुर और चलाक बंदा हा। सो ये छोटे जे एक्सपीरियंस से सिखंदा हा कि जड़ी भी सामान लैन तड़ी सामान अच्छी तरीके हो कि सो चेक करी लैन दुई गल की बिल के सामान ना रह सो जरूर ले लैन। आजकल GST रहा पंगा प्यू रहा मतलब कुछ सामान ना रह लेना चाहिए कुछ ना ना लेना चाहिए सो तुहे ये रह सकते कि असू कह ठीक है कह नहीं है ना लेकिन इन्हें इन्हीं चीज़ जरा था जरूर ले लैन। सो तुम बरहा लें देख ले श्रोता असू के कनेक्टेड हैं। नमस्ते जी।
1: नमस्ते जी।
0: नमस्ते जी। नमस्ते।
1: हाँ जी हम सिद्धवाड़ी वालों को ना जेंगो गाइड।
0: जी जी जी सिद्धवाड़ी तो जेंगो गाइड जी क्या हाल चाल ने।
1: बस जी बढ़िया
0: करे करे
1: ले खड़गुरी।
0: हाँ बरकत लग रही।
1: हाँ जी
0: और करे लग रहे हैं।
1: बस जी कर लगाना बस कभी अंदर कभी बाहर कर लगाना
0: बरसाले।

0: अच्छा तो लगुरी तीन मिंजरा।
1: हाँ जी, तो गाना भी होने लेंदे ना घरे मिंजरा, तो किसी है ना
0: गछूरेन तो है कदी मिंजरा जो।
1: हाँ जी, मैं कोर्स की हूँ, बड़ी हरी मिंजरा है, हर साल हफ्ता हफ्ता नौ नौ दिन लाई इंदा हुआ होता सकती है।
0: अच्छा
1: कोर्स की दुकान कर दो ना, तो सामान ना ही तो चंबे तो तेरी लमा तेरी रहन दो।
0: अच्छा अच्छा
1: हाँ जी,
0: चलिए चंबे सर मिंजरा लगूरे है ना जी।
1: हाँ चंबे सर मिंजरा लगोरी प्यार हुआ तो घरे ही है, वो बेटा मेरी कर दी उजाड़ा यारा जो की है।
0: चलिए ठीक है जी, जरूर होने लगे सोए गीत।
1: ठीक है जी, ठीक है,
0: नमस्ते जी,
1: नमस्ते, धन्यवाद जी।
0: धन्यवाद। श्रोतम एफ एम बैंड 91.2 MHz पर वेड़ी गुंजन धर्मशाला, तो ऐसा भी ट्यून कर रहा और कार्यक्रम हिंदी अपनी गप्पा गैन सो चल रही हैं। ता श्रोतो इंडक सुनील कुमार जी जो फेसबुक रे माध्यम तो उसको कमेंट करू करते हैं। सचिन भाई नमस्कार, आऊँ बड़ोई थों बंदा हा, गाना हुनना कच्चा कच्च द गलास। भाई माफ़ करा, ये गद्याली प्रोग्राम है, अपना गादे प्रोग्राम है, इतनी अंदर सिर्फ और सिर्फ गादे प्रोग्राम के तती आऊँ ज़्यादा प्रेफर करता है। और सोए एक रूल है इंदा कि सोए किया सो चलना है, इंदा अपना गादे गीत कहने सो चलना है। इन छोतों कजो कि मुझे लगता कि पूरे वर्ल्ड में, होल वर्ल्ड में पहला कम्युनिटी रेडियो है, रेडियो गुंजन जो पिछले 7 साल तो अपना गादा कार्यक्रम किया सो चलाओ करता हो रहा है। ऐ बड़े सौभाग्यशाली इन, खास कर आऊँ बड़ा अपने आप जो सौभाग्यशाली मनो कि आऊँ पिछले 6 साल तो किया, 7 साल तो किया सो इस कार्यक्रम जो होस्ट करूँ करता है लगातार। ता प्लेटफॉर्म दितुरा जो इन दे ऊपर भी कुरेन इन दे डायरेक्टर तिंगे प्लेटफॉर्म दितुरा सुवास्त है ता यदि सिर्फ और सिर्फ गादे गीत ही कहने सोच ले सकते हैं। मूल दिन तो सो गए थोड़ी देर बाद, छोटा हूँ बने रहे तो सब आरजे सचिन कपूर सो के गूंज अपने बन रही और गूंज जितने भी प्यारे प्यारे श्रोता असोगी बन रहे हैं, असोगी जुड़ रहे हैं तैयारी सब मेरी फिलहाल अगले श्रोता असोगी कनेक्टेड हैं। नमस्ते जी।
2: नमस्ते, नमस्कार सचिन जी, नमस्कार।
0: नमस्कार जी, नमस्कार।
2: ओ ठीक ठाक है ना?
0: बहुत बढ़िया जी, तो है भले तो ठीक ठाक ना?
2: बढ़िया जी, बढ़िया, फर्स्ट क्लास
0: जी। कौन बल्लू देन और कड़ी थों बल्लू देन?
2: सारा टिल्लू थों बल्लू ना करतार।
0: अच्छा टिल्लू थों करतार जी बल्लू देन।
2: जी सर, जी सर,
0: जी करतार जी कर कर लगुरन।
2: बस जी बस, मैं राम कर गंदे तंदे आए रहा हूँ गंदे प्रोग्राम आयो।
0: अच्छा कुंडी ने गीत जी जी जी
2: काली ये कोयले मीठा मीठा बोल।
0: हाँ जी
2: काली ये कोयले मीठा मीठा बोल, आज मेरी नैया ने आना है।
0: चलिए ठीक है जनाब, जरूर तू सुई गीत होने लगा है।
2: ठीक है जी, ठीक है, धन्यवाद जी,
0: धन्यवाद जी,
2: धन्यवाद।
0: चलिए श्रोतों कार्यक्रम जहागो ब्रंदन और मिंजरा रा गीत किया सो भी होने लेंदे हैं श्रोतों।

मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।

आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
1: हर घर सूर्य घर।
2: मुझे लगता है इस दुनिया में सबसे बड़ा दान ना पैसे का है, ना कपड़े का है, ना किसी चीज सामान का है। दुनिया में सबसे बड़ा दान है किसी दुखी को आप अपनी एक बात देकर के उसको खुश कर दो। आप उसके चेहरे पर प्रसन्नता लाओ और आप ऐसा कुछ कर दो जो उसके जीवन के दुख खत्म हो जाए, वो आपको देख करके कुछ समय के लिए भूल जाए कि वो कितना दुखी है।

0: साइबर फाइनेंशियल फ्रॉड में फंस जाना तो कॉल 1930 पर लगाना। ऑनलाइन होने वाले धोखाधड़ी और साइबर फ्रॉड से पीड़ित होने पर गृह मंत्रालय भारत सरकार की अधिकृत वेबसाइट www.cybercrime.gov.in पर अपनी शिकायत दर्ज कराएं।
1: पवन आ गया।
2: पवन वहाँ क्यों बैठा है?
1: तुझे उसे टीबी है।
2: और भाई लास्ट बेंच का मजा अकेले।
3: पता है ना मुझे टीबी है।
2: चल तुझे पता है ना इलाज का असर शुरू होने के बाद टीबी के इन्फेक्शन का डर नहीं रहता। टिफिन में क्या है? टीबी के दवाई के साथ खाना भी अच्छे से लेना है, समझा?
4: अपनों का जोड़ है टीबी का तोड़, तो फिर भेदभाव क्यों? टीबी के इलाज में अपनों का साथ दें।
5: सुनो, तुम्हारे पास 5,000 रुपए पड़े हैं?
6: 5,000? मेरे पास 500 रुपए नहीं है, तुम 5,000 पूछ रहे हो?
5: देख लो कहीं थोड़े बहुत पड़े हो।
6: तुमने दिए कभी जो थोड़े बहुत कहीं पड़े होंगे?
5: किचन के किसी डब्बे वब्बे में छुपाए हो या किसी कपड़े के नीचे?
6: तुम्हें सच में लगता मैं तुमसे पैसे छुपाती हूँ? अरे नहीं है यार मेरे पास पैसे।
5: कसम खाओ।
6: कसम से मेरे पास 1 रुपया।

0: तड़के बैल।
1: कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने अपने होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। तो श्रोताओं करते हैं अपने कार्यक्रम की शुरुआत इस प्यारी से गीत के साथ। आप सभी यूं ही सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

91.2 MHz पर ये है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

तो श्रोताओं, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत अपनी रेडियो शशि के साथ। तो श्रोताओं, कार्यक्रम का नाम है गीत सुहाने नए पुराने। तो फिर से बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर यह है आप सभी का अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला, और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने।

ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और श्रोताओं, आप सभी ने फोन किया है अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और इस वक्त आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। तो बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

91.2 MHz पर ये है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। यह आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

तो श्रोताओं, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत अपनी रेडियो दो शशि के साथ। तो श्रोताओं, कार्यक्रम का नाम है गीत सुहाने नए पुराने। तो फिर से बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह है आप सभी का अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला, और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं।

आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है 91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला पर। बज गए हैं 6 और शुरू हो गया है आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला। तरह ही आज के इस कार्यक्रम में भी होंगी बहुत सारी बातें, जानकारियां आप सभी लोगों के लिए, और कुछ खास आज हमारे दिवस भी हैं उसके बारे में भी हम बात करेंगे आप सभी से इस कार्यक्रम में। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि आज है 28 जुलाई। जी हाँ, तो ये महीना भी बस अब खत्म होने ही वाला है। मंगलवार है आज और साथ ही दो खास दिवस भी हैं। जी हाँ, विश्व दिवस हैं। कार्यक्रम में धीरे धीरे आगे आगे उनकी बात करेंगे। दोस्तों, उन पर तो बात हम करेंगे ही, लेकिन साथ ही मैं आप सभी को मुबारक हूँ। इसलिए मुबारक देती हूँ, ये तो आप सबको पता ही है कि आप अपना कोई ना कोई ख़ास दिवस हर रोज़ ही मनाते हैं। हर कोई मतलब कोई ना कोई हमारी श्रोता तो मनाते ही होंगे, है ना, उसके लिए तो मुबारक मैं देती ही हूँ। लेकिन हमारे ही हिमाचल में एक और बहुत ख़ास चीज़ हो रही है, शुरू हो चुकी है। क्या है आपको पता है ना? नहीं पता है? जी हाँ, हमारा चंबा का मिंजर मेला हो चुका है शुरू। चलता है 8 दिनों तक और ये हमेशा ही जुलाई के आखिरी हफ्ते में होता है। बरसात के दिनों से डर करके आप घर में ही बैठे हैं या जा रहे हैं मिंजर देखने के लिए, अगर मौका मिलेगा कार्यक्रम में तो मिंजर की बात जरूर करेंगे। और शुरुआत में ही मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि देखिए, आज जो भी बात हम करेंगे थोड़ा सा सुन लीजिएगा, उस पर कॉल ज़रूर कीजिएगा। 7018117091 हमारे स्टूडियो का फ़ोन नंबर है लाइव। लेकिन ये नहीं कि अभी ही कॉल करना आप शुरू कर दें और आप प्रिपेयर भी नहीं हों कि बात क्या करनी है, विषय क्या है, क्या बात हो रही है। पहले से थोड़ा सा सुन लीजिए और फिर हमसे बात ज़रूर कीजिएगा, ज़रूर सुनेंगे हम आपकी बात। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत कर लें, एक खूबसूरत से गीत से कर लेते हैं।

आज कार्यक्रम में भी हम कुछ इसी तरह की बात करने वाले हैं। आपको पता ही है कि ये जो प्रोटेस्ट हुआ है उसके बाद भी अब आफ्टर इफेक्ट्स में बहुत कुछ हो रहा है, उस पर भी हम बात करेंगे। और बच्चों को क्या अपनी सीमाएं लांघनी चाहिए थी, उस पर भी बात करेंगे कार्यक्रम में।

श्रोताओं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ आप सभी बने हुए हैं। मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानी। तो मौसम की बात कर ली, रह गई थी ना कि नहीं, हमने और ही और बातें करते रहे। तो भाई मौसम कैसा है आप भी देख ही रहे हैं, कभी तेज रिमझिम बारिश है और कभी अचानक से पता नहीं कहाँ से कहीं कहीं हम बीच बीच की सड़क जो है वो खाली खाली मतलब सूखी सूखी देखते हैं। अचानक ऐसा होता है कि कहीं कहीं बारिश होती ही नहीं। खैर मेरे साथ तो ऐसा हुआ, जब मैं स्टूडियो की तरफ आ रही थी आज, मुझे थोड़ा जल्दी आना था, मैं 3 बजे के करीब चली थी, तो ऐसा बीच बीच में कुछ कुछ जगह मुझे ऐसा ही दिखा। क्या आप लोगों को भी दिखता है ऐसा कभी?

श्रोताओं, अभी भी आकाश में घने बादल छाए हैं, वर्षा बाहर पता नहीं, अब हम तो स्टूडियो के अंदर बैठे हैं, वर्षा शायद यहाँ थोड़ी सी रुकी हुई है, लेकिन 96 से 100% वर्षा की तो संभावना है ही। और हाँ, पहाड़ी क्षेत्र में भारी बारिश के कारण भूस्खलन, कीचड़, फिसलन का खतरा भी बढ़ रहा है। इसीलिए हम बार बार आप लोगों को ये कहते हैं कि पहाड़ों की ओर यात्रा करते समय सावधानी बरतें। हम ये नहीं कहते कि आप यहाँ पर नहीं आइए। अब छुट्टियाँ हैं, कई लोगों को इधर से उधर जाना है। अब कई लोगों को तो, अभी हम मिंजर की बात कर रहे थे, तो मिंजर मेला देखने भी तो जाना है, तो अब हम क्या कहेंगे कि भैया वहाँ मत जाए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, आप जाइए, ज़रूर जाइए, लेकिन थोड़ा सा रास्तों का अता पता कर लीजिए कि कहीं कोई रास्ते बंद तो नहीं हैं। क्योंकि ये सारी चीज़ें जो हैं साल में एक ही बार आती हैं, फिर उसके बाद पूरे साल तो आप लोगों ने अपने अपने काम करने ही हैं, है ना। और अगर छुट्टियों में आप इंजॉय नहीं करेंगे तो फिर कब करेंगे। तो ऐसी हिमाकत तो हम कभी नहीं करेंगे कि आपको मना कर दें, परंतु सावधानी बरतना भी हमारे हाथ में ही तो है। चलिए साथ ही बता देती हूँ आपको, आज है विश्व हेपेटाइटिस डे और साथ में विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस। एक के बाद एक दोनों के बारे में हम बात आपसे करेंगे। लेकिन अगर मैं यूं कहूँगी, सबसे पहले मुझे बात करनी है ये जो आजकल इस समय जो जानकारी ऐसी चल रही है कि सोशल मीडिया के ज़रिए हमें पता लगा है कि आंदोलन समाप्त होने के बाद भी अभी भी पुलिस फुटेज, वीडियो रिकॉर्डिंग्स और फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी के ज़रिए उसका इस्तेमाल करके जो उपद्रवी थे, अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे थे उस भीड़ में, उन लोगों की पहचान करके उन्हें आइडेंटिफाई कर रही है। देखिए, अब इसमें ना दो मत हो जाएंगे, हमारे देश में दो भागों में बट गए हैं लोग कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए। कई लोग कहते हैं कि ऐसा होना चाहिए बिल्कुल, क्योंकि अब आंदोलन खत्म होने के बाद ऐसा कहा जा रहा है कि उन्होंने जो अभद्र भाषा का प्रयोग किया, गालियां निकाली, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को भी तो बहुत कुछ कहा गया है, उससे तो हम इनकार नहीं करते। लेकिन क्या जो भी युवा बीच में ऐसे थे उन्हें इस तरह से करना शोभा देता था? और साथ ही सीसीटीवी और फेस स्कैन भी किया जा रहा है। एनडीटीवी की रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर पर हुए हिंसक प्रदर्शनों के सैकड़ों गीगाबाइट सीसीटीवी फुटेज को खंगाला है। एआई आधारित फेशियल रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर की मदद से भीड़ में मौजूद ऐसे 2,863 लोगों की पहचान की गई है, जिनका कि पुराना आपराधिक रिकॉर्ड भी रहा है। तो पिछले कार्यक्रम में जैसे हमने आपसे कहा था कारगिल दिवस वाले दिन कि जी हाँ, हमारे युवाओं ने कुछ तो कर दिखाया है, और अपनी मांगों के साथ वो वहाँ पर बैठे हुए थे, तो सही बैठे थे और उनकी जो मांगें हैं वो मान भी ली गई और जो रेजिग्नेशन है वो आ भी गया। लेकिन देखिए, बीच में बहुत कुछ ऐसा भी हुआ जो नहीं होना चाहिए था, उसके बारे में भी हम कार्यक्रम में आगे बात करेंगे। और अब अगर इस तरह के कुछ स्टेप्स उठाए जा रहे हैं तो वो सही हैं या गलत हैं, ये आप हमें फ़ोन कॉल करके भी बता सकते हैं, बोल सकते हैं, अपना जो मत है वो रख सकते हैं। हम तो आपको ये जानकारी यहाँ से दे रहे हैं। हम ना किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ हैं, मतलब ना पक्ष में हैं ना विपक्ष में हैं, क्योंकि ये रेडियो है और रेडियो से सही सटीक जानकारी आप लोगों तक पहुँचना बहुत ज़रूरी है। और अब चलेंगे हम एक और गीत

दोस्तों, कैसा लगा आपको ये गीत? जिंदगी आ रहा हूँ मैं, और जिंदगी की ही बात करनी है अभी हमें कार्यक्रम में। 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ आप हैं।

नहीं, मेरा नाम है ज्योति पठानिया, जिसके साथ आप सुन रहे हैं ये कार्यक्रम। जी आज के लिए आपकी रेडियो होस्ट हूँ। पीछे जो म्यूजिक चल रहा है उस पर मत जाइए ना, आपको याद होना चाहिए मेरा नाम। श्रोताओं, तो मैंने आपसे कहा था कि विश्व हेपेटाइटिस डे है आज। तो जब दोस्तों गाड़ी की सर्विसिंग समय पर ना हो तो इंजन बैठ जाता है, और वैसे ही अगर हमारे शरीर के इंजन यानी लीवर का ख्याल ना रखा जाए तो जिंदगी की गाड़ी रुक सकती है। तो अगले कुछ समय तक हम जानेंगे कि कैसे एक छोटी सी लापरवाही इस साइलेंट किलर को दावत देती है, यानी कि हेपेटाइटिस को। तो कार्यक्रम के साथ साथ हम जिंदगी की बातें भी कर रहे हैं। कोई भी बीमारी हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, जिंदगी तो चलती ही रहती है ना, तो जिंदगी की बात तो हमेशा ही होनी चाहिए।

डियर जिंदगी फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना, जसलीन रॉय और अमित त्रिवेदी की आवाजें थी। तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं इस समय हेपेटाइटिस की। बहुत से लोग सोचते हैं कि ये सिर्फ पीलिया यानी जॉन्डिस है, लेकिन सच तो ये है कि हेपेटाइटिस लीवर की सूजन है जो वायरस की वजह से होता है, और इसके 5 प्रकार होते हैं, ए, बी, सी, डी और ई। इनमें से बी और सी सबसे खतरनाक होते हैं, जो धीरे धीरे लीवर को ख़त्म कर देते हैं। चौंकिए मत, क्योंकि सावधानी ही इसका सबसे बड़ा इलाज है।

91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ आप बने हुए हैं और कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड इवनिंग धर्मशाला। तो आज विश्व हेपेटाइटिस डे पर हम बात कर रहे हैं हेपेटाइटिस यानी अपने हेपेटाइटिस रोग के बारे में, अपने लीवर को बचाने के बारे में। तो दोस्तों, हेपेटाइटिस को साइलेंट किलर क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके लक्षण सालों तक दिखते ही नहीं, और जब लीवर 80% तक खराब हो जाता है ना, तभी पता चलता है। लेकिन कुछ शुरुआती संकेत फिर भी हमें मिलते हैं, जैसे लगातार थकान रहना, हल्का सा बुखार, उल्टी आना, गहरे रंग का पेशाब और आंखों का पीलापन। हेपेटाइटिस ए और ई दूषित पानी और खाने से फैलता है, जबकि बी और सी संक्रमित खून या फिर सुई निडल के प्रयोग से। तो अगली बार जब टैटू बनवाएं या फिर डॉक्टर के पास जाएं, तो नई सुई का ध्यान जरूर रखिएगा।

जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल श्रोताओं, ये बात सच है कि मौत तो आनी है, आएगी एक दिन, और जान जानी है, जाएगी एक दिन। लेकिन जब तक हम जीवित हैं तब तक हम स्वस्थ तो रहें, ताकि हम जिंदगी को इसी तरह से हंसते खेलते एंजॉय कर सकें। 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला। इस समय कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं हेपेटाइटिस की। तो इस म्यूजिकल ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। चलिए एक बात बताते हैं आपको, ये छोटा सा गेम ही है, सच या झूठ। लोग सोचते हैं कि हेपेटाइटिस छूने या फिर साथ खाने से फैलता है। ये बिल्कुल झूठ है, क्योंकि ये कोई छुआछूत की बीमारी नहीं है। इसीलिए मरीजों से भेदभाव ना करें, उन्हें आपके साथ और प्यार की जरूरत है। और इस साल की थीम भी यही कहती है कि हमें बिना देर किए उसके इलाज और जांच को हर इंसान तक पहुंचाना है। बाहर का खुला पानी पीने से बचें और घर में भी स्वच्छता रखें।

और जैसे श्रोताओं वक्त पंख लगाकर उड़ता रहता है ना, वैसे ही ये वक्त भी उड़ता चला जा रहा है और हमें क्योंकि दूसरा टॉपिक भी पकड़ना है, इसलिए अब आपसे गुजारिश ये कि अगर कहीं आपको कभी भी ये लगे कि आप भी इस तरह की किसी भी समस्या का शिकार हो रहे हैं तो अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं, लीवर की जांच करवाएं, सुरक्षित रहें, खुद भी जागिए और उनको भी जगाइए। डॉक्टर से बेहतर कोई जान नहीं सकता है कि आप में क्या प्रॉब्लम है, क्या समस्या, आखिर आपकी जो लीवर की प्रॉब्लम है, समस्या है, वो कहाँ तक पहुँची। तो फिर किसका कर रहे हैं आप इंतज़ार।

मैं हूं ना, फिल्म गई गीत अभी आपने सुना। FM रेडियो गुंजन धर्मशाला से आप सभी सुन रहे हैं कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला, और मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। और अब ये जो हेल्थ का टॉपिक था ना, इसको हम अभी थोड़ा सा किनारे रखते हैं। अब हम बात करते हैं उन छात्रों के बारे में जो कि बैठे थे जंतर मंतर पर। अब केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि भले ही वो शांतिपूर्ण छात्रों पर से मुकदमे वापस ले रही है, लेकिन जो लोग कैमरों में हिंसा करते, पत्थर फेंकते या फिर पुलिसकर्मियों पर हमला करते दिखे हैं, उनके खिलाफ FIR वापस नहीं ली जाएगी, उन पर सख्त कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी। तो आपका क्या सोचना है इस बारे में? क्या आप भी तो वहाँ पर बैठ करके सुन रहे होंगे कार्यक्रम, तो कुछ सोच रहे होंगे कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या होना चाहिए, क्या ये जो हो रहा है वो सही है? जो भी आपकी राय हो आप रख सकते हैं, हमारे साथ बात कर सकते हैं 7018111 7091 पर। पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा क्योंकि अभी समाचारों का वक्त भी होने वाला है। मतलब अगर आपको कॉल करनी हो तो उससे पहले आप कर सकते हैं और अपनी बात रख सकते हैं, उसके फिर बाद आपको समय मिलेगा 7:05 पर। अब देखिए, जो गालियों का जिक्र हुआ है वहाँ पर, इस तरह की अभद्र भाषा वहाँ पर यूज़ हुई है, उन सभी पर कानूनी शिकंजा कसा जा रहा है। अगर मैं अखबार की बात करूँ तो द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक बेंगलुरु पुलिस ने इंस्टाग्राम पर प्रधानमंत्री के खिलाफ अत्यधिक आपत्तिजनक और भद्दे शब्द लिखने वाले एक यूज़र, जिसकी पहचान हडसन के रूप में हुई है, उसके खिलाफ IT एक्ट और मानहानि की धाराओं के तहत खुद ही संज्ञान लेते हुए FIR दर्ज कर दी है।

अनगुच लोगों द्वारा विवादित नारे लगाने और भड़काऊ पोस्टर लहराने के मामले में भी पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता BNS की धारा 192 के तहत दंगा भड़काने के इरादे से उकसाना कहते हैं इसको के तहत मामला दर्ज करके आरोपियों की पहचान शुरू कर दी है। श्रोताओं, आपको याद होगा कि शायद हमने कुछ दिनों पहले इसी विषय पर एक कार्यक्रम भी किया था रूमा के साथ, और उनसे हमने बात की थी कि कोई हमारे देश की संपत्ति को, चाहे वो युवा हो या कोई भी हो, जो सरकारी संपत्ति को या व्यक्तिगत संपत्तियों को जो भी नुकसान पहुंचाता है, चाहे किसी भी कारण से कोई एजिटेशन हो रहा है या कुछ भी हो रहा है, तो उसमें क्या कानूनी प्रावधान है, तो वहाँ पर भी हमने ये बात जानी थी। शायद आपको याद हो अगर आपने कार्यक्रम सुना हो तो।

चलिए इस बारे में कार्यक्रम में आगे भी बात करेंगे, अभी बहुत वक्त है हमारे पास। फिलहाल एक गीत और सुन लेते हैं। अब ये जो गीत आ रहा है ये भी युवा शक्ति से संबंधित ही गीत है। देखिए, इतनी शक्ति तो हमारे में होनी चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है हम उसकी पहचान कर सकें, और अगर आप में नहीं है तो प्रभु से उतनी शक्ति मांगिए।

अंकुश फिल्म का गीत आपने सुना पुष्पा पागधरे और सुषमा श्रेष्ठ की आवाजों में। और अभी इस गीत के साथ हम चलेंगे हिंदी समाचारों की ओर, जिसे रिले किया जाएगा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पर लोकसभा में चर्चा हो रही है। ये विधेयक लोक परीक्षा अधिनियम 2024 में संशोधन के लिए लाया गया है। विधेयक में 10 वर्ष तक की कैद, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और दोषी पाए गए अपराधियों की संपत्ति की जब्ती के कठोर दंड शामिल हैं। मामलों का शीघ्र निपटान सुनिश्चित करने के लिए विधेयक में प्रत्येक राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश में दैनिक सुनवाई के लिए विशेष त्वरित न्यायालय स्थापित करने का प्रावधान है। अपराधों की जांच पुलिस स्टेशन में सूचना दर्ज होने की तिथि से 2 महीने के भीतर पूरी की जानी चाहिए। अभियोग पत्र दाखिल होने की तिथि से 3 महीने के भीतर मुकदमे समाप्त किए जाने चाहिए। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि नया विधेयक देश के विद्यार्थियों और युवाओं के कल्याण की रक्षा के लिए सरकार की गहरी प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। उन्होंने कहा कि ये विधेयक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश के युवाओं के भविष्य से कोई समझौता न होने देने के संकल्प की पुष्टि करता है। सर्वोच्च न्यायालय ने गैर आपराधिक रिकॉर्ड वाले 18 वर्ष से कम आयु के प्रदर्शनकारी छात्रों को रिहा करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने अधिकारियों को नीट परीक्षा पेपर लीक के विरोध में हुए हालिया राष्ट्रव्यापी प्रदर्शनों से संबंधित इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल साक्ष्यों को सुनिश्चित रखने का भी निर्देश दिया। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि पिछले सप्ताह हुए प्रदर्शनों के दौरान छात्रों और पुलिस अधिकारियों को लगी चोट के आरोपों की निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच आवश्यक है। सरकार ने इस साल 1 अगस्त से 30 नवंबर तक देशभर के चीनी व्यापारियों पर भंडारण सीमा लागू करने का निर्णय लिया है। इसका उद्देश्य जमाखोरी और सट्टेबाजी को रोकना तथा उचित मूल्य पर चीनी की लगातार उपलब्धता को सुनिश्चित करना है। सभी व्यापारियों को अपने पास उपलब्ध चीनी के भंडार की घोषणा करनी होगी और खाद्य तथा सार्वजनिक वितरण विभाग के ऑनलाइन पोर्टल पर हर सप्ताह स्टॉक को अपडेट करना होगा। भारत ने पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में कराए जा रहे तथाकथित विधानसभा चुनावों को पाकिस्तान द्वारा अपने अवैध कब्जे और क्षेत्र में मानवाधिकारों के गंभीर उल्लंघन को छिपाने का प्रयास बताया है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने ये बात कही।
1: हमने पाक अधिकृत कश्मीर में सो कॉल्ड इलेक्शंस के बारे में खबरें देखी है। इस मसले पर भारत का पक्ष साफ और निरंतर रहा है। जम्मू कश्मीर लद्दाख जो कि केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनका पूरा भूभाग भारत का अभिन्न और अविच्छेद्य अंग है। वहां चल रहे लीपा पोती वाले इलेक्शन पाकिस्तान द्वारा जम्मू कश्मीर का अपने अवैध कब्जा और वहाँ के लोगों का मानव अधिकार का हनन को छिपाने का प्रयास है।
0: भारत की पहली सीधी वाणिज्यिक कंटेनर मालवाहक रेलगाड़ी नेपाल पहुंच गई है। इस रेल आधारित सीमा पार माल ढुलाई में एक नया अध्याय शुरू हो गया है। कैनोला की खेप ले जा रही 40 वैगनों वाली इस रेलगाड़ी ने संशोधित भारत नेपाल रेल पारगमन प्रोटोकॉल के तहत अपनी यात्रा पूरी की है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग को निर्देश दिया है कि स्कूल के शिक्षकों को सौंपे गए चुनाव संबंधी कार्य को असहनीय बोझ न डालें। न्यायालय ने कहा कि आयोग की संवैधानिक शक्तियों का प्रयोग कक्षा शिक्षण को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किए बिना किया जाना चाहिए। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP के अनुसार इस वर्ष जून में भारत के औद्योगिक उत्पादन में सालाना आधार पर 7.3% की वृद्धि हुई। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने कहा है कि जून महीने में सभी 4 बड़े क्षेत्रों में सकारात्मक वृद्धि देखी गई है। चीन में ISF निशानेबाजी विश्व कप में सोनम उत्तम मस्कर और हिमांशु ढिल्लों ने कांस्य पदक जीत लिया है। उन्होंने 10 मीटर एयर राइफल मिक्स टीम स्पर्धा में ये पदक हासिल किया। पदक तालिका में भारत 1 स्वर्ण, 1 रजत और 2 कांस्य पदकों के साथ तीसरे स्थान पर है। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों की तैराकी स्पर्धा में श्रीहरि नटराज ने सेमीफाइनल में अपनी जगह बना ली है। श्रीहरि नटराज ने 100 मीटर बैकस्ट्रोक तैराकी में 13वें स्थान पर रहते हुए अगले दौर में प्रवेश किया। सेमीफाइनल देर रात खेला जाएगा। और इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

जी श्रोताओं, 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला से हम बोल रहे हैं और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला। आपका एक बार फिर से स्वागत है आप सभी के अपने कार्यक्रम में। समाचारों में बहुत सारी जानकारियां आपको मिल गई होंगी और बहुत सारी जो बाकी हैं वो हम यहां से दे देंगे आपको। चलिए आपको बता देते हैं कि मेरा भारत केंद्र द्वारा नशा मुक्त युवा अभियान के अंतर्गत जिला स्तरीय विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन कॉलेज ऑडिटोरियम में किया गया और इन प्रतियोगिताओं में नुक्कड़ नाटक, समूह और एकल गायन, रील मेकिंग, स्लोगन लेखन, पेंटिंग, वाद विवाद, डेक्लेमेशन, संगीत और नृत्य सहित अनेक रचनात्मक विधाओं के माध्यम से युवाओं को नशा मुक्त समाज के निर्माण का संदेश देने का प्रयास किया गया। और इसके बारे में ज़्यादा जानकारी हम थोड़ी देर के बाद देंगे आपको। फिलहाल आपसे फिर वही बात करते हैं कि ये जो प्रदर्शन में चीज़ें हुई, क्या वो सही थी? अब कुछ लोग कहेंगे कि हाँ सही थी, क्योंकि हार्ड हिट होकर के ही अपनी बातें जो हैं वो मनवाई जाती हैं, लेकिन नहीं, अपनी भाषा पर होता है। या घर में भी अगर आपको अपनी बात मनवानी हो तो इसी तरह से तोड़ फोड़ और सामान इधर उधर फेंक करके हुड़दंग मचा करके मनवाई जाती है क्या? युवा शक्ति को दिखाना था कि उनके पास भरपूर एनर्जी है, जो कि उन्होंने बहुत अच्छे से दिखाया। कई युवाओं ने तो बहुत शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया और खुद खा रहे थे। अगर उनको खाना आ रहा था तो वो सामने जो हमारे सिपाही खड़े थे, चाहे वो पुलिस वाले हों या कोई और हो, तो कम से कम उनको भी पूछ रहे थे ताकि पेट सभी का भरा रहे। पानी भी उनको पूछा जा रहा था। लेकिन जैसा कि मैंने कारगिल डे वाले दिन कहा था आपको कि बीच में कुछ लोग होते हैं जो भीड़ का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं, और उन्होंने बहुत अच्छे से अपना वो काम किया।

और श्रोताओं, फिर से एक बार कह देती हूँ आपको कि अगर आप इनमें से किसी भी बात पर बात करना चाहें तो 7018111701 हमारे स्टूडियो का फ़ोन नंबर है।

सिर्फ तुम इस फिल्म का गीत आपने सुना 91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला से।

0: और श्रोताओं, जैसा कि हमने कहा था आपसे कि फ़ोन हमें कर सकते हैं आप, तो हमें एक श्रोता फ़ोन कर रहे हैं। जानते हैं कौन है वो, कहां से बोल रहे हैं और आज के किस विषय पर वो बात करना चाहते हैं हमसे। तो हम आज तीन विषयों पे बात कर रहे हैं। एक तो विश्व हेपेटाइटिस डे पर, और साथ ही में विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस पर, और साथ में जो युवा वहाँ बैठे थे जंतर मंतर पर और उन पर अब जो रीज आ रही हैं आफ्टर आंदोलन, उस पर क्या कहना है। जी हेलो हेलो हेलो जी, आपकी आवाज़ मुझे सुनाई नहीं दे रही है। हेलो
1: नमस्कार।
0: हाँ जी नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
1: मैम मैं इंदु बोल रही हूँ सिद्धवाड़ी से।
0: अच्छा जी इंदु जी, कैसे हैं आप?
1: ठीक है मैम, आप बताइए।
0: मैं भी ठीक हूँ। आप बताएं कि कौन से विषय पर बात करना चाहते हैं आप?
1: मैम ये जो हमारे युवाओं के ऊपर जो बात होती है, मैं उसी के विषय में बात करना चाहती हूँ।
0: जी जी बताएं।
1: जैसे मैम वो तो ठीक है, उन्होंने अभद्र भाषा का ये किया, उपयोग किया, वो तो गलत चीज थी, क्योंकि कुछ सही बातों के लिए भी चाहते और कुछ होते हैं जो हुड़दंग मचाने वाले भी होते बीच में। बट मुझे लगता है कि जैसे अगर जैसे बच्चे शांति पूर्वक वो अपने कर रहे थे जंतर मंतर नदियों हुआ था, अगर वैसे मतलब सरकार भी हमारा उन बच्चों का साथ देती
0: जी
1: तो ये सब होता नहीं शायद।
0: सरकार अगर समय से दे देती ना उस बात पर, तो हमने पहले भी इस ये बात की है,
1: तो शायद ये बच्चे मतलब अभद्र भाषा पर ना आते।
0: हाँ, क्योंकि बहुत समय।
1: हाँ जी, क्योंकि पुलिस वालों ने भी तो गलत करा, कई लड़कियों के साथ बदतमीजी करी हुई है।
0: कुछ वीडियोस ऐसी भी आ रही हैं कि हमारे युवाओं ने भी कुछ मारपीट की हुई है वहां पर, तो हुआ तो दोनों ही तरफ से
1: है, पर युवाओं ने बाद में करी, पहले पुलिस वालों ने बड़ी बड़ी हद कर दी थी बाहर, वो तो तब जाके हमारे युवा को उनको गुस्सा आया, लेकिन पहले वो सारा शांतिपूर्वक ही हो रहा था।
0: जी अच्छा ठीक है, अपना अपना मत है, सभी का अपना मत रखने में कोई हर्ज नहीं है बिल्कुल। तो आपको ऐसा लगता है? चलिए ठीक है, आप युवाओं का साथ दे रहे हैं, मतलब यहाँ पर बैठ करके भी आप जा नहीं पाए फिर भी दे रहे हैं, ये अच्छी बात है। और आप अपने तरीके से सोच रहे हैं, शायद हो सकता है कोई और लिसनर जो है वो किसी और तरीके से सोच रहा हो।
1: अपने अपने देखने का नजरिया है, अपने अपनी सोच समझ है, लेकिन जहाँ तक मैंने यही चीज नोटिस करी कि इतनी वीडियो की, पहले बच्चों ने कुछ भी नहीं करा है, पहल जो हुई है वो सरकार और पुलिस वालों की तरफ से हुई है, तभी जाके, क्योंकि जब नीट का पेपर लीक हुआ तो इसमें इसमें सरकार की जिम्मेवारी नहीं है, क्योंकि जब इतनी पुलिस फोर्स बाद में बच्चों को मारने में और उठपटांग ये हरकतें करवाने में करी तो लगा दी, तो पहले क्यों नहीं लगवा सकते थे? ये
0: पुलिस फोर्स तो नहीं, पर हाँ अगर बात टाइमली सुन ली जाती तो इतना ज़्यादा ये नहीं
1: होता, इशू होता ही नहीं इतना बड़ा।
0: जी जी बिल्कुल, लेकिन हमारे युवाओं को ये भी तो समझना चाहिए ना कि अगर वो इस तरह की चीज़ें करते हैं तो उनके ऊपर बहुत सारी गाज गिर सकती है, जैसे कि अब अगर वो विदेश में पढ़ाई करने जाएंगे तो शायद हो सकता है कि उनका पासपोर्ट उन भी ना मिले उन्हें, है ना, बहुत कुछ हो सकता है। तो युवाओं को थोड़ा अपना भविष्य के बारे में भी सोचना चाहिए। शांतिपूर्वक प्रदर्शन ठीक था, परंतु चाहे कुछ भी हो जाता उन्हें इस तरह की अभद्र भाषा तो नहीं करनी चाहिए थी।
1: हाँ जी वो तो है, पर शायद उनको इस टाइम वो उस पर भी
0: गुस्सा आया था,
1: लड़कियों के साथ बदतमीजी करी वहां पर भी गुस्सा आया उनको, और उन्होंने मारा भी, लाठी चार्ज भी बड़ी बुरी तरह किया, कितने बच्चे घायलों के पांव टूट गए, कईयों के टांगे टूट गई है ना, ये ऐसा हुआ तभी जाके बच्चे आक्रोश में आए,
0: और कई बच्चे तो अपने घर में बिना बताए भी आए थे, माता पिता को बताया ही नहीं था।
1: जी जी
0: चलिए ठीक है इंदु जी, आपने अपना मत रखा, हमें इस बात की खुशी है कि कम से कम आप लोग रेडियो सुनते हैं और बात करते हैं।
1: जी मैम, सुनते हुए मैं तो सबको बोलती हूँ रेडियो सुनना चाहिए, क्योंकि मैम मेरा एक मतलब मेरा सोचना है ये कि मैं जैसे हम टीवी देखते हैं ना,
0: जी
1: तो मुझे ऐसा लगता है, बाकी मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि किसी जो सुन रहे हैं मेरी बात का बुरा, मैं किसी को टारगेट नहीं कर रही हूँ, बट
0: जी
1: मुझे ऐसा लगता है कि जैसे जो रेडियो में सीरियल देखते हैं वहां से जो खिचड़ी पकती है उसमें वो हमारे दिमाग में भी अगर वो सब देखते हैं तो हमारे दिमाग में वही सब चलता है,
0: जी
1: तो उसकी बजाय अच्छा है कि आप रेडियो सुनो ना, इससे टाइम वेस्ट होता है हमारा, वो हम मोटिवेट रहते हैं हमेशा ही।
0: चलिए, ये तो आपने युवाओं के साथ साथ में रेडियो की भी बात कर दी। बहुत बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और इसी तरह से रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ बने रहिएगा, और भविष्य में भी हमें फ़ोन करते रहिएगा, जब भी कभी आपको लगे कि जिस विषय पर आप बात करना चाहें तो ज़रूर जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।
1: धन्यवाद।
0: ओके।

तो श्रोताओं, ये था इंदु जी का मत, जिन्होंने अभी अभी हमसे फोन कॉल पर बात की है। तो दोस्तों, हम ये कहना चाहते हैं कि लोकतंत्र में अपनी आवाज़ उठाना, अपने हक के लिए लड़ना हर नागरिक का अधिकार है। हाल ही में अभी अभी जो जंतर मंतर पर हमारे देश के युवाओं और बच्चों ने परीक्षा में पारदर्शिता को लेकर के प्रदर्शन किया, उनकी मांगें और उनकी परेशानियां तो 100% जायज़ थी। और जब देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ होता है तो गुस्सा आना लाजमी है, जैसे कि हमें अभी श्रोता ने कहा भी। परंतु इसी भीड़ के बीच में कुछ ऐसी तस्वीरें और वीडियोस भी सामने आए हैं जिनसे देख करके दिल दुखी होता है। और फिर से हम ये कह रहे हैं कि भीड़ किसी की सगी नहीं होती, कौन उसमें से उठ करके क्या मंजा लेकर के आया है हमें ये भी नहीं पता होता। कुछ लोग जो शायद छात्र थे भी या नहीं भी, तो वहाँ आकर के प्रशासन को, पुलिस को और देश के प्रधानमंत्री जी को भी बहुत बहुत गलत बातें कह रहे थे। तो दोस्तों, गुस्सा जताने के लिए गालियों की ज़रूरत नहीं होती है। जब हम किसी सार्वजनिक मंच पर खड़े होकर के अपशब्द बोलते हैं ना, तो हम व्यवस्था को नहीं बदलते बल्कि अपनी परवरिश का स्तर भी दुनिया को दिखाते हैं। और हमारी संस्कृति और हमारे संस्कार हमें मर्यादा में रह करके ही लड़ना सिखाते हैं। तो जब आंदोलन में भाषा गंदी हो जाती है तो जो आंदोलन की असली और पवित्र मांग होती है वो पीछे छूट जाती है। जैसे कि बहुत सारे लोग जो अपोज हो गए थे वो ये कह रहे थे कि जिस चीज़ के लिए आंदोलन था वो बात तो कहीं बीच में दिखाई ही नहीं देती। तो ये जो खुराफाती लोग होते हैं वो सुर्खियां बटोर करके ले जाते हैं, जैसे कि बहुत सारे लोग इस आंदोलन में वायरल भी हुए। तो हम ये कहेंगे, हक के लिए बिल्कुल अड़िए, लेकिन अपनी ज़ुबान और अपने संस्कारों की मर्यादा मत भूलिए, क्योंकि आपकी भाषा ही आपकी पहचान है।

0: जो गीत आपने आप अभी इस समय सुन रहे हैं, ये लाइनें सिर्फ दर्द नहीं बल्कि एक चेतावनी और आत्मसम्मान को भी दर्शाती हैं। ये उस मोड़ को बयां करती हैं जहां इंसान प्यार में सब कुछ सहने के बाद अचानक खड़ा हो उठता है और कहता है कि बस अब बहुत हुआ, मेरा दिल कोई खिलौना नहीं है जिसे आप अपनी मर्जी से इस्तेमाल कर रहे हैं। ये धोखे के खिलाफ एक मजबूत आवाज़ है।
1: यादों के मकान में वो छुपके अब और ना रहे।
0: आज के दौर के रिश्तों की कड़वी सच्चाई को दिखाता है ये गीत। जब कोई इंसान किसी के इमोशंस का अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करता है तो टूटने वाले पर क्या गुजरती है।
1: से जाके कह दो इस दिल को इस्तेमाल ना करे।
0: क्योंकि हर दूसरा इंसान कभी ना कभी किसी न किसी मोड़ पर रिश्तों में इस्तेमाल हुआ सा महसूस करता ही है।

0: तो दोस्तों, हम अक्सर किसी के प्यार में इस कदर खो जाते हैं कि हमें सही और गलत का फर्क नजर ही नहीं आता। हम अपना सब कुछ सौंप देते हैं।
1: रेत पे है उससे ही दीवार ना भरे।
0: लेकिन जब सामने वाला हमारे जज्बातों को सिर्फ अपनी सहूलियत के हिसाब से इस्तेमाल करने लगता है ना, तब दिल से एक चीख निकलती है।

और अगर मैं आपको बताऊं कि ये गीत गाया किसने है तो उनका नाम है जस्त। और ये गीत किसी भी फिल्म का गीत नहीं है बल्कि एक स्ट्रेट गाना है, एल्बम से है।

और दोस्तों अब बात करेंगे हम विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस की। तो खिड़की से आती ताजी हवा, वो बारिश की पहली बूंदें और पहाड़ों की वो भीनी भीनी खुशबू कितना सुकून देती है ना।

0: जी, तो आज का जो दिन है उस कुदरत को थैंक यू कहने का है जिसने हमें मुफ्त में तो सब कुछ दिया है, लेकिन हम उसे क्या दे रहे हैं इस पर विचार करना है हमें अभी। तो अब जो थोड़ा सा समय हमें हमारे पास बचा है ना, हम बात करेंगे अपनी कुदरत की, प्रकृति की, कैसे संरक्षित हम कर सकते हैं इस प्रकृति को।
1: नदिया का पानी दरिया से मिलके,
0: तो अपनी इस खूबसूरत धरती को बचाने के लिए छोटे छोटे तरीकों पर हम बात करेंगे।

दोस्तों, कभी सोचा है आपने कि मई जून की गर्मी अब मार्च से ही क्यों शुरू हो जाती है? क्यों कभी अचानक सूखा पड़ता है और कभी बाढ़ आ जाती है? क्योंकि हम ही हैं जिन्होंने प्रकृति के संतुलन को बिगाड़ दिया है। हम पेड़ काट रहे हैं, कंक्रीट के जंगल बना रहे हैं। विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस सिर्फ एक तारीख नहीं है, एक अलार्म भी है कि अगर अभी भी हम नहीं जागे तो आने वाली पीढ़ी को शुद्ध हवा, पानी और नहीं मिलेगा, सिर्फ किताबों में मिलेगा।

0: चिनीले पर्वतों की धारा आई ढूंढने की नारा, सबको सहारा चाहिए। और श्रोताओं, थोड़ी सी जमीन और थोड़ा आसमान रहे तो फिर कैसा हो।
1: थोड़ी सी जमीन,
0: लोग तो आजकल अपने घर जो हैं वो कंक्रीट और पता नहीं किस किस चीज़ के बना रहे हैं, लेकिन कुछ लोग जो हैं समझदार वो वापस लौट रहे हैं प्रकृति की तरफ। जितना प्रकृति के साथ मिलजुल करके रहोगे ना, आपको प्रकृति उतना ही लौटाएगी। एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ आपको। वैसे भी हमारी इस प्रोग्राम में शाम के वक्त संध्याकालीन सभा में एक स्टोरी का सेक्शन तो होता ही है। तो चलिए, थोड़ी सा समय हमारे पास है, बीच में कहानी भी सुन लेते हैं। असम बाढ़ की दिल दहला देने वाली ये कहानी है, जब चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी था। अभी असम में बाढ़ आई थी ना कुछ दिन पहले, पता ही है आपको। तब एक माँ ने अपने बेटे की जान बचाने के लिए पूरी रात एक पेड़ की शाखा पर बिताई। न खाने को कुछ था, न पीने को पानी, न ही किसी मदद की उम्मीद। और ये सच्ची कहानी है दोस्तों। असम के शिवसागर जिले की रहने वाली रेखा मोनी गोगोई ने अपने छोटे बेटे को सीने से लगाकर लगभग 12 घंटे तक मौत से जंग लड़ी। और शादी के 12 साल बाद मिले अपने इस इकलौते बेटे को बचाने के लिए उन्होंने हार नहीं मानी। इस दौरान मासूम ने भूख से तड़पते हुए कहा कि माँ, अगर कुछ नहीं है तो हम पेड़ के पत्ते ही खा लेते हैं। और दोस्तों, सुबह SDRF की टीम ने माँ बेटे समेत अन्य महिलाओं को भी सुरक्षित बचा लिया। ये घटना सिर्फ बाढ़ की त्रासदी नहीं है, बल्कि एक माँ के अटूट साहस, ममता और हिम्मत की मिसाल बन गई। इस माँ के साहस को तो सलाम है ही, लेकिन अब हम यही ये कहेंगे कि माँ से बढ़कर तो कोई योद्धा होता नहीं है। आज दो माएँ हमारी स्टूडियो में भी आई थी, इंदु जी और साथ में माया देवी, उनसे भी हमने बात की है, उनका कार्यक्रम हमने रिकॉर्ड किया है। और वो ऐसे बच्चों की माएँ हैं जो कि दिव्यांग हैं, और दोनों अपने बच्चों को किस तरह से संभाल रही हैं और समाज के प्रति उनका क्या संदेश है वो भी सुनिएगा। कार्यक्रम हमारा विशेष कार्यक्रम आएगा, लेकिन यहाँ पर हम ये भी कहना चाहते हैं इस कहानी के साथ साथ कि देखिए, अगर पेड़ ना होते तो वो कहाँ पर अपना आश्रय लेते। प्रकृति हमसे कुछ नहीं लेती है, बल्कि हमें देती ही है। इसीलिए आज विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस पर हमें ये समझना ज़रूरी है कि हमें आखिर किस ओर जाना है। हमें प्रकृति के साथ मिलकर के रहना है या हमें प्रकृति की बर्बादी करनी है। अभी भी हमारे देश में कहीं कहीं पर बहुत सारे पेड़ काटे जा रहे हैं।

और जब जल की बात हो रही है तो जल की बात भी हम कर ही लेते हैं। हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, लेकिन क्या सच में हम पानी बचाते हैं? कहते हैं ना पानी बचाओ पानी बचाओ, बचाते हैं क्या? आप कहेंगे क्या बचाएं भाई, बहुत पानी बरस रहा है। वो पानी नहीं, पीने वाला पानी। ब्रश करते समय नल खुला छोड़ना, गाड़ी धोने में पाइप का अंधाधुंध इस्तेमाल करना, ये छोटी छोटी आदतें पानी का जो संकट है ना उसे बढ़ा रही हैं।

हम भी चाहते हैं कि हमारे घर के आंगन में भी एक छोटा सा झूला हो और सौंधी सौंधी मिट्टी हो, लिपा हुआ चूल्हा हो, लेकिन क्या हम इसको साकार कर पाते हैं? गांव में तो अभी भी कहीं कहीं पर ऐसा है भाई, और लोग जो है अपने घर के में एक किचन, पक्की किचन के अलावा एक कच्ची किचन भी रखते हैं, क्योंकि उन्हें आदत है वहीं पर काम करते हैं।

सितारा फिल्म का ये गीत आपने सुना 91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला से। और अब हम रुकने वाले बिल्कुल भी नहीं हैं जी, हम चलते ही रहेंगे और आपसे बातचीत करते ही रहेंगे। इस शो में आपकी होस्ट हूँ मैं, आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। तो श्रोता, हम बात कर ले रहे हैं प्लास्टिक की, जो कि कभी भी नष्ट नहीं होता। हमारे समुद्र, हमारी नदियाँ, हमारी मिट्टी सब प्लास्टिक से घुट रहे हैं। तो जब भी कभी बाजार जाएं, घर से कपड़े का थैला साथ ले जाना शुरू करें। वैसे आप सभी लोग करते भी हैं, हमें पता है, परंतु जो नहीं भी करते वो भी शुरू कर दीजिए। एक छोटा सा थैला करोड़ों टन प्लास्टिक कचरे को रोक सकता है।

श्रोताओं, हूँ जाते जाते अब आपका ये रेडियो होस्ट आपको पांच बीज मंत्र देकर जाएगा। पहला, बिजली बचाएं। दूसरा, पानी बर्बाद न करें। तीसरा, प्लास्टिक को ना कहें। चौथा, कागज का इस्तेमाल कम करें। और पांचवा, अपने जन्मदिन पर एक पौधा जरूर लगाएं। और हमने आज अपने श्रोताओं को ये नहीं कहा कि उन सभी श्रोताओं को बहुत मुबारक जो कि किसी न किसी खास वजह से अपना कोई ना कोई दिवस मना रहे हैं। तो फिर मेरे साथ शपथ लीजिए रेडियो गुंजन धर्मशाला से कि हम अपनी धरती का ख्याल रखेंगे। अभी मैं नहीं जा रही हूँ भाई, यही हूँ। आपको कार्यक्रम का आखिरी गीत भी सुनवा के ही जाऊंगी। लेकिन फिलहाल अब समय होने वाला है प्रादेशिक समाचारों का, जिसके लिए हमें चलना होगा आकाशवाणी शिमला के स्टूडियो।

0: बंजार विधानसभा क्षेत्र में लगभग 3 करोड़ रुपए की सड़क व पुल परियोजनाओं के किए शिलान्यास। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा, पेपर लीक और भर्ती अनियमितताओं के मामलों में सच्चाई छिपाने का प्रयास कर रही है राज्य सरकार। पठानकोट चंबा राष्ट्रीय राजमार्ग पर लाहड़ में कार के खाई में गिरने से एक ही परिवार के 5 लोगों की मृत्यु। और मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों के दौरान कांगड़ा, मंडी व सिरमौर जिले में भारी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट किया जारी। नाहन उपमंडल में कल सभी शिक्षण संस्थान रहेंगे बंद। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि प्रदेश में CBSE से संबद्ध सरकारी विद्यालय आगामी 5 वर्षों में राज्य के सर्वश्रेष्ठ शिक्षण संस्थानों के रूप में उभरेंगे। शिमला में आज एक निजी स्कूल के स्थापना दिवस समारोह की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रत्येक बच्चे को शिक्षा के समान अवसर प्रदान करना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि इसी उद्देश्य से सरकारी विद्यालयों में पहली कक्षा से अंग्रेजी माध्यम शुरू किया गया है और 156 स्कूलों को CBSE से संबद्ध किया गया है। इसके सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं और सरकारी स्कूलों में 24,000 से अधिक विद्यार्थियों का नामांकन बढ़ा है।
1: स्कूल एजुकेशन पर मेनली फोकस की, गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों में कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस की कमी है। इंग्लिश मीडियम फर्स्ट क्लास से शुरू किए, आज 150 स्कूल्स में हमने CBSE स्टार्ट किया। जो गवर्नमेंट स्कूल के जो ड्रॉप आउट रेशियो है गवर्नमेंट स्कूल में, जो पिछले 3 साल से आप स्टडी कर रहे थे, वो ड्रॉप आउट रेशियो खत्म हो गया। 24,000 ने इस एकेडमिक सेशन में गांव के स्कूल में, विलेजेस स्कूल में उन्होंने एडमिशन लिया।
0: मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए अनेक महत्वपूर्ण सुधार किए हैं और हिमाचल प्रदेश शिक्षा के आदर्श केंद्र के रूप में स्थापित हो रहा है। लोक निर्माण व शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना चरण 4 के तहत प्रदेश में 1500 किलोमीटर सड़कों के निर्माण के लिए 2300 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। कुल्लू जिले के बंजार विधानसभा क्षेत्र में करीब 3 करोड़ रुपए की सड़क व पुल परियोजनाओं के शिलान्यास के बाद आज तरहेड़ा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही। लोक निर्माण मंत्री ने कहा कि सैंज और बंजार घाटी की विभिन्न सड़कों के सुधारीकरण कार्यों के लिए 53 करोड़ रुपए जारी किए जा चुके हैं। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना चरण 4 के तहत बंजार विधानसभा क्षेत्र में लगभग 150 करोड़ रुपए की लागत से 20 नई सड़कों का निर्माण व विस्तार किया जा रहा है।
2: हमेशा से हमारा ये प्रयास रहता है कि जितने भी हमारे दुर्गम क्षेत्र हैं, यहाँ पे रिमोट कनेक्टिविटी बहुत मुश्किल है, वहाँ पे हमारा पूरा फोकस रहता है। तो उस दृष्टि से हमारा जो ये सैंज घाटी है कि यहाँ की बेटर कनेक्टिविटी के लिए हम पूरा प्रयास करेंगे। 53 करोड़ रुपीज जो है वो हमारे रेस्टोरेशन के लिए इस क्षेत्र में दिए गए, जिसमें कई डंगे लगने हैं, कई जगहों पे पैचवर्क होना है।
0: विक्रमादित्य सिंह ने क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए लारजी से सैंज और सैंज न्यूली शागड़ सड़क को मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड घोषित करने की घोषणा भी की। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा है कि बल्क ड्रग पार्क परियोजना के सफल क्रियान्वयन से हिमाचल प्रदेश बल्क ड्रग निर्माण क्षेत्र में एक नई पहचान स्थापित

0: सुखू सरकार पेपर लीक के दोषियों पर कार्रवाई करने के बजाय उन्हें संरक्षण दे रही है, जो प्रदेश के युवाओं के साथ धोखा है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्री नर्सरी शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर अनियमितताएं सामने आने के बाद भर्ती को बीच में रोकना पड़ा, जिससे बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हुई है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि इसी तरह हाल ही में पुलिस भर्ती परीक्षा में हुई नकल के मामले में भी सरकार ने चुप्पी साधी और जाँच को रोक दिया। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने आज चंबा जिला के डलहौजी स्थित पीएम श्री नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेमोरियल राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय का निरीक्षण किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इस विद्यालय को राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूलों में शामिल किया गया है और अब यहां सभी सुविधाएं विकसित करने के लिए 5 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। पठानकोट चंबा राष्ट्रीय राजमार्ग पर बनीखेत के समीप लाहड़ में आज सुबह एक कार के गहरी खाई में गिरने से 5 लोगों की मृत्यु हो गई है। मृतक एक ही परिवार के सदस्य थे और इनमें 3 माह का शिशु भी शामिल है। पुलिस अधीक्षक विजय सकलानी ने बताया कि सभी मृतक भरमौर विधानसभा क्षेत्र की गहरा पंचायत के रहने वाले थे और चंडीगढ़ से घर लौट रहे थे। उन्होंने कहा कि दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है। इस बीच राज्यपाल कविंद्र गुप्ता, मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू, विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने इस दुर्घटना में 5 लोगों की मृत्यु पर गहरा शोक व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने जिला प्रशासन को प्रभावितों को हर संभव सहायता उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए। प्रदेश में मॉनसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है और भारी वर्षा से कुछ स्थानों पर जनजीवन प्रभावित हुआ है। प्रदेश में भारी वर्षा के कारण हुए भूस्खलन से 179 सड़क मार्ग, 62 बिजली ट्रांसफार्मर और 107 पेयजल योजनाएं प्रभावित हैं। चंबा जिले के सुल्तानपुर मोहल्ले में भारी बारिश के कारण लोगों के घरों व दुकानों में बारिश का पानी व मलबा भर गया, जिससे काफी नुकसान हुआ है। विस्तृत ब्यौरा हमारे चंबा जिला संवाददाता से।
1: देर रात 2 बजे शुरू हुई बारिश ने कुछ ही देर में विकराल रूप धारण कर लिया और चंबा जिला के कई इलाकों में फ्लैश फ्लड जैसी स्थिति बन गई। लोगों को भारी बारिश के बीच घरों से बाहर रहकर रात गुजारनी पड़ी। वहीं बारिश के बीच एक कार के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से 5 लोगों की जान चली गई। बात की जाए जिला के वर्तमान हालात की तो इस समय जिला में 100 के करीब सड़कें यातायात के लिए अवरुद्ध है। वहीं 100 से अधिक बिजली ट्रांसफार्मर और 25 पेयजल योजनाएं ठप पड़ी हैं। इन व्यवस्थाओं को बहाल करने में प्रशासन जुटा हुआ है, लेकिन जनजीवन सामान्य होने में अभी समय लगेगा। आकाशवाणी के लिए चंबा से विकास ठाकुर।
0: इस बीच भारी वर्षा की संभावना को देखते हुए नाहन उपमंडल में कल सभी शिक्षण संस्थान बंद रखने के आदेश जारी किए गए हैं। मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों के दौरान कांगड़ा, मंडी और सिरमौर जिलों में भारी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग ने अन्य जिलों में वर्षा का क्रम जारी रहने की संभावना जताई है। भाजपा के वरिष्ठ नेता व पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ने कहा है कि संगठन की सबसे बड़ी पूंजी उसके समर्पित कार्यकर्ता होते हैं। धूमल ने आज समीरपुर स्थित अपने निवास स्थान पर उनसे मिलने आए भाजपा युवा मोर्चा नादौन के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं के एक प्रतिनिधिमंडल को संबोधित करते हुए ये बात कही। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से सेवा, समर्पण और अनुशासन को कार्यशैली का आधार बनाते हुए समाज के प्रत्येक वर्ग तक संगठन की विचारधारा व जन कल्याणकारी नीतियों को प्रभावी ढंग से पहुँचाने का आह्वान किया। हिमाचल प्रदेश बागवानी विभाग को इंटरनेशनल एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर व ऑर्गेनिक एक्सपो 2026 में आधुनिक व वैज्ञानिक बागवानी प्रणाली, फसल विविधीकरण मॉडल व उच्च मूल्य वाली बागवानी फसलों के प्रदर्शन में प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नई दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित 3 दिवसीय एक्सपो में निर्णायक मंडल ने प्रदेश के स्टॉल को नवाचार, प्रस्तुतीकरण तकनीकी जानकारी, फसल विविधीकरण और किसानों के हित में किए जा रहे प्रयासों के आधार पर ये पुरस्कार प्रदान किया। नगर व ग्राम नियोजन मंत्री राजेश धर्माणी ने कहा है कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी आगामी 2-3 अक्टूबर को घुमारवीं का सीर उत्सव आयोजित किया जाएगा। वे आज खंड विकास अधिकारी कार्यालय घुमारवीं में सीर उत्सव आयोजन को लेकर आयोजित बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। धर्माणी ने कहा कि सीर उत्सव में

0: समाज के हर वर्ग की भागीदारी सुनिश्चित बनाने को लेकर विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा, आगामी 5 वर्षों में CBSE स्कूल राज्य के सर्वश्रेष्ठ शिक्षण संस्थानों में होंगे शामिल। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने बंजार विधानसभा क्षेत्र में लगभग 3 करोड़ रुपए की सड़क व पुल परियोजनाओं के किए शिलान्यास। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा, पेपर लीक और भर्ती अनियमितताओं के मामलों में सच्चाई छिपाने का प्रयास कर रही है राज्य सरकार। पठानकोट चंबा राष्ट्रीय राजमार्ग पर लाहड़ में कार के गहरी खाई में गिरने से एक ही परिवार के 5 लोगों की मृत्यु। और मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों के दौरान कांगड़ा, मंडी और सिरमौर जिले में भारी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट किया जारी। नाहन उपमंडल में कल सभी शिक्षण संस्थान रहेंगे बंद। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार।
1: 91.2 MHz रेडियो गुंजन धर्मशाला से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला, और मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। और बस थोड़ा सा समय हमारे पास बचा है, तो श्रोताओं आज हमने बात की है विश्व हेपेटाइटिस डे की, यानी कि अपने स्वास्थ्य के बारे में बात की है, और साथ ही साथ प्रकृति यानी धरती माता और हमारे प्रकृति में जो कुछ भी है उस सभी के स्वास्थ्य की बात भी हमने की है। जी हाँ, विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस पर जो हमने शपथ ली है उसे बिल्कुल भी भूल मत जाइएगा, याद रखिएगा। और अब मैं भी विदा लेती हूँ आपसे। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पेड़ लगाते रहिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। और अगर आपको घूमने फिरने जाना हो तो मिंजर मेले में ज़रूर जाइएगा। अगली बार कार्यक्रम में इस बारे में बात आपसे ज़रूर करूँगी। आज समय नहीं मिला, कोई बात नहीं, बातें करने के लिए हमारे पास और बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं। मैं नहीं करूँगी तो कोई और कर लेगा।

0: बिल्कुल मत बताइएगा क्या बात हुई।
1: मुलाकात हुई क्या बात हुई।
0: चलिए ठीक है फिर, अब हम भी चलते हैं। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।

मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर

आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
1: हर घर सूर्य घर।
2: मुझे लगता है इस दुनिया में सबसे बड़ा दान ना पैसे का है, ना कपड़े का है, ना किसी चीज सामान का है। दुनिया में सबसे बड़ा दान है किसी दुखी को आप अपनी एक बात दे करके उसको खुश कर दो। आप उसके चेहरे पर प्रसन्नता लाओ और आप ऐसा कुछ कर दो जो उसके जीवन के दुख खत्म हो जाए, वो आपको देख करके कुछ समय के लिए भूल जाए कि वो कितना दुख।

0: साइबर फाइनेंशियल फ्रॉड में फंस जाना तो कॉल 1930 पर लगाना। ऑनलाइन होने वाले धोखाधड़ी और साइबर फ्रॉड से पीड़ित होने पर गृह मंत्रालय भारत सरकार की अधिकृत वेबसाइट www.cybercrime.gov.in पर अपनी शिकायत दर्ज कराएं।
1: देख पवन आ गया।
2: पवन वहाँ क्यों बैठा है?
1: तुझे उसे टीबी है। और भाई लास्ट बेंच को मजा अकेले।
3: पता है ना मुझे टीबी है।
1: चल तुझे पता है ना इलाज का असर शुरू होने के बाद टीबी के इन्फेक्शन का डर नहीं रहता। टिफिन में क्या है? टीबी के दवाई के साथ खाना भी अच्छे से लेना है, समझा?
4: अपनों का जोड़ है टीबी का तोड़, तो फिर भेदभाव क्यों? टीबी के इलाज में अपनों का साथ दें।
5: सुनो, तुम्हारे पास 5,000 रुपए पड़े हैं?
6: 5,000? मेरे पास 500 रुपए नहीं है, तुम 5,000 पूछ रहे हो?
5: देख लो कहीं थोड़े बहुत पड़े हो।
6: तुमने दिए कभी जो थोड़े बहुत कहीं पड़े होंगे?
5: किचन के किसी डब्बे वब्बे में छुपाए हो या किसी कपड़े के नीचे?
6: तुम्हें सच में लगता है मैं तुमसे पैसे छुपाती हूँ? अरे नहीं है यार मेरे पास पैसे।
5: कसम खाओ।
6: कसम से मेरे पास 1 रुपया नहीं है।
5: तो फिर ये ड्रेसिंग टेबल के कपड़े के नीचे 5,000 किसने रखा? मेरा ही होगा लगता, रख के भूल जाऊंगा ना। अब तुमने तो कसम खाई है, तुम्हारे तो है नहीं। मेरे ही होंगे इस घर में, और रहते ही कौन है?
7: भारी मिस्टेक हो गया सर।
6: नहीं मतलब तुम्हारे ही होंगे।
8: गजब टूटी बाजा।

मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर

आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका

0: लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
1: हर घर सूर्य घर।
2: मुझे लगता है इस दुनिया में सबसे बड़ा दान ना पैसे का है, ना कपड़े का है, ना किसी चीज सामान का है। दुनिया में सबसे बड़ा दान है किसी दुखी को आप अपनी एक बात देकर के उसको खुश कर दो। आप उसके चेहरे पर प्रसन्नता लाओ और आप ऐसा कुछ कर दो जो उसके जीवन के दुख खत्म हो जाए, वो आपको देख करके कुछ समय के लिए भूल जाए कि वो कितना

0: साइबर फाइनेंशियल फ्रॉड में फंस जाना तो कॉल 1930 पर लगाना। ऑनलाइन होने वाले धोखाधड़ी और साइबर फ्रॉड से पीड़ित होने पर गृह मंत्रालय भारत सरकार की अधिकृत वेबसाइट www.cybercrime.gov.in पर अपनी शिकायत दर्ज कराएं।
1: पवन आ गया।
2: पवन वहाँ क्यों बैठे हैं?
1: पता नहीं उसे टीबी है।
2: और भाई लास्ट बेंच का मजा अकेले।
3: पता है ना मुझे टीबी है।
2: चल तुझे पता है ना इलाज का असर शुरू होने के बाद टीबी के इन्फेक्शन का डर नहीं रहता। टिफिन में क्या है? टीबी के दवाई के साथ खाना भी अच्छे से लेना है, समझा?
4: अपनों का जोड़ है टीबी का तोड़, तो फिर भेदभाव क्यों? टीबी के इलाज में अपनों का साथ दें।
5: सुनो, तुम्हारे पास 5,000 रुपए पड़े हैं?
6: 5,000? मेरे पास 500 रुपए नहीं है। तुम 5,000 पूछ रहे हो?
5: Oh, no. देख लो कहीं थोड़े बहुत पड़े हो।
6: तुमने दिए कभी जो थोड़े बहुत कहीं पड़े होंगे?
5: किचन के किसी डब्बे वब्बे में छुपाए हो या किसी कपड़े के नीचे?
6: तुम्हें सच में लगता है मैं तुमसे पैसे छुपाती हूँ? अरे नहीं है यार मेरे पास पैसे।
5: कसम खाओ।
6: कसम से मेरे पास 1 रुपया नहीं है।
5: तो फिर ये ड्रेसिंग टेबल के कपड़े के नीचे 5,000 किसने रखा? मेरा ही होगा लगता, रख के भूल जाऊंगा ना। अब तुमने तो कसम खाई है, तुम्हारे तो है नहीं। मेरे ही होंगे इस घर में और रहते ही कौन है।
7: भारी मिस्टेक हो गया सर।
6: नहीं मतलब तुम्हारे ही होंगे।
8: गजब टूटी बाजा।

मेरे प्यारे दोस्तों, 91.2 मेगाहर्ट्ज रेडियो गुंजन धर्मशाला से शुरू हो गया है कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने। मैं आज के इस कार्यक्रम में आपके साथ हूँ, आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। तो लीजिए कार्यक्रम का पहला गीत प्रस्तुत करते हैं आपकी नजर।

गीत सुहाने नए पुराने, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं हूँ आपके साथ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया।

श्रोताओं, रेडियो गुंजन धर्मशाला से गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का ये सफर हमारा और आपका यूं ही बना रहे। तो लीजिए, प्रस्तुत है कार्यक्रम में एक और मधुर सा।

91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ आप बने हुए हैं और सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने अपनी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया के साथ।

श्रोताओं, ये है रेडियो गुंजन धर्मशाला और कार्यक्रम है गीत सुहाने नए पुराने। फ्रीक्वेंसी 91.2 एफएम पर आप हैं और इस कार्यक्रम में आपकी हम सफर हूँ मैं, आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। लीजिए कार्यक्रम में अगला नगमा आपके रेडियो सेट्स पर।

गीत सुहाने नए पुराने की महफिल सजी है रेडियो गुंजन धर्मशाला से फ्रीक्वेंसी 91.2 FM। मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया और ये रहा कार्यक्रम का अगला गीत।

गीत सुहाने नए पुराने, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं हूँ आपके साथ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया।

मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर

आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
1: हर घर सूर्य घर।
2: मुझे लगता है इस दुनिया में सबसे बड़ा दान ना पैसे का है, ना कपड़े का है, ना किसी चीज सामान का है। दुनिया में सबसे बड़ा दान है किसी दुखी को आप अपनी एक बात दे करके उसको खुश कर दो। आप उसके चेहरे पर प्रसन्नता लाओ और आप ऐसा कुछ कर दो जो उसके जीवन के दुख खत्म हो जाए, वो आपको देख करके कुछ समय के लिए भूल जाए कि वो कितना

0: साइबर फाइनेंशियल फ्रॉड में फंस जाना तो कॉल 1930 पर लगाना। ऑनलाइन होने वाले धोखाधड़ी और साइबर फ्रॉड से पीड़ित होने पर गृह मंत्रालय भारत सरकार की अधिकृत वेबसाइट www.cybercrime.gov.in पर अपनी शिकायत दर्ज कराएं।
1: पवन आ गया।
2: पवन वहाँ क्यों बैठा है?
1: पता नहीं उसे टीबी है।
3: और भाई लास्ट बेंच को मजा अकेले।
4: पता है ना मुझे टीबी है।
3: चल तुझे पता है ना इलाज का असर शुरू होने के बाद टीबी के इन्फेक्शन का डर नहीं रहता। टिफिन में क्या है? टीबी के दवाई के साथ खाना भी अच्छे से लेना है, समझा?
5: अपनों का जोड़ है टीबी का तोड़, तो फिर भेदभाव क्यों? टीबी के इलाज में अपनों का साथ दें।
6: सुनो, तुम्हारे पास 5,000 रुपए पड़े हैं?
7: 5,000? मेरे पास 500 रुपए नहीं है, तुम 5,000 पूछ रहे हो?
6: Oh, no. देख लो कहीं थोड़े बहुत पड़े हो।
7: तुमने दिए कभी जो थोड़े बहुत कहीं पड़े होंगे?
6: किचन के किसी डब्बे वब्बे में छुपाए हो या किसी कपड़े के नीचे?
7: तुम्हें सच में लगता है मैं तुमसे पैसे छुपाती हूँ? अरे नहीं है यार मेरे पास पैसे।
6: कसम खाओ।
7: कसम से मेरे पास 1 रुपया नहीं है।
6: तो फिर ये ड्रेसिंग टेबल के कपड़े के नीचे 5,000 किसने रखा? मेरा ही होगा लगता, रख के भूल जाऊंगा ना। अब तुमने तो कसम खाई है, तुम्हारे तो है नहीं। मेरे ही होंगे, इस घर में और रहते ही कौन है?
8: भारी मिस्टेक हो गया सर।
7: नहीं मतलब तुम्हारे ही होंगे।
9: गजब टूटी बात।

रेडियो घर घर पहुंचाए आपकी आवाज, बने आपका अपना रेडियो। हम सबका यही है प्रयास, दुनिया के किसी भी कोने में रहें आप सुन सकते हैं गुंजन रेडियो की आवाज। सो स्टे ट्यून विद रेडियो गुंजन 91.2 FM।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर ये है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला और श्रोताओं मैं हाजिर हो गई हूँ कार्यक्रम लेकर भक्ति संगीत आराधना। तो श्रोताओं करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत इस प्यारे से भजन के साथ। आप सभी यूं ही सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

ये है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं भक्ति संगीत आराधना अपनी रेडियो शशि।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। यह है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला। तो श्रोताओं, बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा भजन।